पुकार बटक बीज में रव रहे हो जाको तीन लोक विस्तार। अल्लह लहंता पेद छे कछ कछ पायो पेद उलट पेद मन भेदियो पायो अपंग अछेद।

टट्टा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के न जाही, देख अटल टल कतह न जावा, रह लपट कट पर चो पावा। ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठग गया।

नानवे ना फुन संचर है तन जन्म ताही को गणे मारे एक तज जाए कणे तत्ता अतर तरयो न जाई तन त्रिभवन में रहो समाई जो त्रिभवन तन माहि समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थथा अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर न रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन कीजे तद्दा अर्दे उर्द निवेरा अर्दे उर्दे मंज बसेरा अर्दे छाड़ उर्द जो आ

बल बल जे बिसंतना जस गावे, विसन मिले सभी सच पावे। वाह वाह वाही जानिए, वाह जाने एहो होए, एहो

अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्रिय ओ कंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना, जब ही होए तब है मन माना।

सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपैर है। पंडित लोगे को व्यवहार, ज्ञानवंत को तत विचार, जाके जी जा।

अंतरजामी राम समारो जीवत पावो मोख द्वार अनपो शब्द तत निज सार चरण कमल गोविंद रंग लागा संत प्रसाद पै मन निर्मल हर कीर्तन में अन दिन जागा रहाओ प्रिवा प्रीतम करो विचार कट में खेले।

ना ओ बढ़े ना कटता जाए, अकुल निरंजन एक है पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे, अनद मूल परम पद पावे। साध संगत उपजे विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो, काम क्रोध संग कबहो ना बहो।

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे।

हर त्यावें तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पे जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो तिनका पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाम तुझी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करे हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खटकर्म करंता से भगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जेवड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुझ आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सो होई तुझ आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी तुझ आपे

सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाईया।

गुर प्रसाद वसे मन आए, दुख अनेरा विचों जाए। साच प्यारा आप करे, अवरी को साच न दे, जे किस

हित रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ। नानक आखन वेरा वेर, हित रंग नाचो रख रख पैर आसा।

नाल कुटम साथ वरदाता ब्रह्मा पालन सृष्ट गया आगे अंत न पायो ताका कंस छेद क्या वड़ा भया। रतन उपाय तरे खीर मथया और पखलाए जे असी किया

पनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नजर करे सा सुहागण होए, आसा मैला पहला ग्रियो बन समतर तय सुबाए, दुर्मत गत पई कीरत ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए निज खाओ, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूरन भगवान रहाओ, अधिक त्यास पेक बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ ना।

जिंद तन मन हर पै आ गए जिंद झूठ विकार महा दुख देहे देख वरन दिसे सबके जो उपजे सो आवे जाए नानक अस्थिर नाम रजाए आसा मेला पहला एको सर्वर कमल अनूप सदा विदास है परमल रूप उजल मोती चू गए हंस सर्व कला जगदीश।

एहनस भगत करे लिवलाए, नानक तिन कह लागे पाए। आसा मैला पहला गुरमत साची हुज्जत दूर, बहुत सियाणप लागै तूर। लागी मैल मिटै सचनाए, गुर प्रसाद रह लिवलाए। है हजूर हाजर अरदास, दुख सुख साच।

तो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निधान, हर वार जिन पाया तन नारी, हर स्यों राती शब्द विचारी, आप तरह संगत कुल तारे, सतगुरु सेव तत विचारे, हमरी जात पथ सच नाओ, कर्म तर्म संजम सत भाओ, नानक बस

एक हर राते रह समाए, एक तरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यों जल अंब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला को किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकथ कथो गुरुमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठ अठ मज्जन हर रस रे।

ऐसा गुरमत रमत शरीरा, हर पज मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ। अनत तरंग पगत हर रंगा, अंदिन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम पगत जन रहे निरारा। सूची काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया। आद अपार अपरंपर हीरा, लाल रता मेरा मन धीरा। कथनी कहे कहे से मुए, सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते।

तैनत अंधले दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे, कहे सुने जो माने ना हो, हों बलिहार है ताके जाओ, नानक एक कर।

अंध जीव रस नाही तन्नी पवन न वाजे चरनी चले पजूता आगे बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग पोए चो।

सब जप तप जिस हर हृदय अलखा व्यवहार नानक राम नाम मन राता गुरमत पाए सहज सेवा आशा महला पहला पंच पदे

चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जन पंच राशि ता तीर्थवासी कुंगरु वाजे जी मन लागे तो जम कहा करे मोसो आ गए रहाओ आस निरासी तो सन्यासी जा जत जोगी ता काया पोगी दया दिगंबर दी बिचारी आप मरे अवरा ने मारी एक

कोई नदर करे मेलावा होई राव सरोरड़े तन साथ पछाणिया सह सुभाए अपना फिर जानिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामण कंते मन भावे कहत नानक पै पाव का करे सिदार सभी से जय।

जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिती वारी माओ भया सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वेश इको अंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मैला पैला लख लख कर लख वाजे ने जे लख उठ करे सलाम लखा उपर फुरमाइश तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निराफल का।

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ता जी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जे वसे नानक नदरी पार आसा मेला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जमस्यो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मरिया कर एक खटे एक रतीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग बनारस।

कर कर पगवे पेख पए, तौ कारण साहिबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े, छोड़ विलायत देश वे, पीर पैगंबर सालिक साधक छोड़ी दुनिया खाए पए, साध सहज सुख रस कस तजियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए, दुखिए दर्द वंद दर तेरे, नाम रते दरवेश भए। खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी, सिखा सूत तोती कीनी, तू साहिब हो सांगी तेरा, प्रणवे नानक जात कैसी। आसा कर पंजवा महला पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मनवासे, फिर ना रहे जैसे पवे उदासे, मन मेरा दयाल सेती फिर ना रहे, लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ। फूल माला गल पहरोगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिगारो, पंच सखी हम एक पतारो, पेड़ लगी है जीड़ा चालन हारो, पंच सखी मिल रुदन करे हार, साहो पजूता प्रणवत नानक।

सिमा सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंद्री पहरे परमेश्वर पटले।

तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे, ज्ञान राव जब सेज आवे ता नानक भोग करे। पासा मेला पहला कीता होवे करे कराया, तिस क्या कहिए भाई, जो किछ करना सो कर रहया, कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला खुद पावे, नानक ताको मिले वडाई, साचे नाम समावे रहाओ, किरत पया परवाना लिखिया, बौड़ हुकुम ना होई, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, मेट ना सके कोई। जे को दरगे बहुता बोले, नौ पवे बजारी, सतरंज बाजी तके नाही, कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना, ना को मूर्ख मंदा, बंदी अंदर

जो किछ करे पला कर मानो, सहज जोग निध पावो। बाबा जुगता जियो जुगे जुग जोगी, परम तंत में जोगं। अमृत नाम निरंजन पाया, ज्ञान काया रस पोगं। रहाओ शिव नगरी में आसन बैसो, कल्प त्यागी बादं। सिंगी शब्द सदा तुम सो है, एन स्पूर नादं। पत विचार ज्ञान मत डंडा, वर्तमान विपूतं। हर कीरत रह रास हमारी, गुरुमुख पंथ अतीतं। सगली जोत हमारी समया, नाना वर्ण अनेकं। कहो नानक सुन करथर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। ऐसा मेला पहला, गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे, कर करनी कस पाई है।

परवान भया, दर दर्शन का प्रीतम होवे, मुक्त वैकुंठ करे क्या। सिख तीरता सद बैरागी, जुए जन्म न हारे, कहो नानक सुन कर कर जोगी, खीरा अमृत धारे। आशा मेला पहला खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न दे करता, जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कर लाने, ते की दर्द न आया। करता तू सगना का सोई, जे थकता सकते को मारे, काम रोस न होई। रहा सकता सिंह मारे पै वगै, खसमे सा पुरसा।

हर दर्शन पावे वड भाग, गुर के शब्द सच्चे बैराग। हर दर्शन वर्ते वर्तारा, गुर का दर्शन अगम अपारा, गुर के दर्शन मुक्त गत होए।

गुर कै दर्शन सदा सुख होए, गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार, निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोपा खाई, गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख कां को लगे नकीर, जम काल किस नेड़ ना आवे, नानक गुरमुख साथ समावे, आसा महला तीजा, शब्द

समाए सेवड़ पागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह है तिन बलिहार है जाओ दर साचे साचे गुण दाओ आपे देव है सह सुभाए नानक कीमत कह न जाए ऐसा मैला तीजा सतगुरु विच वड्डी वड्याई चिरी विचुने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन विध होए हर अपरंपर अदम अगो

पाए। जो मन गाते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुगाए रहाओ। शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभु सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर। आखण आखे बके सब कोए, आपे बक्स मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए। गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मो चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार। आसा मैला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया।

पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण विगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म न चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, पुस्तक निंदा गुर समझन आई, इस युग में लाहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहु चोटा खाए, एकों छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुरु को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल वाणी निज कर वासा।

पुत्र कलत तन माया चितलाए चूत मोह पाखंड विकार राव सदा सुहागन जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिगार बनावे सेज सुखाली अंगिन हर रावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागन साथी।

कर्म कमाए सब दे ऊंचो ऊंचा होए नानक साथ समावै सोए आसा मेला तीजा भगत रता जन सहज सुभाए गुर कै पैसा चै साथ समाए बिन गुर पूरे भगत न होए मन मुख रूने अपनी।

साए अंतर निर्मल अमृत सर नाए सदा सूचे साथ समाए हर सब वेखे सदा हजूर गुर प्रसाद रहा भरपूर जहां जाओ तह वेखा सोए गुर बिन दाता वरना कोए गुर सागर पूरा पंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवन हार नानक बख्शे बख्शन हार आसा मैला तीजा गुर सायर सतगुर सच सोए पूरे पाग गुर सेवा होए सो बुझे जिस आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान बिना से अंधन जागे वेखे सच सोए रहाओ मोह गुमान गुर सब जलाए पूरे गुर पे सोजी पाए अंतर महल गुर शब्द पछाने आवन जान रहे फिर नाम समाने जम्मा मरना है संसार मनमुख अचेत माया मोह गुबार पर निंदा दो कूर कमावे विष्टा का कीड़ा विष्टा माए समावे सत संगत मिल सब सोजी पाए गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए पौना मन्ने सदा सुख होए नानक सच समावे सोए आसा मेला तीजा पंच पदे शब्द मरे तिस सदा आनंद सतगुर पेटे गुर गोबिंद ना फिर मरे न आवे जाए पूरे गुर ते साज समाए जिनको नाम लिखिया तुरलेख ते अंदिन नाम सदा त्यावे गुर पूरे ते भगत विशेख रहाओ जिनको हर प्रबले मिलाए तिनकी गहन गत कहीं न जाए पूरे सतगुरु दित्ती वड्याई उत्तम पदवी हर नाम समाए जो किच करे सो आपे आप एक कड़ी में थाप थाप कह कह कहना आप सुनाए जे सो काले थाए न पाए जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए सच बाणी गुर शब्द सुनाए जहां शब्द वसे तहां दुख जाए ज्ञान रतन साचे सहज समाए नावे जेवड होर तर नाही कोए जिसनो बख्शे साचा सोए पूरे शब्द मन वसाए नानक नाम रते सुख पाए आसा मैला तीजा नृत्य करे बहु वाजे बजाए यो मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए अंतर लोभ परम अनलवाओ दीवा बले न सोजी पाए गुरमुख भगत कट चानन होए आप पछाण मिले प्रभ सोए रहाओ गुरमुख निरत हर लागे पाओ पूरे ताल विच्चों आप गवाए मेरा प्रभ साचा आपे जान गुर के सबल अंतर ब्रह्म पछाण गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत निरत दुख होए एहा तगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी पव जल तरे गुर के बचन पगत खाए पाए हर जीव आप वसे मने आए हर कृपा करे सतगुरु मिलाए नेचल पगत हर स्यो चितलाए भगत रते तिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए आसा कर अठवां काफी मैला तीजा ओंकार सतगुर प्रसाद हर कै

सोई गुर प्रसादी मन वसै हर बूझे सोई मैं सहुदाता एक है और नाही कोई गुर कृपा ते मन वसै ता सदा सुख होई रहाओ इस जुग में निरपो हर नाम है पाई है गुर विचार बिन नामे जम के बस है।

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सब ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजावर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए। इको ओंकार सतगुर प्रसाद, रागा सा हर दूजा मेला चौथा, किस ही तरह किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तरह किया कुरम सके नाल जवाई, किस ही तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई, हमारा तरह हर रया समाई, हम हर स्यो तरह किया मेरी हर केक, मैं हर बिन पक तरा और ना कोई, हूँ हर गुण गावा असंख अनेक, रहाओ जिन स्यो तड़े करें से जाहे, झूठ कड़े कर पछोताहे, फिर ना रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यो तड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है, ये सब कड़े माया मोह पसारी, माया को लूजे गवारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तरह जे हलत पलत सब सवारी, कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत संग मिलाए, हमरा हर तरह जिन ए तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे, पराया छिद्र अटकले अपना अंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तरह धर्म सब श्रेष्ठ जिने आवे, आसा मेला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत खाया, गुरबाणी हर अलख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रव रया कट अंतर मुख बोलो, गुर अमृत बहना रहा, मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वडपाग, दूजे पाए पवे बिख माया, पाग हीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पियाया, गुर पूरे नानक हर पाया, गुर पूरे नानक हर पाया, आसा मेला चौथा।

वडे पाग गुरु मुखर लेना प्रभाव नाम बिना नहीं जीव्या जाए वडे पाग गुरु मुखर पाए नाम ही कालक मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया वड़ा वड़ा हर पाप कर पाया नानक गुरुमुख नाम दिवाया आसा मेला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरुमुख हर गुण आंख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सत गुरु नाम दृढ़ाया रस गाए गुण परमानंदा रहाओ हर गुण गावे हर जन लोगा वडे पाग पाए हर निर्जोगा गुण विहून माया मलकारी विण गुण जन्म मोए अंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरुमुख मत कत कडिए आसा मेला चौथा नाम सुनी नामो मन पावे वडे पाग गुरमुख हर पावे नाम जपो गुरमुख परगासा नाम बिना मैं तर नहीं काई नाम रविया सब सास ग्यासा रहाओ नाम ने सुरत सुनी मन भाई जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई नाम हीन गए मूड नंगा पच पच मोए बिख देख पतंगा आपे थापे थाप उठापे नानक नाम देवे हर आपे आसा मेला चौथा गुरुमुख हर हर वेल वधाई फल लागे हर रस रसाई हर हर नाम जप अनंत तरंगा जप जप नाम गुरुमुख सालाही मारिया काल जम कंकर पुयंगा रहाओ हर हर गुर में भगत रखाई गुर सुखा सिख देवे मेरे भाई हो मैं कर्म किस विद नहीं जाने जो कुंचर नाए खाक सिर छाने जे वड पाग होवे वड ऊचे नानक नाम जपे सच सूचे आसा मेला चौथा हर हर नाम की मन भूख लगाई नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता नाम जपो नाम में सुख पावो नाम रखो गुरुमत मन चीता रहाओ नामो नाम सुनी मन सरसा नाम लाहा ले गुरुमत बिकता नाम बिना पुष्टि मोहंदा सब ने फल कर्म किए दुख तंदा हर हर हर जस जपे वड पागी नानक गुरुमत नाम लिव लागी।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यों मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्त है तिस आगे हम आदेश राव। गावे राग पाक बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जोवे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए चर।

जोगी जंगम श्रेष्ठ सब तुमरी जो देहो मति तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लागो मनुआ पेल। आसा मैला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ। कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे कब लग मेरा मन राम सुमारे। कब को लोगन को पति आवे लोक पति ने ना पत होए जन नानक हर हृदय सद त्यावो ता जय जय करे सब कोए। आसा मैला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया।

गए आए, आते हर अपरंपर करता, हर आते बोल बुलाए, से संत पले तुद पावे, जिनकी पत पावे खाए। नानक आत्मा राजे हर गुण, जो आखे त्यों सुख पाए, भगत भंडार दिए हर अपने, गुण गाहक वनज ले जाए।

जीवन मरण सुख होए जिना गुरु पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। ऐसा मेला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुरु प्रसादी बुझ सच समाया। जिन पुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया, दर्श चार मेल बुलाया रहाओ। अंतर नाम निदान गुरु मुख पाइए, अंजन नाम से आए हर गुण गाइए। अंतर वस्त अनेक मन मुख नहीं पाइए, हूँ मैं गर्भ गर्भ आप खुआइए। नानक आपे आप खुआइए, गुरमत मन पर गास सच्चा पाइए।

कीर्तन करो। सतगुरु मोको हर नाम बताया, हम हर दिन खिन पल रह ना सकूं रहाओ। हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हम हर दिन रह न सकूं हूं एक खिन। जैसे हंस सरवर बिन रह न सके, तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हों प्रीत लाई दूजा पाओ, रिज तार किन्हों प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण, पद नानक सिमरत हर हर भगवान। आसावरी महला चौथा, माई मेरो प्रीतम राम बताओ री माई। हम हर बिन खिन पल रह न सकूं, जैसे कर हल बेल री जाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत कहो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पौ बहुत दिखाया, पाई मीत कुटुंब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख विमोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा।

है, हम हर राखे लग सतगुरु पावे। तप करते पक्षी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुभाए, त्रै गुण मोहे मोहा आकाश।

जो तू कहे सोकार कमावा जन नानक गुरुमुख नेड़ ना आवा। आसा मैला पंजवा ससु ते फिर की नीवाक देर जिठानी मोई दुख संताप।

प्रीत दुखिया त्यागी लो गारीत त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधया ज्योत स्वरूप अनाद वाजया महा आनंद गुर शब्द विचार प्रेस राती तन सुहागन।

आचार जित गृह वसै सो गृह सो बावंता गुरुमुख पाई किन विरलै जनता सो करणी कामन गुरमिल हम पाई जज काज परखाए सुहाई रहाओ जिचर वसी पिता के साथ टीचर कंक बहु फिरे उदास कर सेवा सतपुरुष मनाया गुर आनी कर मैं तो सर्व सुख पाया बत्ती सुलखणी सत संतत पूत आज्ञाकारी सुगढ़ स्वरूप इच पूरे मन कंत स्वामी सगल संतोखी देर जेठानी सब परवार माय श्रेष्ठ मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ तन सो गृहो जित प्रगति आए जन नानक सुखे सुख विहाए।

तप तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, फल खाके सिमरत वेद व्यास। जै बैसो तै ना ले बैसे, सगल पवन में सबल प्रवेश है। होची शरण पया रह न पाई, कौमी पाहो कह कह जाई। सुनो उपदेश सतगुर के आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वस्या गुण गाय अनंता, प्रभ मिलियो नानक कहे अचिंता। पर मेरा ए नायक हमारी, ए आमर हम गुर किए दरबारी।

अमोल रत्न अमोलारास विष्ट सुभाई पाया मीत सौदा मिलिया ने चल चीत पौ नहीं तस्कर पौ न पानी सहज विहाजी सहज ले जानी हट के खटे दुख नहीं पाया सही सलामत कर ले आया मिलिया लाहा पै आनंद तन सा पूरे बक्सिंद ये सौदा गुरमुख किने।

तावत रहे एक एक बूझिया, आए बसे अब ने चल खाए, जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अघाए, जन्म दोख परे मेरे पाछे, अब फकरे ने चल साधु पाए, शायद तुन गावे मंगल मनुआ, अब तातो फुनकाल न खाए, करण कारण समर्थ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय, नाम तेरा जब जीवे नानक, पोत पोत मेरे संग सहाय, आशा मैला पंजवा, अरड़ावे बिललावे निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया, अपना कीता पावे निंदक रहाओ, जे कोई उसका संगी होवे, नाले ले सिदावे, अनहोंदा अजगर पार उठाए, निंदक अग्नि माहे जलावे, परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीते, सो नानक आख सुनावे, भगत जना को सदा आनंद है, हर कीर्तन गाए बिकसावे, आसा मेला पंजवा, जो मैं कियो सगल सिगारा, तो भी मेरा मगना पतियारा।

बस्तर भी कोखन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितने न लेखे पथ शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल प्रभु का वासा सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक अर बहुत फुरमाइस मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिल बे यो दिन ना बिहावे मिले प्रभु ता सब सुख पावे। खोजत खोजत सुनी ए सोए साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मुस्तक पाग तिन सतगुरु पाया पूरी आशा मन तृप्ताया, प्रभ मिलिया ता चूकी डंजा नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

तुझ पर दाम, सील बिगाड़ो तेरा काम। जा को दृष्ट मया हर राय, साबंदी ते ले चढ़ाए, साध संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल ओ काया। सब रूप सब सुख बने सुहागन।

में चल रहना, जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अब सब मुख पाया, गुर सब दी रस अमृत पीवे। रहाओ काची मटकी बिनस बिनासा, जिस छूटे तृप्ति तिस निज परवासा, ऊंचा चढ़े सो पवे प्याला, तर्न पड़े तिस लगे न काला, क्रमत फिरे तिन किछु न पाया, से अस्थिर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर कमाल, नानक गुर मिल पे निहाल, आशा महला पंजवा, उतरी तेरी बिद कर थाती, जान सत कर।

बिस्ता अस्त रटक परे ते चाम इस ऊपर ले राख्यो गुमान एक वक्त बूझे ता हो वे पाक बिन बूझे तू सदा न पाक कहो नानक गुर को कुर्बान जिससे पाये हर पुरख सुजान आखा महला पंजवा एक तुके चौक दे एक कड़ी दिन को बहुत दिहारे मन ना रहे कैसे मिलो प्यारे एक पल दिन को कब होना बिहावे।

सब अंत न जाने पंच दूत मिल फिर हो विछोड़ी क्रम क्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया।

हर मेरा सखा मन माहे दीवान, हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो, गुरमुख तन छट्टी हर मेरा साहो, गुर कृपा से ए मत आवे, जन नानक हर कै अंक समावे। आसा मैला पंजवा, प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई, सतगुर सेव सब फल पाई, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान है, अमृत सर सब ही पर पूरा रहाओ, चरण कमल हृदय अंतर धारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे, संत सखी मिल मंगल गाया, अरहद बाणी नाद बजाया, गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय, सुख रैन विहानी सह सुवाए। आसा मेला पंजवा, कर कृपा हर पट्टी आया, मिल सतगुरु तन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिय भाई, कहे न जाने जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कत हो न जाई रहाओ, कोट न आवे निकुट न जाए, खाए खर्च मन रहा अगाए, सो सत्सा हो जिस कर हर तन संचाना, इस तन से सब जग वरसाना, तिन हर तन पाया जिस को लिखे का लेना, जन नानक अंतवार नाम गहना। आसा मेला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन में सो जानो मुआ, गोविंद भगत अस्थिर।

फिर फिर मंगी कहो नानक प्रभु दीन दयाला जो पावे त्यों कर कृतपाला आसा मेला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम इहा उहा उन संकाम बिन हर नाम अवर सब छोरा त्रित अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत पंडार गुरबाणी लाल दावत सुनत कमावत निहाल चरण कमल सो लागो मान सतगुर तूठे कीनो दान नानक को गुरु दीक्षा दीन प्रभ अविनाशी कट कट चीन आसा महला पंजवा अनद विनोद परे पुर तारिया अपना कार्य आप संवारिया।

निर्बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरदीनो दान आसा मेला पन्नवा बुद्ध प्रगास कई मत पूरी तमते बिन सी दुर्मत दूरी ऐसी दुर्मत पाई ने बूढ़त कोर

गुरु पूरे प्रगट मार्ग दिखाया, जात पाप कछ उक्त न मोरी, गुरु नानक शरणागत तोरी। आसा महला पंजवा तिप दे दूजा, हर रस पीवत सद ही राता, आन रसा खिन में लह जाता, हर रस के माते मन सदा आनंद।

हर साधु हर समाए लाख करोरी मिले न के जिसे प्राप्त तिस ही दे नानक चाक पे बिस्माद नानक गुरते आया साद ईत ऊत कछ छोड़ न जाए नानक गीदा हर रसमाहे आसा मेला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके दुर्मत अपनी धार।

आज्ञा मान भगत हुए तुम्हारी, जो इव मंत्र कमावे नानक सो पौजल पारे उतारी। आसा मेला पंजवा दुख दे पई प्राप्त मानक दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अगर काज तेरे कित न काम, मिल सौर संगत भज केवल नाम, संग जाम लाभ पौजल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो, जब तप संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहू नानक हम नीच कर्मा।

उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगन सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्नवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मानिया पाप मुआबिक खाए प्रभाओ पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी को चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पै कृपाला होए आप सहाए गुण निधान नित गावे नानक।

मिल संग पयो मन निर्मल गुरपुरे लेखिन में तारे रहाओ सबकी रेन होए रहे मनुआ सगले दिशे मीत प्यारे फल मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम त्याए बहुत उधारे गैर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किस पारावारे तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक त्याय त्याय प्रभु को नमस्कारे आसा मेला पन्नवा तू बेअंत अविगत अगोचर एहो सब तेरा आकार क्या हम जंत करे चतुराई जा सब किछ तुझे मझार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार।

राम आधार अर्ध करे सास सास संवारे ना पोहे अगनार पर तन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी हृदय अंतर।

करम करम जुगत बहु करता करने हार न जाने उपदेश करे आप न कमावे तत शब्द न पछाने नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवं पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुर मिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद क्रम में सोई सगल जगत तंद अंध को जागे हर जन महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण को त्याग विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा कर छेवा महला पंजवा जो तुद पावे सो परवाना सूख सहज मन सोई करण कारण समरथ अपारा अवर नहीं रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियानक जन की जो तू करे करावे रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया त्रिपत अघाए से जन पूरे सुख निदान हर गाया जाको टेक तुम्हारी स्वामी ताको नाही चिंता जाको दया तुम्हारी हुई से सह पले भगवंता कर्म मोह त्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया वर्तन नाम नान

तू किस पे करे पुकारा। निंदक की गत कत हूँ नाही खसमे एवे पाना, जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुखमाना। संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई। आसा मेला पंजवा बार तोए अंतर मन मेला, दोए ठौर अपने कोए इहां काम क्रोध मोह व्यापिया, आगे मुसमुस रोए गोविंद भजन की मत है होरा। गर्मी मारी साथ न मरी नाम ना सुने डोरा रहाओ, माया की किरत छोड़ दवाई भक्ति सार न जाने, वेद शास्त्र को तर्कन लागा।

ना छुपाया कूड़ कपट वंश निमुनिया दाला बिरस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया अपने हृदय देख समाले आसा मैला पन्या उदम करत हो गए मन निर्मल नाचे आप निवारे पंच जनाले वसगत राखे मन में एकंकारे तेरा जन नृत करे गुण गावे रबाब पखावज ताल कुंगुरु अनहद शब्द बजावे रहाओ प्रथमे मन पर बोधे अपना पाछे अवर रिझावे राम नाम जप हृदय जापे मुक्ति सगल सुनावे कर संग साधु चरण पखारे संत तूर तन लावे मन तन अर्थ करे गुर आगे सत

रे आज के बस गुरकीनो के हर कुकर तिने लगाई रे राव बाज थूनिया छपरा थामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा अचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चूपी निर्नो पाया रे माल दुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया।

सब किस की ता तेरा वरत है, सदा सदा तेरी आस। जे देह वड्याई ता तेरी वड्याई, इत उत तुझे ते आओ, नानक के प्रभु सदा।

मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो रहाओ तुमरी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दिड़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे सहजे बिखिया पई थियो सुख निधान नाम प्रभु तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझे सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस दे ही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सो कल युग साध संकीर्तन गाये नानक नाम अधा।

आंख ओरते बां पकड़ गुर काट लिए, निरपो पे सगल को मिटिया राखे राखन हारे, ऐसी दास तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सवारे, गुण निधान साहिब मन मेला।

नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ न जाने मेरा आसा मेला पंजवा। कर कृपा प्रभ अंतर जामी, साध संग हर पाये, खोल किवार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म ना आये। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरो रे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ताके संग तरोरे राव। महा उद्यान पावक सागर भय, हरख सोग में बसना, सतगुर पेट पया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना। तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया, गुर प्रसाद पय जन मुक्ते, हर हर नाम आराध्या। राख लिए प्रभ राखनहार, जो प्रभ अपने पाने, जियो पिंड सब कुमरा दाते, नानक सद कुरबाने। आसा मेला पंजवा, मोह मलन नींद के छुट।

काम क्रोध अहंकार दाखरो संयम कौन छुट्योरी सुर नर देव असुर त्रै घनिया सगलो पवन लुट्योरी दावा अग्न बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहोरी ऐसो समरथ वरण न साको ताकि उपमा जात न कहोरी काजर कोट में पई न कारी निर्मल बरन बन्योरी महामंत्र गुर हृदय बस्यो अचरज नाम सुन्योरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आशा कर सकता।

नानक जन गुरु पूरा पाया, अंतर बार एक दिखाया। आशा मैला कन्या पावत रलिया जो बन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओढ़लिया, सेज सुख लिया मन गर्बलिया, रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक्षतरिया, हर पगत बिना ले तरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनिक स्त्रिया, हर रस बिन सब स्वाद फिक्र।

जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अंकार, कर्म कर्त जी को जंजार, प्रभ कृपा से मनवस आया, नानक गुरु तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन गा।

कहो नानक नित इवैते आई गत होवे संतै लग पाई आसा मैला पंजवा उठत बैठत सोवत त्याये मार्ग चलत हरे हर गाये श्रवण सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा दुख रोग सगले मन लखा राव कारज काम बाट काट जपी जय गुर प्रसाद हर अमृत पी जय दिन त्रैन हर कीर्तन गाये सो जन जन की वाट न पाये आठ पहर जिस विसरे नाही गत होवे नानक तिस लग पाए आसा मैला पंजवा जा कै सिमरन सुख निवास कई कल्याण दुख होवत नास अनद करो प्रभ के गुण गावो सतगुर अपना सब सदा मनावो रहाओ सतगुर का सत शब्द कमावो फिर कर बैठे प्रभ अपना पावो पर का बुरा न राखो चीत तुमको दुख नहीं पाई मीत हर हर तंत मंत गुर दीना इन सुख नानक अंदिन चीना आसा मेला पंजवा जिस नीच को कोई न जाने नाम जपत ओ चौकुंत माने।

सगल सृष्ट पुआ के चरण मल धोई, जो प्राणी काहु न आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, अब प्रभु नानक नीचे लागे, आसा मेला धन्यवास। एको एकी नैन निहारो, सदा सदा हर नाम समारो।

के सूत परोई कट कट अंतर रविया सोई ओ पत परलो खिन में करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण करावन अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी। आशा मेला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दुर्लभ देह जीती नहीं हारे किलबिक बिना से दुख दर्द दूर पै पुनीत संतन की तूर रहाओ प्रभ के संत उदाहरण जोग इस पेटे जिस पुर संजोग मन आनंद मन

पै मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ। बिन सियो मन का मूर्ख टीठा, प्रभ का पावना लागा मीठा। गुरपूरे के चरण गए, कोट जन्म के पाप लहे। रतन जन्म एवं सफल भया, कहु नानक प्रभ करी मया।

संग चारे जागरे मन जागन हारे बिन हर अवर नाव सुकामा झूठा मोह मिथ्या पसारे राव गुर की बाणी स्यों रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा नाही थाओ गुर दाता गुर देवे नाओ गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पैर नानक गुर जाप आसा मेला संजमा आपे पेड़ विस्थारी साख अपनी खेती आपे राख जत कत पे खोए कै ओही कट कट अंतर आपे सोई राव आपे सूर किरण विस्थार सोई गुप्त सोई आकार सर गुण निर्गुण था पैनाओ दो मिल एक कै कीनो ठाओ कहो नानक गुरु परम को खोया अनद रूप सब नैन।

रहाओ। मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संजम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा महला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन।

हृदय संभाले मुख हर हर बोले सोजन इत उत कतें न डोले पहु नानक जो राचे नाए हर माला ताके संग जाए आसा महला पंजवा जिसका सब किछ तिसका होए तिस जन लेत न व्यापे कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करे सोई पल जन के अत निर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया तिस जन कहां व्यापे माया नाम निधान जाके मन माहे तिसको चिंता सुखने नाहे कहो नानक गुरु पूरा पाया परम मोह सगल बिन साया।

मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुरु मंता, सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन वस्या हरनामा, आसा मैला पंजवा, काम क्रोध अहंकार विभूते, हर सिमरन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, रहाओ मोह परम बहु जोन को आया, अस्थिर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंग कूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहो नानक जो प्रभु शरण आए, इहा सुख आगे गत पाए।

झूठ कमाना, हस हस सोग करत दे गाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवे को हस हस पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँचना मुका फिर पछताना, त्रयो गुण में वर्त संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म

निसारे हो, खिसर गयो पूम पर डारे हो, साध मोहिला दी अंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे, नानक मेली सिरजन हारे, आसा मेला पंजवा, चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए विचारे, तू चित आवे तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया, रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को, पहुँच न साके जन तेरे को, दर्स तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय में दी जय, आसा मेला पंजवा, मन तृप्ता नो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद पली बनी, जाके गृह सब किछ है, पूरन सो पेटिया निरपैतनी रहाओ, नाम दृढ़ाया साध कृपा।

को जन पूरन रहे अधाई, कछु न खोरा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाका तनी अगम गुसा।

है जाहर, उनके संग तू रखी पलोल, उस बिना तू छुटकी रोल, उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तुम साख जगत, उनके संग तेरी सब विथाटी, उस बिना तू हुई है माटी, ओ बैरागी मरे न जाए, हुक्मे बादाकार कमाए, जोड़ बिछोड़े नाम खाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओ मरता ना

हमको तृष्णा, जह ओ निर्मल ता हम जतना। हम किछ नाही एके ओही, आगे पाछे एको सोई। नानक गुरु खोए परम पंगा, हम ओए मिल होए इकरंगा। आसा महला पंजवा, अनेक पांच कर सेवा करिए, जियो प्राण तन आगे तरिए। पानी पखा करो तज अभिमान, अनेक बार जाइए कुर्बान। सरई सुहागण जो

है पाग ता पावो संग मिले स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब ने मां कर्म कर्म अर्पो सब हो मां गर्भ मोह तज हो वो देन उनके संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही

कूपत होए के राज समाया, कर कर अनर्थ विहाजी माया। संचत संचत फैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर को दीनी, काच गगरिया अंब मजरिया।

आई जग मोहनी हम त्याग गवाई निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ ऐसी सुंदर मन को मोह है बाट काट गृह

अब मोर है मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया। आखा मेला पंजवा, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभ का किया मिठा माने, एक नाम संकन आधार, होए रहे सबकी पगछार, संत रह सुनो।

मानी कंस पकर हम की नीरानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सुहागा। कहो नानक मोरी पूरन आशा सतगुर मेली प्रभु पासा। आशा महला पंजवा।

प्रतपाले प्रभ आप कट कट सारी है, जिस मन उठा आप किस ना विसारी है, जो किस करे सो आप आपन पाणिया, भगता का सहाय जुग जुग जानिया, जप जप हर का नाम कदे न चूरी है, नानक दर्श प्यास।

पुत्र कलत्र गृह सगल सामग्री सब मिथ्या असनाहा। रे मन क्या करें है हा, दृष्ट देख जैसे हर चंदौ।

पुरख बिराते हैं बहुर बहुर जन्मा दे जो पयो कृपाल दीन दुख पंजन तो गुर मिल सब सुख ला दे कहो नानक दिन रहम ते आवो मार काढ़ी सगल उपा दे क्यों जो पियो पाई पुरख विदाते पयो कृपाल दीन दुख पंजन जन्म मरण दुख लाते रहाओ दूजा आसा मेला पंजवा निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे करी मोत रंग माने फिर बहुर बहुर पछतावे अंधे चेत हर हर राया तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो

देखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभ रंग। मन में राम नामा जात कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाय आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ देखन का चाओ। दया करो किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे बस किछ नाहे। ज्यो ज्यो राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक पाग। आप कृपाल कृपा प्रभु तारी सतगुरु बख्शिया हर नाम। कल जुग उधारिया गुरुदेव मल मूत मूड जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता सब मेरे आसमाए। कर्म राजा बिस्माद हुआ सब पई पैरी आए। सत युग त्रेता द्वापर कणी है कल युग उत्तमो जुगा माहे। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए कोई न पकड़िए किसे थाए। हर जियो सोई करे जे भगत तेरे जाचे एहो तेरा बिरद। कर जोड़ नानक दान मांगे।

मो कुटुंब बिखे रस्मा से मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतियन।

चरणन सरहन संतन बंदन सुखो सुख पाहे, नानक तप्त हरि मिले प्रेम पिरी आशा मैला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ, ईते ऊते कट कट कट कट, तू ही मोहिना, कारण करना कारण करना, एक है सोहिना, संतन परसन बलिहारी दर्शन, नानक सुख सुख सोएना, आशा मैला पंजवा। हर हर नाम अमोला, ओह सहज सुहेला, रहाओ संग सहाई छोड़ न जाई, ओह अगे अतोला, प्रीतम पाई बाप मोरो माई, भगतन का ओला, अलख लखाया गुर ते पाया, नानक एहो हर का चोला, आसा मैला पंजवा। अपनी भगत निवाहे, ठाकुर आयो आहे, रहाओ नाम पदार्थ हुए सक

कमाया गुण रस रस गावे एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आशा महला पंजवा एक सिमर मन मानी रहाओ नाम ते आवो हृदय बसावो तिस बिन को नाही प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये सगले दुख जाही जीवन को दाता पुरख विदाता नानक कट कट आही आसा मेला पंजवा हर बिसरत सो

जाए, प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही, वर्त नेम संजम कर थाके, नानक साध शरण प्रभ संग वसै। आसा महला पंजवा कर पंद्रवा।

हार मुँह का पछतायो मन पोरा, दान सगल गैर वजह परया, दीवान लेखे ना परया, जे कारज रहे ओला सोए कामना करया, ऐसो जग

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभ गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरन।

गोविंद करहा हर हर मन प्यार हा गुर कहा सोचित थर हा अंश्यो कोर फेर हा ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ पंकज मोह सर हा पग नहीं चले हर हा गह दियो मूड नर हा।

ना रहाओ। टूटे अन परानहा रवयो सर्व थानहा लहो जम पयानहा पायो पेड़ थानहा तो चूकी सगल कान।

जो हर हर जस सुने हा, सब को तिस मने हा, सफल सो आया हा, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला तन्यवा। मिल हर जस गाये हा, परम पद पाये हा, उआ रस जो विदे हा, ताँ को सगल सिदे हा, अन दिन जा गया हा, नानक बढ़ पा गया मेरे मना रहाओ।

आशा लागो तन की रहाओ, सुख कह हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की, द्वारे द्वार सोन ज्यों डोलत, नै सुध राम भजन की, मानस जन्म अकारत खोवत, लाज न लोक हसन की, नानक हर जस क्यों नहीं गावत, कुमत बिना सैतन की।

उत्तर अवघट सर्वरनावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, परपुर तार रहा सब ठौरे, रहाओ सच व्रत नेम न काल संतावे, सतगुरु शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाद लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच मन का

सुरत विभूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारसारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मत एक भाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार कमाई खसम रजाए, अवगत नाथ न लख्या जाए, जल में उपजे जल से दूर, जल में ज्योत रहा तरपूर, किस नेड़े किस आखा दूर।

उजड़ पर मैं रहे न पाई, बिन बूझे को खाए न पाई, नाम बिहुने माथे छाई, साच तनी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मुहे बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पे उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुरु सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए।

नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो ना कहया जाई, अकथ कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूजे सच समावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारण हारा।

जमण मरना हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवरना पाल हालत पलत निभी तुदनाल सबद मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता परम चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप तू पुरुषागर मान कहीर तू निर्मल सच गुणी गहीर।

जग पंडित विरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरे अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी भोगी गुण रोए। जग उपजे बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझे सोए। महगो मोल पार अपार, अटल अछल।

जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरना गुर बोहित शब्द पै तरना निरपो आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सोपो कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म कर्म बहु संख असंख बिन पै भक्ति जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप सृष्ट उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पखे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक जन्म मरी जय गुरु प्रसाद।

शिव सहज कर गुर करतार, आशा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कहे कहाए, गुर ते वाट महल कर पाए।

पंच तीन नव चार समावे, तरण गगन कल तार रहावे, बाहर जातो उल्ट करावे, मूर्ख हुए ना आखी सूजे, जेवा रस नहीं कहया बूजे, बिक्का माता जग स्यो लूजे, उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को पावे अवगण को वे।

रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा, लब लोभ अहंकार सोपीरा, राम नाम दिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाणे, अंतर की गत गुरुमुख जाने, साच शब्द

है सदा सुख आ गए। मन चंचल विद नाही जाने, मन मुख मैला शब्द ना पछाने, गुरमुख निर्मल नाम बखाने। हर जियो आ गए करी अरदास, साधु जन

ग्रास इकत खाए किए गुरुमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरुमुख इव मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी इव मन निर्मल दर कर सोई गुरुमुख भगत पाओ तुम होई एनस हर जस गुर प्रसाद कट कट सो प्रभ आद जुगाद राम रसायन इव मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन दासा आसा मैला पहला तन बिन से तन का को कही है बिन गुरु राम नाम कत नहीं है राम नाम तन संग सखाई एनस निर्मल हर लिवलाई राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख सम कर नाम न छोड़ो आपे बक्स मिलावन हारा रहाओ कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिस को बक्से नाम जपाए दूत ना लाग सके गुन गाए हर गुरु

अवर्ण औषध संत न मंता, हर हर सिमरन किल विखानता, तू आप पुलावे नाम विसार, तू आपे राखे कृपा धार। रोग परम पेद मन दूजा, गुर बिन परम जपे जप दूजा, अमृत पुरख गुर दर्शना देखे, विन गुर शब्द जन्म के लेखे, देख अचरज रहे विस्माद, कट कट सुर नर सह समाद, पर पुर पार रहे मन माही, तुम संसार अवर को नाही, जाके भगत हेत मुख नाम, संत भगत की संगत राम, बंधन तोरे सहज ध्यान, छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान, ना जम दूत दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त पए हर रंग, आस्था महला पहला इक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने, राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म तर्म हो किया, बंधन पुत कलक

से तन जाए बिन हर भगत न कविताए बंधन वेद बाद अंकार बंधन बिन से मोह विकार नानक राम नाम शरणाई सतगुरु राखे बंद ना पाए।

जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवे तूर, महला अंदर होंदियां हुण बहन ना मिलन हदूर।

ही डोली चढ़ आईया दंद खंड की तेरास, उपरों पानी वारी है चले चिमकन पास, एक लख लैन बैठिया लख लैन।

तिन गल सिलका पाया तुतन मोक्सरिया तन जोबन दोई वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पत गवाए जे तिस पावे दे वड्याई जे पावे दे सजाए अगों दे जे चेती है कायत मिले सजाए साहा सुरत गवाया रंग तमाशे चाए बाबरवा।

कहां सो तेग बंद गाडे रड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके, एथे दिसे नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई, एक कड़ी में थाक उठाते, जर वंड देवे पाई। राव कहां सो करदर मंडक महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई। कहां सो पान संगोली हरमा।

जिसनो आप खुआए करता खुश ले चंग्याई। कोई हु पीर वर्ज रहाए जमीर सुनिया काया,

ओनी तुपक तावन चलाई ओनी हस चिड़ाई जिनकी चीरी दरगे पाटी तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी पटियाणी ठकुरानी।

जाए रुआये हुक्मी हुक्म चलाए विगसे नानक लिखिया पाये एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसा काफी महला पहला कर अठवां अस्त।

कोई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई।

जे चलदा ले चलिया किछ संपै नाले, ता तन संचो देख के बूझो बिचारे। वणज करो मकसूद ले हो मत पछोतावो, अवगुण छोड़ो गुण करो ऐसे तत् परावो। धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किस कमावो, पावा पा।

पर पंडित पांदे जोयसी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जाननी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थ वासा आप न चीने तामसी काहे पै उदासा एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे बिन गुर शब्द न छूट ही तम आवे जावे एक गिर ही सेवक साध का गुरमति लागे नाम दान स्नान दृढ़ हर पगत सो जागे गुरते दर कर जानिए।

जय गुरमुख नाम पियाए मन मंदिर पी जय रहाओ कूड़ा लालच छोड़िए तो साच पछाने गुर के शब्द समाये परमार्थ जाने यो मन राजा लोभिया लुभ तो लोभाई गुरमुख लोभ निवारिए हर्षो बनियाई कल्लर खेती बीजिए क्यों लाहा पावे मन मुख सच ना पी जई कूड़ कूड़ गडावे लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी साचो साहिब मन वसे हूं मैं बिखमारी दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई एनस नाम सलाहिए सतगुरु शरणाई मन मुख पत्थर से

हुक्मी पैदा जाए दरगे पानी है, हुक्मे ही सिर मार बंदर वाणी है। लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है। मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है। साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही। नानक मंगे सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है। आसा मेला पहला क्या जंगल टूंडी जाए, मैं कर बन हरियावला। सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानी है। गुर की कार कमाए महल पछाणी है। रहाओ आप मिलावे सच ता मन पावे।

पर खाए, गुर बिन किने न पायो के ती कह कहाए, अलप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए, मन मुख जे समझाए पी उजड़ जाए, बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए, जन्म मरे परमाई है।

है वडियाए, गुर की सेवा सो करे जिस आप कराए, नानक सिर दे छूटी है दरगे पत पाए। आसा मेला पहला रूड़ो ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी, वड्डे पाग सतगुर मिले पाईए पद निर्वाणी।

ले अगन जलाई है। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है फल अमृत होई। अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई, तिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुक्म संजोगी आया चल सदार जाई, औगुण आरे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मैला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया, लोकां दा क्या जाए जां तुद पाणिया। जो लग जियो प्राण सच दियाई है, लाहा हर गुण गाए मिले सुख पाए।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दर गै नाम हदूर गुरमुख जान सी, वेला सच परवान शब्द पछाण सी, सत संतोख।

कर्म होवे ता परम पद पाईए कथे अकथ कहानी। तू करता किया सब चेहरा चा को करे प्राणी, जा को नदर करे तू अपनी साई सच समा।

गुर सेवा से सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवट पागी जे गुर सेवा लाए, अंगिन पगत सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए।

होई। सतगुरु नाम बुझाया बिन नामे भुख न जाई। नामे तृष्णा अग्न बुझे है।

कर कृपा नाम मनवसाए, एहो सिर दीजे आप दवाए, हुक्मे बूझे सदा सुख पाए, आप करे तै आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मार्ग पाए, सच्चा शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मनमुख मोहे परम पुलानी, बिन नामे सब फिरे बोराणी, तीन पवन में एक काम आया, मूरख पढ़ पढ़ दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख समाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा शब्द विचार, अंधन पोगे हूं मैं मार, सहज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार, हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जब पढ़िए हूं मैं मार, हर जपिए पै सच प्यार, नानक नाम।

गुरु ते कर दर पाया भगती परे पंडारा, गुरुमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरुमुख परत सलाह है अंतर शब्द अपारा, गुरुमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरुमुख हो मैं मारिये मन निर्मल होई, सतगुर मिले आप गया त्रिभुवन सोजी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मिलाई, पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई, पूरा सतगुर ता मिले जा नजर करे, किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होई, अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाए, नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाए, आसा मैला तीजा सुन मन मन वसाए, तू आपे आए मिले मेरे भाई, अंदिन सच्ची भगत कर सके चित लाई, एको नाम त्याए तू सुख पावे मेरे भाई, हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, विन सतगुर पाई न जाए, पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए, आपे थे सब रखियो ने किस कहन न जाए, आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे सबना का सोई, मंदा किसनो आखिए जे दूजा होई, इको हुक्म वर्तदा एका सिरकारा, आप वाली दितियन अंतर लोभ विकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा, भगत भी ओना नो बख्शियन अंतर पन...

सोई कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वस ना आवनी नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा करे अंदर सब वस है बाहर किस नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरे सतगुर दिया दिखाई रहाओ हर का गाहक होवे सो ले पाए रतन विचारा अंदर खोले दिव दिस देखे मुक्त पंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए न फेरा पार किया वक्त समाल ले गुर सो जी होई नाम पदार्थ अमूल सा गुरमुख पावे कोई बाहर पाले तो क्या लहे वक्त करे अंदर भाई पर में पूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई कर दर छोड़े अपना पर कर चूठा जा।

बोले नानिवे दूजा पाव सुहाओ क्यों मनुआ क्यों करवत आवे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ सोहागणी आप सवारियों ने लाए प्रेम प्यार सतगुर के पाने चल दिया नामे सह शिगार सदा रामे फिर अपना सच्ची सेज सुवाए फिर के प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार सासब राई सुंदरी फिर कहे प्यार सोहागणी विच रंग रखियो न सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सोहागणी सिगार बनाया गुण का गलहार प्रेम पिरमल तन लावना अंत

सच सुवाए, बिन संगति सब ऐसे रहे हैं जैसे पस्तोर, जिनकी तेत से ना जाननी बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाजे।

नानक नामे लाए सवारियन सब दे ले मिलाए आसा मेला तीजा सब नामे नो लोच दी जिस कृपा करे सो पाए बिन नामे सब दुख है सुख तिस जिस मन वसाए तू बेअंत दयाल है ते

तीजा सच रतिया सुहागणी जिना गुर कै शब्द सिगार। कर ही सो फिर पाया सच्चे शब्द विचार, अवगण गुणी बखसाया हर स्यों लिव लाई, हर वर पाया कामणी गुर मेल मिलाई। रहाओ इक फिर हदूर ना जानवी दूजे परम पुलाए, क्यों पायन दोहागणी दुखी रहन विहाए। जिनके मन सच वसिया सच्ची कार कमाए, अंदिन सेवे सहज स्यों सच्चे माही समाए। दोहागणी परम पुलाया कूड़ बोल बिखाए, फिर ना जानन अपना सुनी।

सच निर्मल मन वसाए, सुहागणी सदा फिर पाया हूँ मैं आप दुआए, फिर सेती अम दिन गह रही सच्ची सेज सुख पाए, मेरी मेरी कर गए पल्ले किछ न पाए, मैल नाही दुहागणी अंत गई पछताए, सो फिर मेरा एक है एक क्यों लिवलाए, नानक जे सुख लोड़।

मन सदा हरि आवला सहजे हर गुण गाए राव मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिना पिरका स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरमुख बीजे सच जम्मे सत नाम व पार जो इतला है लायन पग

भक्ति सार न जाननी मनमुख अहंकारी, तुरो आप खुआयन जुए बाजी हारी। बिन प्यारे भगत ना हो वही, ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है गुर भक्ति मन तीर। जितनो भगत कराए सो करे, गुर शब्द विचार हृदय एको नाम वसे। हो मैं दुबदा मार, भगता की जत पथ एक।

अन रस में पोलाया बिन ना में दुख पाए, सतगुरु पुरख ना पेट्यो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साध पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए रहाओ, इस जुग में गुरुमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनहार, बिन नावे सुख न पाये ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार, अंदिन सदा जल्दिया फिरे सेजे रवे ना पतार, सुहागणी महल पाया विच्चों आप गवाए, गुर शब्दी सिगारिया अपने सह लिया मिलाए, मरना मनो विसारिया।

नाम स्यों सुख पुंचे सब थाए। सब जग चल तो पेखी है निचल हर को नाओ, कर मित्राई साध चो निचल पावे ठाओ। मीत साजन सुत बंग

दर्शन कौ बल जाऊं, जिस सिमरत दुख बिसरे प्यारे सो क्यों तजना जाए। इहो तन वेची संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए, सुख सिगार बिखिया के फीके।

सस्य सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़या रहाओ ईवड़ी आद पुरख है दाता।

पढ़िया पंडित आप थिया। छच्छे छाया वर्ती सब अंतर, तेरा किया परम होआ, परम उपाय पुलायन आपे, तेरा कर्म होआ तिन गुरु मिलिया। जज्जे जान मंगत जन जाचे,

मारो अपना पाज पड़ो तुम हर सरना ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा सही जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी जो किछु होआ सो सब चलना तिसे सिरेवो ता सुख पावो सर्व निरंतर रव रहा।

नाने रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पवजल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा हम

सब बख्श लया। हा है हर कथा बूझ तू मूड़े ता सदा सुख होई। मन मुख पढ़े तेता दुख लागे विन सतगुरु मुक्त।

निर्गुण राम तिन्नी बूझ लिया, तेरा अंत न जाई लखिया, अकथ न जाई हर कथिया, नानक जिन को

तन पिरह मेला होए स्वामी, आप प्रभ कृपा करे, सेजा सुहावी संग पिरके, सात सर अमृत भरे, कर दया मया दयाल साचे, शब्द मिल गुण गावो, नानका हर वर देख बिगसी, मुंद मन उमाहो, मुंद सहज सलोनड़िए, एक प्रेम बिनंती राम, मैं मन तन हर भावे, प्रभ संगम राती राम, प्रभ प्रेम राती हर बिनंती, नाम हर कै सुख वसै,

ना जप तप कर कर संयम था की हठ निग्रह नहीं पाइए नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए गुर सागरो रत्नागर तित रतन कणे रे राम कर्म।

सब जगत सवाया राम। तेरा सब किया तू थिरथिया, तुद समान को नाही, तू दाता सब जाचक तेरे।

सच साहिबो आद पुरख अपरम करो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरुमुख शब्द पछा।

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम अवगुण मेट चले।

गुरुमुख तत् विचारो साजन मीत सो जान सखा तू सच मिले वड्याई नानक नाम रतन प्रगासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन रव रहा जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मिलाया साध सभा संता की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत।

हर जियो ते कबहु ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेड़ ना आवे जमन मरण तिना काचू का जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया ते

पाचा साहिब मन वसै की फासे जम जाले राम। मछली विछुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्धिक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया।

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलियो जन्म सवाया। दूजड़े कामन परम पुली हर वर न पाए राम, कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी अवगुणवंती चूरे, अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए, नानक बिन नावे कामन परम फुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामन जानिया गुर मेल मिलाई राम, अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई, सहजे हर रस चाख्या मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने। सच्चे शब्द सुवाख्या पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई नानक बिन भक्ति जग बौराना। सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन आनंद भया, हर जियो मेल प्यारे राम। सा तन हर कै

गुरमुख हुकम पछाणे, जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक।

अब छोड़िए गुर का शब्द संभाले, साथ तेरे सो सो सदा है, एक दिन हर नाम संभाले, जन्म जन्म के तेरे पाप कटे।

सतगुरु मिले दसवां द्वार पाया तिथे अमृत भोजन सहज तुन उपजे जित शब्द जगत थम रहाया तह अनेक वाजे सदा आनंद है सच्चे रहा समाए त्यों कहे नानक सतगुरु मिले तावत थमया निज कर वस्याए मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन हर जी तेरे नाल है गुरमती रंग मान मूल पछाणे ता सो जाने मरण जीवन की सो

क्यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गारब अटिया गारब लद्या जाए माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाहे गारब लागा जाए मुगद मन।

सब संसार दुख गवाया, अदिष्ट अगोचर गुरु वचन त्याया, पवित्र परम पद पाया। अनहद तुन वाजे नित वाजे, गाई सतगुरु बाणी, नानक दात करी प्रभ दाते, ज्योति ज्योत समाणी।

नानक मन तन अर्प गुर आगे जिस प्राप्त सो पाए। रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडारा।

जगत निस्तारा राम नाम वडियाई, कलयुग राम नाम बोहे था गुरमुख पार लंघाई। हलत पलत राम नाम सुहेले गुरमुख करनी सारी, नानक दास दया कर देवे राम नाम निस्तारी। रामो राम नाम जपया दुख के लिए नाश गवाया राम, गुर पर चै

मैं गुरुमुख राम सियाए राम, राम नाम से आए पवित्र हुए आए तिस रूप न रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाई, मन तन शीतल सिगार सब हुआ गुरमत राम पर गाता, नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम विसारिया ते मनमुख मूड।

अनेक कर्म करें अभिमानी, हर रामो नाम चुराया। माँ बिकम जम पंस दुहेला, कालू खत्म हो अंधियारा। नानक गुरु।

समाया। जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद्ध गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होआ जित राम नाम पर गासे।

दुख विनाशन पतित पावन हर नाम जियो, हर सेवा पाई परम गत पाई, हर उत्तम हर हर काम जियो, हर उत्तम काम जपिए, हर नाम हर जपिए।

हर हर करता दुख बिनासन, पतित पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सतगुर पाए जियो। गुरमुख हर पढ़िए, गुरमुख हर सुनिए, हर जपत सुनत।

तुर लिख पाए जियो, हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम, हर जपिए सतगुर पाए जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई, प्रम चूका आमन जान जियो, आमन जाना परम को पागा, हर हर हर गुण गाया, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर से आया सुर पाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सिखाई, गुर सबदी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग वड पागी हर रस पाया, से तन वड्डे सत पुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगे पग साधु, मन चूका सोग विजोग जियो, जिन हर मीठ

पदार्थ हर हर कृपार्थ शोभा गुरुमुख होई अंतर बाहर हर प्रभ एको दूजा अवर न कोई हर हर लिव लाई हर नाम सिखा।

में खिन खिन पग तो में जिन हर मीठ लगान जियो हर मीठा लाया परम सुख पाया मुख पागा रति चारे गुरमत हर गाया हर हार उर पाया हर नामा कंठ तारे सब एक दृष्ट समत कर देखे सब आत्म राम पहचान जियो हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रधान जियो सत संगत मन भाई हर रस निरसाई विच संगत हर रस होए जियो हर हर आराध्या गुर शब्द विगासिया बीजा अवर न कोई जियो अवर न कोई हर

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, सद लेवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो। जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ।

यो मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जग मरण ना पाया निक आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो हर अंतर बाहर हर प्रभ एको इहो जियड़ा रखिया ना जाए जियो क्यों जियो रखी जय हर वस्त लोड़ी जय जिसकी वस्त सो ले जाए जियो मन मुख करण।

जियो जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया जन उबरे हर हर ध्यान जियो हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पैदे जान जियो हर दरगे पैदे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवे दुख में ते हर रामे नाम समाया हर जन प्रभ रल एको हुए हर जन प्रभ एक समान जियो तुर मरण लिखाया गुरमुख सोहाया जन उबरे हर हर ध्यान जियो जग उपजे बिनसे बिनस बिनासे।

आगा समेला पंजवा छंत पर पहला अनगो अनद घना मैं सो प्रभ दीठा राम चाखेड़ा चाखेड़ा मैं हर रस मीठा राम हर रस मीठा मन में बूठा सतगुरु तूठा सहज भया गृहवस आया मंगल गाया पंच दुष्ट ओए पाग गया शीतल आघाने अमृत बाणे साजन संत बसी था कहो नानक हास्यो मन मान्या सो प्रभ नैनी दीठा।

महाराज सारे नमस्कार कर लगे सेवा आते जा जी आपे मां जी आप स्वामी आप देवा अपना कार्य आप सवारे आते तारन तारे कहो नानक सौ कर में बैठा सोहे बंक द्वारे नग्न दे नौन दे मेरे कर में आई राम सब किछ मैं सब किछ पाया नाम से आई राम नाम से आई सदा सखाई सह सुभाई गोविंदा गणत मिटाई चूकी ताई कदे न व्याप मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अतरज शोभ बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नवनिध पाई सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखारा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता परम गड़ा पाया खजाना बहुत निदाना सांत मेरी आप खड़ा सोई सो ज्ञाना सो प्रदाना जो प्रभ अपना कीता कहो नानक जां वल स्वामी ता सर से पाई मीता ऐसा महला पंजवा अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम सुर नर मुन जन सहज वखानी राम सहजे वखानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया तज मान मोह विकार दूजा ज्योति ज्योत समाणी बिनवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड़ पागी सत संगत पाई राम वड़ पागी पाए नाम ते आए लाथे दुख संतापे गुर चरणी लागे परम पौ पागे आप मिटाया पै कर कृपा में ले प्रभ अपने बिछड़ कते न जाई बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरणाई हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारे जिन पेटत प्रभ जाता कट कट रग रहा सब थाई पूरन पुरुष विदाता गुर पूरा पाया नाम ते आया जुए जन्म नहारे बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरणा तेरे चरण तूड़ वड़ पागी पावा राम हर तूड़ी नाइय मैल गवाइय जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभु साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुरु शरण करिए अपने प्रभु भावा आसा संत महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद हर चरण कमल मन बेदिया किछ आमना मीठा राम राजे मिल संत संगत आरा दिया हर कट कटे डीठा राम राजे हर कट कटे डीठा अमृतो उठा जन्म मरण दुख नाथे गुण निध गाया सब दुख मिटाया हो मैं बिनसी गाथे प्रियो सह सुबाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेदे चरण कमल किछ आन न मीठा ज्यों राती जल माछली त्यों राम रस माते

आप लिए लड़ लाए हर रत्न पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ ना कथो जाए। प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते जल संग्राती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे माल खजीना सुत प्रात मीत सबूते प्यारा राम राजे। सबूते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानी है हर सास गिरास न बिसरे कबहू गुर शब्दी रंगमानी है। प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मन और थो पूरा राम राजे। ताथी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे पति पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मन और थो पूरा। आशा महला पंजवा संत कर छेवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। जा को पै कृपाल प्रभु हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह पेट साथ संगात। संत जल दूध न्याई रीत अब दूध आच नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे तरे खिन नाहे तरी है प्रीत हरी है सिगार हगरस अर्पी है जह दुख सुनिए जम पंथ पणिए तह साध संग न डरपी है। कर कीरत गोविंद गुणिए सगल प्राचत दुख हरे कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर इक खिन भी ना धीरे मन ऐसा निहो करे हो। जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो हर प्रीत करी जय इहो मन दी जय अपलाई है चित मुरारी मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी। गुर सो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो। चकवी सूसने हो चितवे आस पणी कर दिनियर देखिए कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए। हर प्रीत करी जय मान न की जय इक राशि के हम पाहुणिया अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावणिया। फिर साधु सरणी पड़िए चरणी अब टूटस मोह जो किती है कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरुण पतार उर्जी पिह सिवे इहो मन लाल दी जय मन लाल दी जय कोप करी जय। हब खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने। गुरथी आसाखी ता डिठम आखी फिर जेहा अवर न दिसे कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय। आशा महला पंजवा श्लोक। बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जग हर पाया मन माहे। छंत जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना कर गवन बसुदा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विषम अवतार शंकर जटाकार चाहे तुझे दयार मंथन रुच अपार अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी। सुर सिद्ध गण गंधर्व से आवे जप किन्नर गुणपनी कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी
जाको सेवे लक्ष्मी अनक पाप गुप्त प्रगट जाको अराधे पौन पानी दिन सुरात नक्षत्र ससियर सूर त्यावे बकुद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत पुराण चतुर्वेद खस शास्त्र जाको जपात पतित पावन भगत वछल नानक मिलिए संग साथ जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवै तेती न जाय गनी अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी त्यो दान मान नानक पाए शीस साधे तर चरनी है समय ला तन्यवा श्लोक उद्दम करो वड पागियो सिमरो हर हर राय नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए संत नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पेट साधु संग जमपुर ने जाइए दुख दर्द ना कहो व्यापे नाम सिमरत सब सुखी सास सास आराध हर हर त्याए सो प्रभु मनमुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निद कर दया सेवा लाई है नाम पयम पै चरण जम पै नाम जपत गोविंद ने अलसाई है पावन पतित पुनीत नाम निरंजना परम अंधेर

सूर्या अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नानक स्वयं पै चरण जम्पै पावन पथित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोह आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरन हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुत हरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नानक पयम पै चरण जमते है ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वचल हर बिरद आप बनाया जय जय संत अरादे तय तय प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुबाये पवित कार्य सारिया आनंद हर जस मा मंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगास देह जिस एक तह दृष्टाया नानक स्वयं पै चरण जमते पवित वचल हर वेद आप बनाया आशा मैला पन्नवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा के गे हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर देह दिस पूर्ण सत सदा प्राण पत गत मत जाके प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरु बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा को राम पतार का कैमद घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का अंग घना आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप त्यागी है तद आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु बचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन ला गया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्या गया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर

संते मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम दे हो हर नाम मांगो चरण लागो मान त्यागो तुम दया कतहुना तावो शरण पावो करुणा में प्रभ करमया समर्थ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच सट कठोर कुलहीन व्यापत मोह कीच मल परम कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता विनोद आनंद माया अज्ञान तालप तावे खिसै जोबन बलै जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लपट रहो ते संग मीठे पोग सोन प्रमत पार अगमत आयो बहु परदेश पायो अब ओट तारी प्रम मुरारी सर्व सुख हर नायो राखन हारे प्रभ प्यारे मुझते कछु न हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारी उधारे पगते संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर

बसुद कागद बन राज कलमा लिखन को जे होए पवन बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण शरण आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकि शरण गही ने को पे प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुख मीत सुरजन इष्ट बंधक जानिया गय कंठ लाया गुर मिलाया जस विमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु न जाए कही प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाय आप भये राम नाम उरहार बिक के दिवस गए गत परम मोह विकार बिन से जोन आमन सब रहे अगन सागर तय शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समरथ बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याय पूरन साध संग पाई परम गते जय देखो तय संग एको रव रहा कट कट वासी आप विरले किने लया जल कल मैयल पूर पूरन कीट हस्त समान्या आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जान्या ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निर्जन कहा सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नाम कराव रहा दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कलमल पातरे दुख पूख दरिद्र नाथे प्रगत मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन चुपुनी कुल संगुआ सब तरे दिन श्रेण आनंद अंदिन सिमरंत नानक हर हरे आसा मैला पंजवा छंत कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम न विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत चंत पिन्नी रैनड़ी है चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अंजनो चरण कमल ध्यान हृदय प्रभ विसरना ही खिनो तब मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे बिन हंस नानक सदा जागे हर दास संत प्यारे मेरी सेजड़ी है अडंबर बनिया मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी चाव मंगल रस भरे अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तन सब हरे मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग सा शुभ गणिया बिन हंस नानक मिले श्री पर सगल आनंद रस बनिया मिल सकी आप पूछे कहो कंस निशानी रस प्रेम परी कछ बोल न जाने गुण गुण गुप्त अपार करते निगम अंत न पावे भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावे सगल गुण सो ज्ञान पूरन आपने प्रभ पाने बिन हंस नानक रंग रा

सहज सर से हर नाम रहसे, प्रभ आप कृपा सहारिया, हर चरण लागे सदा जागे, मिले प्रभ बनवारिया, शुभ दिन से आए सहज पाए, सगल निध प्रभ पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, सदा हर जन पागे, आशा मैला कंजवा, उठ वंज बटा उड़िया, तैं क्या चिर लाया, मोलत कुंडिया कित कूड़ लुभाया, कूड़े लुभाया तो माया, करें पाप अमित्या, तन पसम तेरी जमे हेरी, काल बकड़े जितया,

संग देखे करणहारा काए पाप कमाइए, सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए। आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पद साध संगत सदा नानक मिटे दुख कमाते। वलवंश कर उधर परे मूर्ख गावारा, सब किश दे रहा हर देवन हारा। दातार सदा दयाल स्वामी काए मनो विसारी है, निर साध संगे पद्म संगे कुल समूह तारी है। सिर साधक देव मुंजन भगत नाम आधारा, बिनवंत नान सदा तजी है प्रभ एक करने हारा। खोट न की चई प्रभ परखन हारा, पूर कपट कमाऊ गड़े जन्मे संसारा। संसार सागर किन्नी तरिया जिन्नी एक से आया, तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ सरनाई आया। जल फल मैयल रविया स्वामी पूछ अगम अकारा, बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा। पेट हर चंदौरड़ी अब फिर किछ नाही, माया रंग जेते से संग न जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए, हर एक बिन कछ

ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਵਡ ਭਾਗ ਪਾਈਐ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਹੀ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਚੰਕਰ ਅੱਠਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ कमला परम पीत कमला परम पीत हे तीक्षण मद विपरीत हे अवध अकाल जात गैबर बन कोर गैबर बन कोर हे गृह मूसक मन चोर हे दिन करो अन दिन खास दिन खास जात बिहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप तूप ज्ञान ही नी कुछ बिना मोहे कौन मात पर जोड़ नानक शरण आयो प्रिय नाथ नर हर करो गात मीना जल हीन हे ओहो बिछरत मन तन खीन हे कत जीवन प्रिय बिन होत सन्मुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओहो बेदियो सहज स्रोत प्रिय प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तम तिस बिना पलका ना लागे प्रिय प्रेम पागे चितवंत अंजन प्रमना श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चात्रिक चित प्यास हे तन बूंद बचित्र मन आस हे अल पीवत बिन सतताप ताता बिनासन दुख नासन मिल प्रेम मन सन अतकना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कवन रसना गुणपना गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत काप नानक जम पै पतित पावन हर दर्श पे सतमह संताप चितवो चितनाथ हे रख ले वो शरण अनाथ हे मिल चाओ चाई ले प्राण सुंदर तन ध्यान हे मन लुबद गोपाल ज्ञान हे जाचक जन राखत मान प्रभ मान पूरन दुख विदीरन सगल इच पूजंतिया हर कंठ लागे दिन सुभागे मिल नहा शेष सुवंतिया प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी सगल कलमल पहान बिनवंत नानक मेरी आस पूरन।

अजूनी सैभं गुर प्रसाद आशा महला पहला वासलोकानाल श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य यश राजा की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूर चढ़े हजार इते चानन हुंदिया गुरबिन को रंदार महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलबु आर ज्यों सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलियां फुलियां बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी है करे आसन जिठो चाहो दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझ आखे लख करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सत्यायन सच जो मर जमे सो कच नि कच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सतन्याओ वड्डी वड्याई जाने चलसाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दास वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कार न कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाए लए इकना हुक्म करे विनाश इकना पाने कढ़ लए इकना माया विच निवास ए पे आख न जाते जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए जा को आखरे परदास पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना वे तरम बहा लिया ओथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कड्डे जिजमा लिया थाव न पायन कूड़िया मौका ले दो जुक चा लिया तेरे नाय रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना में करम बहा श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर जंत विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद सुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे पाग महला पहला

पड़ पड़ गड्डी लगी है, पड़ पड़ परी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खात, परी है जेते बर्फ बर्फ, परी है जेते मास, परी है जेती आरजा, परी है जेते सास। नानक लेख है एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला, लिख लिख पड़े आते ता पड़िया, बहु तीर्थ पवे आते तो लव्या, बहु पेक किया देही दुख दिया, सोवे जी आपना किया, अन्न न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा भाया, बस्तर न पहरे एन स्पहरे, मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग पे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख समझे पत गवाई, गिण नावे किस खाई न पाई, रह बिमाणी मरी मसाणी, अंग न जाने फिर पछताणी। सतगुरु पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सो पाए, आस उन्दे से ते ने केवल, हो मैं सब जलाए पौड़ी, अगत तेरे मन पाव दे, दर सोहन कीर्त गाव दे, नानक करमा बाहरे दर को न लेनी ताव दे, एक मूल ना बुझन अपना अनहोंदा आप गणाए दे, हों ताबी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जीत जैत आए दे।

सब जग चलनहार, कूड़ मिठा कूड़ माथ्यो कूड़ डोबे पूर, नानक बखाने बेनती तुद बाद कूड़ो कूड़ महला पहला। सत्ता पर जानिए जार दैसा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा धोए। सत्ता पर जानिए जा पग करे प्यार, नाव सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार। सत्ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो, तर्क पाया साज के विच दे करता बियो। सत्ता पर जानिए जा सिख सकी ले, दया जाने जी की किछ पुन दान करे। सच ता

पाप कड्या कोई नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्लै होए पौड़ी दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है कूड़ा लाल छड़ी है होए इक मन अलग से आई है फल ते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो वे पूर्व लिखिया ता तूड़ तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव।

होए नानक पाहे बारा कोरे रंग न सोए पैर खुम चढ़ाई है शर्म पावतन होए नानक पगती जेर पै कूड़े सोए न कोई मेला पहला लब पाप दे राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार काम लेव सब पूछिए बह करे विचार अंधी रैयत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दार।

0: मूरख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करें प्यार करमी तर्म करें गावावे मंगे मोख द्वार जटी सदावे जुगत न जाने छड़ में कर बार सबको पूरा आपे हो कट ना कोई आखे पग परवाना पिछे पाये ता नानक तोलिया जापे महला पहला वदी सवज्जग नाम का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सोए अगे जाप मजोर है अगे जियो नवे जिनकी लेख है पपवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुझ पाया ता किन्नी खपन से आया ए ना जनता के वश किछ नाही तुझ वेकी जग तो पाया इकना नो तू मेल ले इकापो तुझ खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुझ आप बुझाया सहजे ही सच समाया।
1: श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पाया जा सुख कामना होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सवालियो जिन की तीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा। एक कृष्ण सर्व देवा देव देवाता आत्मा आत्मा बास देव जे को जाने भयो नानकता का दास।

at dirag at much oye je aave aas par jahe nirase kit phal fikke phul bak bakke kam na aave pat mithak neevi nanaka gun chaniyaiyan tak sab ko nive aap ko par kau nive na koe tar ka raju toliye nive so gaura hoye apradi duna nive jo hanta mir gaahe शीश निवाया क्या थी है जान हृदय को सुदे जाए मेला पहला पर पुस्तक संध्या बादं सिल पूज बगल समादं मुक्त ऊठ बेपूखन सारं त्रैपाल से हाल विचारं गल माला तिलक लीलाटं दो तोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब को कठिनश्चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे फिर सतगुरु वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावंदे राय पीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया तां दिसे खरा डरावना कल अवगुण पछोतावना श्लोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवत एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना एहो तुटे ना मल लगे ना एहो जले न जाए तन सो मान स्नान का जो गल चले पाए चौकर मुल अनाया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चरपया वे तगा गया महला पहला लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लखगियां पहनामिया रात दिन जी नाल तब कपाह कती है बामन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होई पुराना सुती है पीसर पाई है होर नानक तग न तुटे जे तग होवे जोर महला पहला नाई मने है पत उपजे साला ही सचूत दरगे अंदर पाई है तग न तुटे सपूत महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुप वै निदारी तग न तैरी तग न

कौ कर लावो गोबर कर न जाई, तोती टिक्का तय जप माली तान मलेच्छा खाई, अंकर पूजा अपने कतेबा संजम तुरका भाई, छोड़ी ले पाखंडा नाम ले है जहां तरंगा महला पहला, मानस खाने करे निवाज, छुरी वगाने तिन गलता।

कहो नानक सत्य आई सुच होवे ता सच पाई पौड़ी। चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंगा, आपे देव आईया आपे ही कर्म कराएंगा। वडो वडा वड मेदनी सुरे सुर तंदे लाएंगा, नगर उपठी जे करे सुल्ताना का उतराएगा, दर मंगन पिख न पाएगा। श्लोक पहला पहला, जे मुहा का घर मुहे कर मुहे पितरी दे अज्ञा वस्त।

के पाए, फिका मूर्ख आखिए पाना लह सजाए महला पहला। अंदरों झूठे तेज बार दुनिया अंदर फैल, अखर तीरथ जे नाम है उतरे नाही मैल। जिन पर अंदर बाहर गुदर के फले संसार, तिन ने हो लगा रब से ती देखने विचार। रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह नाही किसे केरी बात सच्चे ना। दरवाज ऊपर खर्च मंगा जबे देता खाए, दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल। दर ले लेखा पीर छुटे नान का जो तेल। पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही सहतारी है, देखे पीता अपना तर्क ची पक्की सारी है। जो आया सो चल सी सब कोई।

करमा साहेब तुठे जो मिले मेला दूजा, एक नहीं चाकरी जित को खसम न जाए, नानक सेवक काड़िए जैसे ती खसम समाय पौड़ी, नानक अंत न जा अपनी हरता के पारा बार, आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार, इक ना गली जंजीरिया इक तुरी चले बिशियार, आप कराए करे आप हर कैसे करी पुकार, नानक

गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कवन काज जग उपजय बिन सह कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लाओ।

इन विद अभ्यो न चूके। कहीं न उपजे उपजी जाने पाव अपाव विहूणा। उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिवलीना। ज्यो प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना। कहो कबीर ऐसा गुण परंपरा तो मन सुन समाना। आशा गज साडे तै तै तोतिया तेरे पायन तग। गली जिना जप मालिया लोटे हाथ निबग। ओए हर के संत न आखिए बनारस के ठग। ऐसे संत न मौके पावे डाला सो पेदा गटकावे। रहाओ बासन मांज चरावे ऊपर काफी तोए जलावे। बसदा खोज करे दो चूले सारे मानस खावे। ओए पापी सदा फिरे अपराधी मुखों अपरस कहावे। सदा सदा फिरे।

सूझिया, गुर प्रसाद में सब कुछ सूझिया। आशा इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठंगन बाबा दू, किने विवेकी काटी तू राव। सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलिया की हो बहन पान जी, जिने बरी तिस्केरी। हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओ हमारे माथे कायम,

चलाए, दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाए, काजी तै कमन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, किन्हो खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाए मोह तुर्क करेगा, आपन ही कट जाए, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचहारी।

रे बौरे तुम करी न रखे कोई, तू राम नाम जप सोई रहो, काकी मात पिता थो काको, कवन पुरुष की जोई, कट कूटे को बात न पूछे, काडो काडो होई। ब्योहरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई, लग छुटकाए त्रिया रोवे, हंस के ला जाए, कह कबीर सुनो रे संतो, पैसा गर कह पाई, इस बंदे से

एक चुके संत सुन अंग अंत नहीं पाया वेद पढ़े पर ब्रह्म में जन्म गवाया हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई सहज बिलोवो जैसे तकना जा रहा हो तन कर मटकी मन माए बिलोई इस मटकी में सबक संजोई हर का बिलोवना मन का विचारा गुरु पर साथ पावे।

ने कूटा, मंदल ना बाजे नट पे सूता, बुझ गई अगर ना निकसो तुआ, रव रहा एक अगर नहीं दुआ रहाओ। टूटी पंख न बजेर बाब, फूल बिगारे अपना।

आकार होगनहारे पो गया इस मूरत के मुखचार। मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने ना है, कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते 20 वर्ष तक तपना कियो 30 वर्ष तक देव ना पूजा फिर पछताना वृद्ध भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर शोक पुजंग बलयो। रहाओ सूखे सरवर पाल बंधावे लूने खेत हथवार करे। आयो चोर तुरंत तें ले गयो मेरी रासत मुग्ध फिरे। चरण शीश पर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे। जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे तबरे कर्म की आस करे। हर जियो कृपा करे लिव लावे लाहा हर हर नाम लियो। गुर प्रसादी हर तन पायो अंते चल दिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो अन तन कछुए।

मान करारा और खवाद न की जय रे मन, सुकृत कर कर ली जय रे मन। रहाओ कुम्हारे एक जो माती गूंदी, बहु विद्वानी लाई, काहू में मोती मुक्ताहल, काहू ब्याद लगाई। तू मैं तन राशन को दिया, मुगद कहे तन मेरा, जम कर बंड मूंड में लागे, खिन में करे निवेरा। हर जन उत्तम पग सदावे, आज्ञा मन सुख पाई, ज्योतिष पावे।

चिरगट फाल चतारा ले गयो तरी तागरी छूटी आसा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ, रोजा तरह निवाज गुजारे कलमा।

आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्तरी की माटी एक पेक तर नाना ता मैं ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना आशा गगन नगर एक बूंद न बरखे नाद कहा जो समाना पार ब्रह्म पर

ना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिकल पए संग तेरे इंद्री का बल खाका चरण रहे कर तर्क परे है मुखो न निक्षय बाता थाके पंच दूत सब तस्तर आप आपने प्रमते खाका मन कुंचर उर खाका तेज सूत तर रमते मृतक पए दस बंद छूटे मित्र पाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्याव जीवत बंधन तोरे आसा इक तुके चौथा सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया मार मार सर्पनी।

बल अबल क्या इस्ते होई, ए बस्ती का बस्त शरीरा, गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा। आशा कहां स्वाम को सिमरत सुनाए, कहां साकत कह हर गुण गाए, राम राम राम रमे रम रही है, साकत सो पूल नहीं कही है रहाओ, कौआ कहां कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पियाए, सत संगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत स्वान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, अमृत ले ले नीम सिंचाई, कह कबीर ओआ को सहज न जाई। आशा लंका सा को

रहाया, दस मास माता उधर राखिया, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरब जन्म कर्म पूम बीज नाही बोया, राव बारिक ते बिर्द पया, होना सो होया, जा जम आए चोट पकड़े, तब है काहे रोया, जीवने की आस तरह जम निहारे सासा, बाजी गरी संसार कबीरा, चेत टाल पासा, आसा, तन रैनी मन पुनरप कर हूं, पांचों तत बराती, राम राय स्यों पावर ले हो, आत्म तिह रंग राती, गाओ गाओरी दुल्हनी मंगल चारा, मेरे गृह आए राजा राम पुकारा रहो, नाभि कमल में बेदी रचले, ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दूलो पाया, असबद पाव हमारा, सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट तेतीस उजाना, कह कबीर मोहि ब्याह चले हैं, पुरख एक पगवाना, आशा, सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरो रे, सखी सहेली ननद गहेली, देवर के बिरह जरोरे, मेरी मत गौरी मैं राम बिसारे हो, किन विद रहन रहो रे, से जय रमत नैन नहीं पेखो, यो दुख कासों कहो रे रहाओ, बाप साव का करे लड़ाई, माया सज मतवारी, बड़े पाई कह जब संग होती, तब हो ना प्यारी, कह कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया, आशा, हम कर सूत तने नित ताना।

हैं गोविंदा। जम द्वार जब पूछस बवरे तब क्या कहस मुकंदा रहाओ। हम गोरु तुम ग्वार गुसाई जन्म जन्म रखवारे। कब हूँ न पार उतार चढ़ायो कैसे खसमा मारे। तू बामन मैं काशीक दुल्हा बुझो मोर गियाना। तुम तो जाचे कुपत राजे।

आशा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब पुन रूप न होई ताजा तन साज सब खाता राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदिर।

रोजा तरह मनावे अल्हो स्वागत जी सिंघार है आपा देख अवर नहीं देखे काहे को चख मारे काजी साहिब एक तो ही मैं तेरा सोच विचार न देखे खबर न करे दीन के बौरे ताते जन्म अलेख है रहाओ साच कते

रहा कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग टर्यो लोहरी संग पई अब मेरा जेठी और करो आशा मेरी बहुरिया को तनिया ना हो ले राखियो राम जनिया ना हो इन मुंडियन मेरा कर कुंदरावा बिटवे राम रमौआ लावा रहाओ कह कबीर सुनो मेरी माई इन मुंडियन मेरी जात गवाई आशा रहो रहो री बहुरिया कुंगट जिन काडे अंक की बार लहेगी ना आडे रहाओ कुंगट काड गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगट काडे की एह बढ़ाई दिन दस पांच बहु पले आई कुंगट केरो तो पर साचे हर गुण गाए कूद है अर नाचे कह कबीर बहु तब जीते हर गुण गावत जन्म गति तय आशा करवत पला ना करवट।

प्रतीत न होई आशा। कोरी को काहू मरम न जाना, सब जग अंत आयो ताना। रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरे ताना। तरन आकाश की करघ है बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई। पाई जोर बात इक कीनी, तह कांती मन माना। जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पछाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी आशा। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, किस बैकुंठ न जाना। लोक कतीने कछु न होवे।

जैसे मेंढुक तैसे ओए नर फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस नरक में बांचिया जाए, हर का संत मरे हाड़म्बे ता सगली सेंतराई। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा, कह कबीर नरक।

आशा मन मेरो गाजी जुहबा मेरी काटी मट मट काटो जमकी फांसी कहाँ करो जाती कह करो पाती राम को नाम जपो दिन राती रहाओ रांगन रांगो सीवन सीवो राम नाम बिन करी न जीवो भगत करो हर के गुण गावो आठ पहर अपना खसम त्यावो सोईने की सुई रुपे का तागा नामे का चित हर सो लागा आशा साप कुंच खेड दिख नहीं छाड उदक माहे जैसे बग त्यान मांड काहे को की जय त्यान जपन्ना जब ते सुध ना ही मन अपना रहाओ सिंगच पोजन जो नर जाने ऐसे ही ठग देओ बखाने नामे के स्वामी लाए ले चगरा राम रसायन पियो रे।

प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश पंच दोख असाध जान है पांची के तक आस मादो अभिव्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ।

काल पास अबद लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुर ज्ञान भगत।

रविदास पने जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही। आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच पए हैं, गंध सुगंध निवासा। मादो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी रहाओ। तुम मक्तूल सुपेत सपेयल, हम बपरे जस कीरा, सत्संगत मिल रही है मादो जैसे मधु मखीरा। जाती ओछा पाती ओछा।

चरण अरविंद पान मन पान कर पायो पायो रमैया धन रहाओ संपत विपते पटल माया धन। ताम है मगन हो

जन रविदास राम रंग राता, क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुतना कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है राव। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

लालच बिख काम लुगद राता मन बिसरे प्रभ हीरे रहाओ। बिख फल मीठ लगे मन बौरे चार विचार न जानिया गुंते पीत बदी अनपांति जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे दिख फल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया ध्यान मान मन एक मये प्रेम पगत मानी सुख जानिया तृप्त अघाने मुक्त भये। जोत समाए समानी जाके अचली प्रभ पहचानिया तन्ने तन पाया करनी तर मिल जन संत समा।

त्यागि माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय वक्षया पार ब्रह्म पगता में गनिया।

काकिन कुंजड़ियां मनो मचिंदड़ियां रहाओ जे जाना मर जाइए तुम ना आइए ऊंची दुनिया लग ना आप वंजाइए।

याति जग न कोई फिर रहा, जिस आखन हम बैठे केते बैठ गया। कटक कूंजा चेत दो सावन बिजलियां, सियाले सोहंदियां फिर गलबाड़ियां। चले चलन हार विचारा ले मनो, गंदेंदियां छे माह तुड़ंदियां हित सिनो।

कीचे नाम त्याये बिन नावे पूज न होए रहाओ। बाहर देव पखालिए जे मन तो वह कोई झूठ लह जियो मांजिए मोख पयाना होए। पशु मिले चंग आईया।

कार रहाओ। राव सस दीपक जाके त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरुमुख हुए सो एनस निर्मल, मन मुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करे नित चगरा, दोह लोचन क्या हेरे, अंतर ज्योत शब्द तुन जागे, सतगुरु चगर निवेरे, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी, सच महल अपारा, नानक सहज मिले जग जीवन, नदर करो निस्तारा।

जित हर प्रीत न पाए, जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुर सेविए मना, जित सेविए गोविंद प्रीत उपजै, अवर विसर सब जाए। हर से की चित दहर है, जरा का पौ न हो वही जीवन पदवी पाए। रहाओ गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी आप से ती आप खाया। तामन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समयी, दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाये, जे लोचे सब कोय। पूरे की पाल विच्चों निकले का सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे। सतगुर का पाना चित करे, सतगुर आपे कृपा करे। गुजरी महला की जा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाई है, दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, यहाँ सेव बनी जियो राव। हर मेरा सुमृत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधक, हर मेरा भाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है। हर मेरा साथ अंत होए सखाई, हर दिन होर रास पूरी है, चल दिया नाल न जाई। हर मेरा तन मेरे साथ चाले, जहाँ हो जाऊं तह जाई। सो टूठा जो टूठे लागे, सूठे कर्म कमाई। कह नानक हर का पाना हुआ, कहना कछु न जाई। गुजरी महला तीजा, जुग माहे न

आए गुरमुख बूझे कोई नानक विचों हूं मैं मारे ताहर ते तै सोई गुजरी मैला की जा। किस जन सांस सदा मत निचल जिसका अभिमान गवाए सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे हर चरणी चितलाए हर चेत अचेत मना जो इच्छा सो फल होई गुर प्रसादी हर

ही अंत गया पछताए। शिव मन काशी सब तीर्थ सिमरत सतगुरु दिया बुझाए। अक्सर तीर्थ किस संग रहे जिन हर हृदय रहा समाए। नानक सतगुरु मिले हुक्म बुझिया एक वसिया मन आए। जो तुद पावे सब सच है सच्चे रहे समाए। गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडते सुन सच्चे। दूजे पाए जेता पढ़े पढ़त गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई। हर रस रसना चाक तू तामन निर्मल होई राव। सतगुरु मिले मन संतोषी है ता फिर कृष्णा भूख न होए। नाम निधान पाया पर कर जाय ना कोई। कथनी बदनी जे करे मन मुख बूझ न होए।

सो मूर्ख जो आप ना पछाने सच ना करे प्यार, सच्चे जगत डहकाया कहना कछु न जाए, नानक जो किस

संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते पागहीन जम पास, जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए तिग जीवे तिग जीवास, जिन हर जन सतगुरु संगत पाए तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम प्रगास, गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम।

सांस सतगुर गुर पूरा हम पापी गुर निस्तारे रहाओ। गुरमुख वड पागे जिन हर हर नाम अधारे, हर हर अमृत हर रस पावे गुरमत पद पंडारे। जिन दर्शन सतगुर सतपुरुख नाम

नानक जन हर की शरण आई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी मैला चौथा। ओ दयाल मेरा मन लावो, हूँ अंगन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपिए दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्द है ले छाई रहाओ। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाय, नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दर्जे हर हर देव डियाई, तन तन सबा सह

राम जी आया हम हो गए लाले गोले गुरसिखा के जिना अंग दिन हर प्रभ पुरख ते आया मेरे मन तन बिनो गुरसिख पग लाया मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई मोको करो उपदेश हर मिले मिलाया रहाओ जहाँ हर प्रभ पावे ता गुरमुख मेले जिन वचन गुरु सतगुरु मन पाया वड पागी गुर के सिख प्यारे हर निर्वाणी निर्वाण पद पाया सब संगत गुर की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुरु संगत संग न पाया से पागहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रभ तारे हर आपके गुरमुख मिले मिलाया जन नानक बोले गुरबाणी गुरबाणी हर नाम समाया गुजरी महला चौथा जिन सतगुरु पुरखे जिन हर प्रभ पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया हुआ वड पागी हर नाम ते आवे पाई रे मोको कोई आय मिले हर नाम दृढ़ावे मेरे प्रीतम प्राण मन तन सब देवा मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाओ नीरज तरम गुरमत हर पाया नित हर नामे हर सो चित लावे अमृत बचन सतगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मेल न लागे गुरमत नाम जो पहले लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया से पागहीन मोए मर जावे अनद मूल जग जीवन दाता सब जन को अनद करो हर त्यावे तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मिलावे ओंकार सतगुरु प्रसाद गुजरी महला चौथा कर कीजा माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना को संबंध हर कर दिए हमरा जोर सब रहे हो मेरे वीर हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई विच्चे दुरुस्त उदास रहाई जब अंतर प्रीत हर्ष्यों बने आई तब जो किस करे सो मेरे हर प्रभ पाई जित कारे कम हम हर लाए सो हम करें जो आप कराए जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई ते जन नानक राम नाम लिवलाई

तू पाए ता कारज आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरिया, गुरु प्रसाद परम पद पाया सूखे पास ठहरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरिया, सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन पौ करिया।

संसारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को बिरला सेवक हो सगले व्यवहारी रहाओ। शास्त्र वेद सिमरत सब सो दे, सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुक्त न को पावे, मन वेखो कर बिचारी। अच्छा मज्जन कर स्नाना, ब्रह्म आए थर सारी। अनक सोच करें दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग पायो, अब आए हर द्वारी। दुर्मत मेत बुद्ध परगासी, जन नानक गुरुमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमक न बिसरो।

कहा हर तन स्नान हर तन ज्ञान हर संग लाए त्याना हर तन तुल्हा हर तन देड़ी हर हर तार पराना।

निज पाई आश्चर्य हर प्रकार आवो खर्चो तोट न आवे हलत पलत के संगे लाज खजाना गुरु नानक को दिया यो मन हर रंग रंगे।

रंग तमाशा पूर्ण आशा कभे न व्यापे चिंता। पावर तुम्हारा यो मन है हो हर चरणा हो कौला नानक दास।

कहा हो। देश कमावन तन जोरन की मनसा भी चैन से सास, लश्कर नेब खवास सब त्यागे जमपुर ऊठ सिदास।

कर आया कल कलेश मिटे छिन पीतर नानक सहज समाया गुजरी महला पंजवा। जिस मानुख पे करो बिनंती सो अपने दुख परया पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या तिन पौ सागर तरया। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काटे। रहाओ माया के संबंध सेन साथ तित ही कामना आया हर का दास नीच कुल ऊंचा किस संग मन बांचत फल पाया। लाख कोट बिखिया के बिंजन तामे तृष्ण न बूझी सुमरत नाम कोट उजियारा बस्त अगोचर सूजी। फिरत फिरत तुम रे द्वारे आया तै पंजन हर राया साध के चरण तूर जन बांछे सुख नानक यो पाया। गुजरी मेला पंजवा पंच पदा कर दूजा इको अंकार।

आए, हर जप माया बंधन टूटे। अरे कृपाल दयाल प्रभ मेरे, साध संगत मिल छूटे। रहाओ आठ पैर।

सगल करत नमस्कारो, वर्ण जात को पूछे नाही, बाछे चरण रवारो, ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो, सगल सृष्ट को तनी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ, साध संग नानक बुध पाई, हर कीर्तन आधारो, नाम देव त्रिलोचन।

कई कल्याण आनंद रूप हुई है, उबरे बाल गोपाल रहाओ, मिल वर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार, कहूँ नानक तिस गुर बलिहारी, जिन सबका किया उधार, गुजरी महला पंजवा। मात पिता पाई सुख बंदत, तिन का बल है थोरा, अनित रंग माया के पेखे, किछ साथ न चाले पोरा, ठाकुर तुझ बिन आए न मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा, साध संग नानक दर्श पायो, बिनसो सगल ने होरा, गुजरी मैला पंजवा। आल जाल प्रम मोहत जावे, प्रभ से ती रंग लाए, मन को इह उपदेश।

पूरे मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा सर्व प्रत पालक प्रभु को सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम समारो तुम ही कहो प्रभु आही नानक।

ओर चित चित वो हर रसन अरादो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर दिनों करो कर जोर नाम जपे नानक दास।

चरण कमल संगराच सगल जीव जाको आराध है ताहू को तू चाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते तू प्रभ प्राण आधार होए सहाय जिस तू राखे किस कहा करे संसार। गुजरी महला पन्नवा जल की तेज सवारी आप हर हर नाम दियो गुर अवखद उतर गयो सब ताप राव हर गोविंद रखियो परमेश्वर अपनी कृपा तार।

पुरख कपटे अनक जुगत कर कायो विसरत प्रभ के ते दुख गनिए महामोनी खायो करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो गुजरी महला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्यवहार मिथ्या पाज सदा भगवंत रहाओ नाम एक आधार भगता ईत आगे तेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समरथ श्री कर शरण ताकी गही मुक्त जुगत रवाल।

रविया सोए, कोट जतन उपाव मिथ्या, कछ न आवे काम। शरण साधु निर्मला गत होए प्रभ के नाम, अगम दयाल प्रभ।

साध संग उधार एवं मन आठ पहर आराध काम क्रोध अहंकार बिन सह मिटे सगल उपाद अटल अछेद अपेद स्वामी शरणता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक सों लिवलाओ पार ब्रह्म प्रभु दयाकारी बख्श ली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभु जाप गुजरी मैला पंजवा गुरु प्रसादी प्रभु ते आया गई शंका टूट दुख अनेरा पै बिना से पाप गए निखूट हर हर नाम की मन प्रीत मिल साध बचन गोविंद त्याए।

सात सास ना बिसर कब हूँ ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगनत सदा कथ दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर शरण गुजरी मैला पंजवा अहं बुद्ध बहु सजन माया महादीर्घ रोग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करण कारण जोग मन तन बांसी है जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ आद अंते मद आशा कुकरी विकराल गुरु ज्ञान कीर्तन।

बिन अवर ना ठाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपिन तुम्हारा नाओ रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वड्डे पाग लिवलागी, कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी। आठ पह

जोगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस्माया मन तत अविगत त्याया गुरु प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात कचियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तासर साधन जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं बिताज अमृत पियाया गुजरी मेला पहला कवन कवन जाचे प्रभदाते ताके अंत न परे सुमार जैसी पूख हो।

जल थल तरण जगन तह नाही आपे आप किया करतार। ना तद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ना जोत अपार सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सो त्रिगुण सार। पवन पानी अगन तिनकिया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार सर्वे जाचक तू प्रभदाता दात करे अपने विचार। कोट के तिस जाचे प्रभ नायक देंदे तोट नाही पंडार ऊंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार। सिद्ध समाधि

जम जो है बूझे अंतर शब्द विचार। अब तब अवर ना मांगो हर कै नाम निरंजन दीजे प्यार, नानक चात्रिक अम

गुर प्रसादी हर प्रभ जाके ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। ऐ जी बहुते पेट करें पिछिया को के ते उधर परन कहताएं बिन हर भगत ना।

है जी पाग परे गुर शरण तुम्हारी, मैं और न दूजी पाई। अब तब एक को एक पुकारो आज जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की, तुझ ही सो बन आई, कर कृपा गुरु।

नाम रते केवल बैरागी सोग विजोग विसर्जत रोग पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मले ना जम कान ना जम की बाकी रहा हर गुण रसन रवे प्रभ संगे ज्योतिष पावे।

निंदक नर काले मुख निंदा जिन गुर की दात न पाए। ऐ जी शरण परे प्रभु बख्श मिलावे बिलम न अदुआर आई। अनदे मूले नाथ सिरनाथा सतगुर मेल मिलाई। ऐ जी सदा दयाल दया कर रव्या गुरमते प्रमन चुकाई। पारस पेट कंचन तात होई सत संगत की वड़ियाई। हर जल निर्मल

भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर शरण।

पज शरण सतगुर उबरे हर नाम रिद रमणं गुरमत निर्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर जान रतन सारं तै पाए भगत तर पर जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन इहो शरीर तौ सरणी लब लोभ

हर दिन जियरा रह न सके ज्यो बालक खीर अधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये अपने सतगुर के बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाये जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनक सनंदन नारद मुन सेवे अन दिन जपत रहे।

जोत मुरारी सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी भगत जना की उत्तम वाणी गावे अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म पया तिन केरा आप तरे कुलतारी मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे जिन अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना पावे कोई डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल तोवे ओ मल पख माया तारी संत जना की निंदा व्यापे ना उर्वार न पारी यो परपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी हर एक को सूत वरते जुग अंतर सूत खिंचे एकंकारी रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी नानक हर बिन अवर

प्रब आज्ञा हुक्मन सिर हुक्मा। ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। गुजरी मैला पंजवा कर चौथा इको ओंकार सतगुर प्रसाद। नाथ नर हर दीन बंदव पतित पावन देव, पै त्रास नास कृपाल गुण निधि।

हरण मद मोह दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार तरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिदमंत छेद अहं बुद्ध करुणा में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहज समाद दीन दयाल प्रसन्न पूरन जाचिय रज साध मोह मिथन दुरंत आसा बासना बिकार रख धर्म परम बिदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड़ पंडार हर निद होत जिनाना चीर खल मुगद मूड कटाक्ष श्री तर पे गुण मत तीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमणं परम हंस रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक।

जा। एहो जगत ममता मुआ जीवन की विद नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाए। महला तीजा। अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कभे न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मन मुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर ना कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रै लोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई। ज्यो तिस पावे तिवे करे तिस बिन अवर न कोई। श्लोक महला तीजा। साहिब मेरा सदा है दिसे शब्द कमाए, ओ औहाणी कदे नाहे ना आवे ना जाए। सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए, अवर न दूजा क्यों सेवी है जम्मे ते मर जाए। नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने, अपना अवरी को चितलाए। नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा। सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच, नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई, अंधा कच निकच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर शब्द सुनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायन तुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा। सो जप सो तप जे सतगुर पावे, सतगुर के

पौड़ी। माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरिये तारी। अन दिन पगति रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड विकारी। हर हर नाम त्याय है हर हर निस्तारी। श्लोक

नानक मुक्त द्वारा अतनी का नाना होए सो जाए। हौ मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुरु मिले हौ मैं गई जोत रही सब आए। इहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाई है दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सब दे हों मैं खोई है हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विगसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुरु स्यो चित न लायो नाम नव स्यो मन आए। त्रिग इवे आ जीविया क्या जुग में पाया आए। माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुरु स्यो चित लाया तिन सुख वस्या मन आए। हर नाम त्यावे रंग स्यो हर नाम रहे लिवलाए। नानक सतगुरु सो तन सौंपिया।

जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जा हो वै खसम दयाल ता महल कर पाए सी, सो प्रभ मेरा अत वड़ा गुरमुख मेलाए सी। श्लोक महला तीजा, सबना का सो एक है सद ही रह अजूर, नानक हुक्म ना मनई।

आई जल मोई कंत न लायो पाओ, नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता, उपाय किते न पाई हर कर्म विदाता। गुर शब्दी हर मन वसे हर सहजे जाता, अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सरना।

केसनों कूड बोल के खवा लिया, जे चल दिया नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछों जाए, होता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुक्म ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा, एको ने चल नाम तन, होर तन आवे जाए। इस तन को तस्कर जोए न सके, ना ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जी ऐसे।

जिना नाम तन खटिया आए पौड़ी। मेरा साहिब अत वड्डा सच गैर गंभीरा, सब जग तिसके वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाई नेचल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसे पेटे गुरसूरा। गुणवंती सलाया सदा थिर नेचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा। त्रिग तिना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुखों में पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत ओए सुख ना पावे, अंत गए पछताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस होमे विच्चों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊदा कौल है ना तिस भगत ना नाओ, शक्ति अंदर वर्तदा कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चितना पिजई मुख फीका लाओ। ओए तरम रलाए ना रलन, ओ ना अंदर कूड़ सुहाओ। नानक करते बनत बनाई, मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे। गुरमुख तरे जप हर नाओ पौड़ी।

विच्चों उतरे सुख वसे मन आई सदा सदा सलाई है हृदय लिवलाई। श्लोक महला तीजा जे सतगुर सेवे आपना तिसनो पूजे सब कोए सबना उपावा सिर उपाओ है हर नाम प्राप्त होए अंतर शीतल सांत वसे जप हृदय।

हर सुख दाता मन वसै। हों मैं जाय गुमान नानक नदरी पाई है, ता अंदिन लागे ध्यान पौड़ी। सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता। तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता। सबना दाता एक है इको हर मिता। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कहिए, जे अंदिन हर लिवलाए। सतगुरु पुछे सच संजम कमावे, हों मैं रोग तिस जाए। हर गुण गावे गुण संग्रह है, ज्योति ज्योत मिलाए। इस युग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी, जे हों मैं मेट समाए। नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई है, जे अंदिन हर नाम त्याए। महला तीजा। अंतर कपट मन मुख अज्ञानी, रसना झूठ बुलाए। कपट कीते हर पुरख न पीजे, नित वेखे सुने सुवाए। दूजे पाए जाए जग प्रबोधे, बिख माया मोह सुवाए। इत कमाणे सदा।

मिल रहे। जप हर नामा उद्धार श्लोक महला तीजा। गुरुमुख त्यान सहज तुन उपजय सच नाम चित लाया। गुरुमुख अन दिन रहे रंग राता हर का नाम मन पाया। गुरुमुख हर वेखे गुरुमुख हर बोले गुरुमुख हर सहज रंग लाया। नानक गुरुमुख ज्ञान प्राप्त होवे तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। जिसनो कर्म होवे तुर पूरा तिन गुरुमुख हर नाम ते आया। महला तीजा सत गुरु जिना

पेरस होगी। आप अतीत अलिप्त है निर्जोग हर जोगी, ज्योतिष पावे सो करे हर करे सो होगी, हर गुरुमुख नाम ते आये लह जाहे विजोगी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह आप अखाएदा,

आई वड पागिया वाहो वाहो मोह कढाई वाहो वाहो करें सही जन सोने तिन को प्रजा पूजने आई वाहो वाहो करम प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी वज्र कपाट काया गढ़ पीतर कूड़ कुसत अभिमानी परम पूले नदर ना आवनी मनमुख अंध अज्ञानी उपाय कित न लबनी कर पेख थके पेखवानी गुर शब्दी खोलायन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी।

नाउ जात ना जाए सी मन मुख दुख खाता रसना हर रस ना चखियो फीका बोलाता जिना गुरमुख अमृत चाखिया से जन तृप्ताता श्लोक महला तीजा।

जे सतगुरु दिया दिखाए महला तीजा, वाह वाह गुरमुख सदा करें, मनमुख मरे भिख खाए, ऊना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए, गुरमुख अमृत पीवना वाह वाह करे लिव लाए, नानक वाह वाह करे से जन निर्मले, त्रिभवन सोजी पाए पौड़ी, हर कै पाणे गुर मिले सेवा भगत बनी जय, हर कै पाणे हर मन वसे सहजे रस पी जय, हर कै पाणे सुख पाई हर लाहा नित ली जय, हर कै तख्त बहालिए।

जाए, वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे, हों मैं विच्चों जाए, वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए, वाह वाह करें से जन सोहने हर तिन के संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहार है जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुरसिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणिए सच है समाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमति हर रस चाखिया से पुन पराणी। बिन गुर किने न पायो।

पाए खुआए, जम्मण मरण न चुकई हो मैं विच दुख पाए। जिना सतगुर से चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना हो वही ना ओए दुख सहाय। नानक गुरमुख उबरे सच्चे सब समाए पौड़ी, ताड़ी तिसनो आखी है जे खसमे तरे प्यार, दर खड़ा सेवा करे गुर शब्दी विचार। ताड़ी दर कर पाए सी सच रखे उरतार, ताड़ी का महल अगला हर कहनाए प्यार। ताड़ी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार, श्लोक महला तीजा। गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना, गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना। जिस सतगुरु मिले तिस तौ पवे सा कुलवंती नार, सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनो कृपा की करतार। ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार, पै पै मल कटिए निर्मल होवे शरीर। अंतर प्रगास मत उत्तम होवे हर जप गुणी गहीर। पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार, कैथे सुख वडियाईया दरगे मोख द्वार। पैते निरपो पाये मिल ज्योति ज्योत अपार, नानक खसमे पावे सा पली जिसनो आपे बख्शे करतार। महला तीजा, सदा सदा साला ही है सच्चे को बल जाओ, नानक एक छोड़ दूजे लगे साजेवा जल जाओ। पौड़ी अंसा अवतार उपायन पाओ दूजा किया, ज्यो राजे राज कमाऊ दे दुख सुख पिड़िया। ईश्वर ब्रह्मा सेव दे अंत तिनी ना लहिया, निर्भो निरंकार अलख है गुरमुख प्रगटैया। तिथे सोग विजोग ना व्यापई अस्थिर जगथिया, श्लोक महला तीजा। एहो सब किछ आवन जान है जेता है आकार, जिन एहो लेखा लिखिया सो हो आपरवान। नानक जे को आप गणाईदा सो मूरख गावार। महला तीजा, मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा, जह खिंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बाहरा। फिर उजड़ पाए पौड़ी, तिस आगे अरदास जिन उपाया, सतगुर अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाव सदा ते आया, संत जना के संग दुख मिटाया। नानक पय अचिंत हर तन ने चलाया, श्लोक महला तीजा। खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय, महल पगती कर सरे सज्जन पाहुण्यो। बरसना ता बरसकना बहुड़ बरसे काहे, नानक तिन बलिहारण जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा, मिठा सो जो पावदा सज्जन सो जे रास, नानक गुरमुख जानिए जा को आप करे परगास। पौड़ी प्रभ पास जन की अरदास, तू सच्चा साई तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याए। जी जंत सब तेरिया तू रहा समाए, जो दास तेरे की निंदा करे तिस्मार पचाए। चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाई, श्लोक महला तीजा। आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए, नानक आशा पूरिया सच्चे से चित लाए। महला तीजा, आशा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो ले जाए, नानक ने चल को नहीं बाजो हर कहनाए। पौड़ी आपे जग तो पायन कर पूरा थाट, आपे साओ आपे बने।

गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सतगुर से तीरत्या दर्जे पाये ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वत दे जग में उत्तम काडिये विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन साप जना कै संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माए बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है सच्चो सच्चा सच सच निहारी है कूड़ न जापे किच तेरी तारी है सबसे दे दातार जेत उपारी है इकत सूत परोए जोत संजारी है हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है तेरी गत मित लकी ना जाए हों तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर मह पाहे जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा किती बहन बहने मुच बजाएं वज नानक सच्चे नाम बिन किसे न रहिया लज। पौड़ी तुद त्यायन बेद कते बां सन खड़े गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े ब्रह्मे तुद त्यायन इंद्र इंद्रासना शंकर विष्ण अवतार हर जस मुखपणा पीर पिकाबर शेख मसायक औलिए ओत पोत निरंकार कट कट मौलिए।

पंजवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रत्ता मूल नानक जो प्रभ पाणिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगे न मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होए संतोख त्याये सदा हर सो लगा सतगुर सेव जा को कर्म तुर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया नानक लहरी लख से आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन पिहाव लै हिक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई संत प्यारे नानक पूरन कामा। पौड़ी पायन सब निधान तेरे रंग रत्या ना होवी पछो ताओ तुदनो जपत्या पहुंच ना सके कोए तेरी टेक जन गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन गुर पै सिफत पंडार करमी पाये सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना ताये रखे आप दयाल कर दासा अपने हर हर हर।

तेंदे सिमरन हब किछ लद्दम बिखम ना डिठम कोई जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट ना सके कोई पौड़ी होवे सुख कणा दे त्याए वन्ये रोगा कान हर गुण गाए अंदर वरते ठांड प्रभ चित आए पूरन होवे आस नाए मन बसाए कोई न लगे बिघन आप गवाए ज्ञान पदार्थ मत गुरते पाए तिन पाए सभी थोक जिस आप दिवाए तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैंडा खोज न खुंबे मंज मुहब्बत तेरी कौसे चरणी मैंडा हीड़ा सीतम हर नानक तुल्हा बेड़ी। महला पंजवा। जिना दिसंदड़िया दुरमत बन जाए मित्र असाडड़े से हौ टूडे दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगता डिठिया मन की कटिए मैल सात संग उठिया जन्म मरण पौ कटिए जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस्यो लाइन रंग जिस दी सब तारिया ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास आई है जा आपते होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा। बार विडानले हुमस तुमस कूका पैया राही तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अनद सेती बन गाही। महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग ना की चई नानक जिना अपना सुआओ। पौड़ी सावेला परवान जिस सतगुर पेटिया हुआ साधु संग फिर दूक ना तेटिया पाया नेचर थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए त्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखों बोले त्या हुक्मे बुझ निहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुर न खोटिया। श्लोक महला पंजवा। विछोहे जंबूर खवे ना मंजन गाखड़े जेसो तनी मिलन नानक सुख संभू सच। महला पंजवा। जिमी वसंदी पानी है ईदन रखे पाए नानक सो सो आहे जाके आडल हब को। पौड़ी तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे सोई वरते जग जे किया तुद तुरे बिस्म पे बिस्माद देख कुदरत तेरिया शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया तेरे हाथ निधान पावे तिस दे जिसनो होए दयाल हर नाम से ले अगम अगोचर बेअंत अंत न पाये जिसनो हो है कृपाल सो नाम ते आई है। श्लोक महला पंजवा। करछिया फिरन सुआव ना जान सुनिया से मुख दिसन नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा। खोजी लद्दम खोज छड़िया उजाड़ तैसे दिती वाड़ नानक खेत ना छिजई। पौड़ी आरा दियो सच्चा सोए सब

महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अन दिन बिलपते जो सुंजै कर काव पौड़ी सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया इच पुन्नी मन आस गए विसूरिया पाया नाम निधान जिसनो पालदा जोत मिली संग जोत रहया कालदा सुख सहज आनंद उठे तित कर आवन जान रहे जन्म ना तहां मर साहेब सेवक इक इक दृष्टाया गुर प्रसाद नानक सच समाया।

चार पाव दो सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। ऊठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुसखई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महा परम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसर्यो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों

रघुराई। गुजरी श्री नाम देव जी के पदे कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद। जो राज दे ता कमन बढ़ाई, जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई। तू हर पज मन मेरे पद निर्बान, बौर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई। सतगुर मिले।

मले ना लाचे पार मलो पर मलियो बैठो री आई आवत किने ना पेखियो कवने जाने री बाई कौन कहे किन बूजिए रमैया आकुल री बाई रहाओ ज्यो आकाशे पंखियलो खोज निरखियो ना जाई ज्यो जल माजे माछलो मार्ग पेखनो ना जाई ज्यो आकाशे कड़ुअलो मृग तृष्णा परया नामे चे स्वामी बीठलो जिनती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे कर थी जा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। दूध त बचरे थनो बिटारियो फूल पवर जल मीन बिगारियो माई गोविंद पूजा कहा ले चरावो और ना फूल अनूप ना पावो रहाओ मैलागर बेरे है पयंगा बिख अमृत बसे इक संगा तूप दीप नई बेदे बासा कैसे पूज करें तेरी दासा तन मन अर्प

सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपिमं सत आद पावरतं परमद्भुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं नादनोत जस स्मरणेन जन्म जराद मरण पयं प्रहाव इच्छस जमाद पराभयं जस स्वस्त सुकृत कीर्तं पाव पूत पाव समभ्यं परमं प्रसन्मिदं लोबाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर पगत निज ने केवला हृद कर्मणा बच

मेरे मन मुख हर हर हर बोली है, गुरमुख रंग चलू लै राती, हर प्रेम पीनी चोली है रहा, हो फिरो दीवानी आवल बावल, किस कारण हर टोली है, कोई मिल है मेरा प्रीतम प्यारा, हम किसकी गुलगोली है। सतगुरु पुरख मनावो अपना, हर अमृत पी चोली है, गुर प्रसाद।

बुरा कहो हम तन दियो है तार। जो आओ शरण ठाकुर प्रभ तुमरी किस राखो कृपा थार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार। देव गंधारी हर गुण गावे हों किस बलिहारी। देख देख जीवा साध गुर दर्शन जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ। तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी हम क्यों कर मिले जुठारी। हमरे जिए होर मुख होर हो तो है हम कर्म ही कूड़ियारी। हमरी मुदर नाम हर स्वामी रुद अंतर दुष्ट दुष्टारी। जो पावे क्यों राखो स्वामी जन नाम शरण तुम्हारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नट्टी। जो बेसुआ के कर पूत जमत है किस नाम परयो है कपटी रहाओ। जिनका हृदय नाम हर स्वामी ते बिगड़ रूप बेरक्ती। जो निगुरा बहु बाता जाने ओह हर दरगे है प्रस्ती। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी तिना साध जना पग चकती। नानक पतित पवित मिल संगत गुर सतगुर पाछे चुकती। छक्का पहला देव गंधारी महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुर चरणी चितलाई है प्रभ होए कृपाल कमल प्रगासे। सदा सदा हर त्याई है रहाओ अंतर एको बार एको सब में एक समाई है। काट अब घट गया सब खाई हर पूरन ब्रह्म दिखाई है। पुस्तक करे सेवक मुन के तेरा अंत ना कतु पाई है। सुख दाते दुख पंजन स्वामी जन नाम सद बल जाई है। देव गंधारी माई होन हार सो होई है। राज रहो रचना प्रभ अपनी कहां लाभ कहां खोई है रहो। कै फूले आनंद बिखे सोग कब हसनो कब रोई है। कब हूँ मैं परे अभिमानी कब साधु संग तोई है। कोई न मेटे प्रभ का किया दूसर नानी अलोई है। कहो नानक किस गुर बलिहारी जिन पर साग सुख सोई है। देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत। मेर ते तजो अभिमाना शरण स्वामी की परत रहाओ। जो जो कहे सोई पल मानो नाही ना का बोल करत। निमुख न बिसरो हिये मोरे ते बिसरत जाई हों मरत। सुखदाई पूरन प्रभ करता मेरे।

तेरी सेवा दर्शन दुख उतारियो, नाम जपत महासुख पायो, चिंता रोग बिदारियो, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिसारियो, माया बंद काटे कृपा निध नाम आप उधारियो, देव नारी मन सगल श्याम रही, कर्म कराम हार स्वामी नाम कोट गही रहाओ, आप मेक पे शरणाई एह मत साधु कही, प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा नहीं, जान प्रवीण स्वामी प्रभु मेरे शरण कुमारी अही, खिन में खाप खापन हारे कुदरत की मना पही, देव नारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते, गुरु प्रसाद पाहुं जाते रहाओ, संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल न खाते, रंग तुम्हारे लाल पे हैं राम नाम रसमाते, महा किलबित कोट दोत रोगा प्रभ दिष्ट तुम्हारी हाते, सोत जाग हर हर हर गाया नानक गुरु चरण।

अज्ञान अंधेरा संति काटिया, जीव दान गुर देनी, कर कृपा कर लीनो अपना, जलते शीतल होनी। तरम तरम किछ उपज ना आयो, नह उपजी निर्मल करनी, छाड़ स्यान तो संजम नानक, लागो गुर की चरणी। देव गंदारी महला पंजवा, हर राम नाम जप लाहा, गत पावे सुख सहज आनंदा, काटे जम के पाहा रहाओ। खोजत खोजत खोज बिचारियो, हर संत जना पह आहा, तिना प्राप्त एवं निधाना, जिनके कर लिखा, से बड़ पागी से पतवंते, से ही पूरे साहा, सुंदर सुगर स्वरूप ते नानक, जिन हर हर नाम निसाहा। देव नारी महला पंजवा, मन कह अंकार अपारा, दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर, जो दिशा सोचारा रहा।

अंग गुंग पिंगल मत हीना प्रभ राखो राखन हारा कर कराम हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी महला पंजा। सो प्रभ नेरे हूते नेरे सिमरत आए गाय गुण गोविंद दिन रैन सांस सवेरे रहाओ उदर दे दुलभ साधु संग हर हर नाम जपे रह करी न मोहत न चसा बिलंब हो काल नित नित हेर अंग बिलाते काजो करते क्या नाही करते रह नाम आधार जी जय नानक को अंग सूख कने रह छके दूजा देव गंधारी महला पंजवा। मन गुरमिल नाम आराध्यो सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल बांधो रहा कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया पांदो पाओ भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साध्यो पयो अनुग्रह मिट्यो मोर्चा अमोल पदार्थ ला दियो बलिहार नाम लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगा दियो देव गंधारी महला पंजवा। माई जो प्रभ के गुण गावे सफल आया जीवन फल ताको पार ब्रह्म लिवलावे रहाओ सुंदर सुगड़ सूर सो बेता जो साधु संग पावे नाम उचार करे हर रसना बहुड़ न जो नी पावे पूरन ब्रह्म रविया मन तन में आम न दृष्टि आवे नरक रोग नहीं होवत जन संग नानक जिस लड़ लावे देव गंधारी महला पंजवा। चंचल सुपने ही उड़ जायो इतनी न बूझे कबू चलना बिकल पयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया बिखिया एक उपायो लोग सुने मन सुख कर माने वेद कहाँ उठतायो फिर्क बहुत श्रम पायो संत दुआरे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो। देव गंधारी महला पंजवा सर्व सुखा गुर चरना कलमल दारन मने सुधारन एह आसर मोहे करना रहाओ पूजा अर्चा सेवा बंदन एह टहल मोहे करना बिकसे मन होवे प्रगासा बहु न गर्वे परना सफल मूरत परसों संतन की एह त्याना करना पयो कृपाल ठाकुर नानक को परयो साध की सरना। देव गंधारी महला पंजवा अपने हर पै बिनती कही है चार पदार्थ अंग मंगल निध सुख सहज सिद्ध लही है रहाओ मान त्याग हर चरनी लागो तिस प्रभ अंचल गही है आँच न लागे अग्न सागर के सरन स्वामी की अही है कोट प्राग महा अकीर्त कान बहुर बहुर प्रभ सही है करना मैं पूरन परमेश्वर नानक के सर नहीं है। देव गंधारी महला पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा रोग सोग सब दुख विनाशे उतरे सगल कलेसा रहाओ जन्म जन्म के कुल विनाशे कोट मज्जन स्नाना नाम निधान गावत गुण गोविंद लागो सहित्याना कर कृपा अपना दास कीनो बंधन तोड़ निहारे जप जप नाम जीवा तेरी बाणी नानक दास बलिहारे छके तीजा देव गंधारी महला पंजवा। माई प्रभ के चरण निहारो करो अनुग्रह स्वामी मेरे मन से कभू न डारो रहो साधु तूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध दिख जारो सब से नीच आत्म कर मानो मन में एह सुख पारो गुण गावे ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारो नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए उधारो देव गंधारी महला पंजवा। प्रभ जियो पेखो दर्श तुम्हारा सुंदर त्यान तार दिल रहनी जी प्राण ते प्यारा रहाओ शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत विचारा दीना नाथ प्राण पत पूरन पव जल उदरन हारा आजुवाद पगत जन सेवक ताकी बिथे अधारा तिन जन की तूर बंश है नित नानक परमेश्वर देव अनहारा। देव गंधारी महला पंजवा तेरा जन राम रसायन माता प्रेम रसा निज जा को उपजी छोड़ न कतहु जाता रहाओ
बैठत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अब सब तीरथ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता सफल जन्म हर जन का उपजया जिन कीनो सौत विदाता सगल समूह लै उदरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता देव गदारी महला पंजवा माई गुरु बिन ज्ञान न पाई है अनेक प्रकार फिरत बिल्लाते मिलत नहीं गोसाई रहा मोह रोग सोग तन बांधियो बहु जोनी परमाई है टिकन न पावे बिन सत्संगत किस आगे जाए रुआई है करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट कोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाई है देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पै कल्याण आनंद रूप हुई है उबरे बाल गोपाल रहाओ दो कर जोर करी बेनंती पार ब्रह्म मन से आया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उधार इको अंकार सतगुरु प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुरु पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख पंजन मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सया कर मस्तक तार साध निवाजे मोहे दुष्ट जो खया परोपकारी सर्व सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण को दाता चरण कमल उर दरिया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो राखन हारे रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछे अंति वारे जब चितो तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ साथ दरसारे मन में राखो एक असारे नानक प्रभ मेरे करने हारे देव गंधारी महला पंजवा प्रभ यह मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोह दीजै कर संतन का चेहरा रहाओ प्रातः काल लागो जन चरनी निष्बासर दर्श पाओ तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावो सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रही है एक आधार नाम कन मोरा अंग नानक एह लही है राग देव गंधारी महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ न जाए सब ही संगे अंदिन गुर मिल गाए रहाओ मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कठू जाए अनक अनक पांत बहु पेखे प्रिय रोम ना समसर लाए मंदर पाग सोग

दर्शन नाम को मन आचे प्रम आयो है सगल खान रे आहे परयो संत पाछे रहाओ किस हो सेवी किस आराधी जो दिसते सो गाचे साध संगत की सरनी परिय चरण रेन मन बाचे जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्तर माया आचे आय पयो नानक गुरचरनी।

ऊंचा आन न हम सर को लागे, टूट रहे हम ऊंचा रहाओ, बहु व्यंत अत बड़ो गारो, हा नहीं अगहूचा, तोल न तुलिये मोल न मुलिये, कत पाइये मन रूचा, खोज असंखा अनित पंखा, बिन गुर नहीं पहुंचा, कहो नानक कृपा करी ठाकुर, मिल साधु रस पूंचा देव।

अगम अगम्मा कवन महमा मन जीवे सुन सो चार आश्रम चार ग्रन्ना मुकत पे शेर तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निज पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक कह रे हर एक कह जान एक कह रे गुरुमुख जान रहाओ काहे परमत हो तुम प्रमोद।

देवगंधारी महला पंजवा जानी न जाई तासी दास रहाओ कह पेथारो हों कर चतराई दिश्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध असाधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत बेअंत तन नानक कह न जाई परे परा देव गंधारी महला पंजवा त्याए गाए करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अंत को ही रे एक समार रहाओ सफल मूरत गुर मेरे माथ है जब तक देखो तब तक साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभ मेरा कट कट अंतर साहिब मेरा पाकी शरण आसर प्रभ नानक जाका अंत ना पारावार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे मन उल्टी रे साक्ष्यों कर उल्टी रे झूठे की रे झूठ परीत छुटकी रे मन छुटकी रे साथ संग।

नेक ना करो करे शीख सिखाए रहो अपनी सी दुर्मत से ना डरे रहो मद माया के पयो बावरो हर जस ने उचरे तर पर पंच जगत को ढके

ते अंधकार संगीन है को ए अचरज है रीत मन मूरख अज हूने संगत सिख दे हारियो नीत नानक पौजल पार परे जो गावे प्रभ के गीत। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद राग विहागरा चौक दे महला पन्या।

करिया बहु बंदे परिया फिर साध सफरिया जय कीर्तन हरिया नानक सरनरिया। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद राग बिहागरा महला नावा हर की गत महको जाने जोगी जति तपि पचहारे और बहु लोग सियाने रहाओ छिन में राव रंग को करी राव रंग कर डारे रीते परे परे सपनावे यह तांको विभारे अपनी माया।

निरंजन जी सब जग परमायो सगल परम तज नानक प्राणी चरण ताहि चित लायो राग बिहागड़ा संत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर हर नाम से आई है मेरी जिंदगी गुरुमुख नाम अमोले राम हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम से टोले।

मन सिंधियाला फल पाया हर प्रभ गुण नानक बाणी बोले राम गुरमत मन अमृत उठदा मेरी जिंदड़ी मुख अमृत बैन अलाए राम अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ी मन सुनिए हर लिव लाए राम चिरी विछुना हर प्रभ पाया गल मिलिया।

कोई हर सब आन मिलावे राम। हौ मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी, हर सब की हर कथा सुनावे राम। गुरुमुख सदा आराध हर मेरी जिंदगी, मन चिंदेरा फल पावे राम। नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी, वड पागी नाम ते आवे राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदगी, गुरमत नाम प्रगासे राम। हौ हर बाज उगीनिया मेरी जिंदगी, जो जल बिन कमल उदासे राम।

हर हर नाम से आए राम, हर काज वडे लिख पाया मेरी जिंदड़ी, जन नानक नाम समाए राम। हर सेती मन भेदिया मेरी जिंदड़ी, जो बालक लग दुध खीरे राम। हर दिन सांस ना पाई है मेरी जिंदड़ी, जो चात्रिक जल बिन तेरे राम। सतगुर सह नहीं जाए पाओ मेरी जिंदड़ी, गुण दसे हर प्रभ तेरे राम। जन नाम घर में लाया मेरी जिंदड़ी, कर वाजे शब्द कनेरे राम। मन मुख हो मैं विचड़े मेरी जिंदड़ी, बिख बांधे हो।

जिन हर हर नाम आधारो राम, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदड़ी ए, बिक औजल तारण हारो राम, जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदड़ी ए, तिन संत जना जयकारो राम, नानक हर जप सुख पाया मेरी जिंदड़ी ए, सब दुख निवारण हारो राम, सारथना।

तरस पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम से आवे राम, पौन पानी बैसंतरो मेरी जिंदड़िए, नित हर हर हर जस गावे राम, वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर नाम

कर से वो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो जनता मार्ग सा दे राम मार्ग बिखरा साज गुरमुख हर दर गए सोबा।

खान पान सिगार बिरते हर कंत बिन क्यों जी जिए। आसा प्यासी रैन दिनियर रह न सकिए इक तिले, नाम पयम पै संत दासी तो प्रसाद मेरा फिर मिले। सेज एक प्रियो संग दर्श न पाये राम, अवदन मोहे अनेक कत महल बुलाये राम। निर्गुण निमानी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निदे, प्रम पीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेशक नव निदे। गृह लाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाये, नाम पयम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाये। संतन के प्रसाद हर हर पाया।

त्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सखी मंगल गाया नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कल कृपा।

कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरत मुग्ध अनाथ चंचल।

जिन विदाता पाया नाम राते जीव दाते नित दिन चढ़े सवाया ऋद सिद्ध नव निध।

ईश्वर हर जियो करता पुरख मुरारी राम। दुख रोग न पौ व्यापे जिन्नी हर हर त्याया, संत प्रसाद तरे पावजल पूरब लिखिया पाया। वजी वधाई मन सांस आई, मिलिया पुरख अपारी, बिनवंत नानक से।

हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम, हर नाम जपत सो हंस प्राणी ताकी महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना, शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभु ऊंच अगम अपार, बिनवंत नानक सफल सब किछ प्रभु मिले अति प्यारे।

नानक सरन समरथ स्वामी पैज राखो मोरे। जाके ही छड़िया तिन आप मिलाया राम, साधु संग में हर गुण गाया राम।

नानक सब किछ आप है अवर न दूज जाए पौड़ी। तेरी वड्याई तू है जानदा, तुझ जेवड़ अवर न कोई, तुझ जेवड़ होर शरीर।

मन पर कीक ना आया सहज न लगो पाओ शब्द साध न पायो मन हथ क्या गुण गाए नानक आया सो परवान है जो गुरमुख सच

सतगुर कह तै पन ना करो रह अंक समाए। अन दिन सहसा कदे न चूके बिन शब्द दुख पाए। काम क्रोध लोभ अंतर सब ला।

लोड़ी है हर सुख दाता सबना गल्ला का किसनो ध्यान दिया किव निमत करी मोह मोड़ी है जिन हर त्याया किसनो सर्व कल्याण होए नित संत जना की

माए पिसावे आप पकावे आप पांडे दे परोसे आपे ही बैठावे आपे जल आपे दृष्टिंगा आपे चुली परावे आपे संग

बंधन तोड़े सच वसे अज्ञान अंधेरा जाए सब किस देखे किसे का जिनकी आतन साजे नानक शरण करतार की करता राखे लाज पौड़ी जदों आपे साथ किया जदों आपे साथ किया बह करते तदों कुछ ना सेवक दिया तदों क्या को लेवे क्या को देवे जा अवर ना दूजा किया फिर आपे जगत उपाया करते दान सबना को दिया आपे सेव बनायन गुरमुख।

कहे कथे ना पाए अंदिन रहे सदा गुण गाए जिन कर में किने ना पायो पौके मुए बिन लाए गुर के शब्द मन तन तुझे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृत्ति आपे अकथ कथी जय आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करी जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करी जय श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड तू पौ कर चल गवाए गुर कह तह के निस्तरे तैरच निरपौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी।

मनुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार, कूड़ कमावे कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार, दिख माया।

पार पवै जिना अंदर सच्चा सोए नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए पौड़ी आपे पारस आप ताप है आप की कौन कंचन आपे ठाकुर सेवक आपे ही पाप खंडन आपे सब कट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब देता आपे गुरुमुख पंजन जन नानक सालाहे नारजै तुद करके तू हर सुख दाता वडन श्लोक महला चौथा।

पर दूजे सब आपे इक से आपे करे आने इतना अंदर महल बुलाए जा आप तेरे मन सच्चे पाने जिना आपे गुरमुख।

सब सच तपाव से सच पिया आपे जिना बुझाए गुरमुख तिन अंदरों दूजा परम गया। श्लोक महला पंजवा हर नाम न सुमरे।

छोड़ कट के अंतर जोत तरे हो, हर का नाम अमृत है दारू इह लाए हो, सतगुर का पाना चित रखो संजम सच्चा ने हो, नानक ऐसे सुख है अंदर रखसी, अग्गे हर्षों केल करे हो पौड़ी। आपे पार अठारह बनस्पत आपे ही फल लाए, आपे माली आप सब सूचे आपे ही मोह पाए, आपे करता आपे पुगता आपे दे दिवाए, आपे साहिब आपे है राखा आपे रहा समाए, जन नानक वडियाई आखे हर करके की जिसनो तिल ना कमाए। श्लोक महला तीजा, मानस परया आया मानस परया आए, जित पीते मत दूर होए बरल पवे विच आए, अपना पराया ना पछाने खसमो तक्के खाए, जित पीते खसम विसरे दर्जे मिले सजाए, झूठा मद मूल ना पीचे जेसा पार वसाए, नानक नगरी

सो सब कुछ पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी सोई साओ सच्चा बन जारा जिन वत्र लदिया हर नाम तन तेरी सब तिसे नो सालायो संतो जिन दूजे पाव

पौड़ी। जा आप कृपाल होवे हर स्वामी, ता अपना नाउ हर आप जपावे है, आपे सतगुर मेल सुख देवे, अपना सेवक आप हर पावे।

सतगुरु मोको हर दिया, सतगुरु मोको हर दिया बुझाए रहाओ, दुहागनी खड़िया बिल्ला दिया, तिना मैल न पाए, दूजे पाए करूपी दुख पावे आगे जाए, गुणवंती नित गुण रवे।

एक को सठ वर्ष है सब अंतर सब ना करे सतपाला नानक इक्कीस दिन मैं अवर ना जाना सब ना दीवान दयाला बड़ हंस महला तीजा गुरुमुख सत संजम तत ज्ञान है गुरुमुख साचे लगे ध्यान है।

गुरुमुख जात पत सच सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप बढ़ाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच कर

हे मन नाम निदान तू पाए अपने गुर की मन लै रजाए रहाओ गुर के शब्द विचों मैल गवाए निर्मल नाम वसे मन आए करमे पूला फिरे संसार मर जन में जम करे खुआर नानक सेवड़ पागी जिन हर नाम

का मन बिरसा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मन्ने ता हर मिले ता विच्चों हो मैं जाए रहा, हो मैं सब शरीर है, हो मैं ओपत होए, हो मैं वड़ा गुबार है, हो मैं विच बुझ ना सके कोए, हो मैं विच पगत ना हो वही, हुक्म ना बुझे आ जाए, हो मैं विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले हो मैं गई, ता सच वसया मन आए, सच कमावे।

बार अपने गुरु को जाता रहा। मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे। जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया थे मैं गुण नाही हूँ क्यों मिला मेरी माया। हूँ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे। वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी। हूँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोवाने हों क्यों कर फिर को मिलो ए आनी जो फिर पावे।

ते मैं गुण नाही हौ क्या करी दुहागण, नित सुहागण सदा तिर रावे, मैं कर्महीन तब ही गल लावे, तू फिर गुणवंता हो अवगण आरा, मैं निर्गुण

क्यों कर हर दर्शन पावा हो जाए कुछा अपने सतगुरे गुर पुछ मन मुग्ध समझावा पूला मन समझे गुर शब्दी हर हर सदा ते आए नानक जिस नजर करे मेरा प्यारा सो हर चरणी चितलाए हों सब वेश करी तिर कारण जे हर प्रभ साचे भावा तो फिर प्यारा मैं नजर ना देखे हों क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हों सिगार सिगारी सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागन जिन फिर रावे अड़ा सत सवरा हों जाए पुछा सुहाग सुहागन तुसी क्यों कर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नजर करी फिर साचे मैं छोड़ेड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करो हर प्रभ का इस मार्ग पैने मिली है आप नड़ा प्रभ नजर कर देखे नानक जोत ज्योति रली है जो हर प्रभ का मैं देश नेहा तिस मन तन अपना देवा नित पक्का फेरी सेव कमावा तिस आगे पानी तोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा सुनाए तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा नानक मन आस पुजाए गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम ते आवा गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा गुण गावा नित नित सद हर के मन जीवे नाम सुन तेरा नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी तित वेले मर जाए जियो मेरा हर वेखन को सब कोई लोचे सो वेखे जित आप विखाले जिसनो नजर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा समाले सो हर हर नाम सदा सदा संभाले जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलिया नानक हर जन हर इक्के होए हर जप हर ते

रहाओ लाख भगत जाको आराधे लाख पति सर कप ही साधे लाख जोगी सर करते जोगा लाख पोगी सर पोगे पोगा कट कट वक्त जाने तोरा है कोई साजन पर्दा तोरा करो जतन जे होए मेहरवाना करो जतन जे होए मेहरवाना ताको दे जियो कुर्बाना फिरत फिरत संतन पे आया दुख परम हमारा सगल मिटाया महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा वढ़हंस महला पंजवा तन सोवेला जित दर्शन करना हौ बलिहारी सतगुर चरणा जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम चितेरे रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजाने सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब पर पुर लीना वढ़हंस महला पंजवा तू बेअंत को विरला जाने गुर प्रसाद।

तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओत तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता नानक साधु देख मन राशा वड़हंस महला पंजवा

जल सल मैयल रहा पर पूरे निकट वसे नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सर्व परयो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा उवड़ दाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु ते आये रहाओ रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभ कह निहाला जत कत पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वडहंस महला पंज

रे मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे सो भोजन मैं नहीं रे मेरे मन तन प्रेम पिरम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता हौ एक दिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिन लाता हौ क्या गुण तेरे सार समाली मैं निर्गुण को रख लेता हौ पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा एहो कापड़ तन ना सुखावे।

मैं सब सिंगार बनाया अमाली बिन फिर काम ना आए जा सह बात ना पुछिया अमाली ता बिरथा जोबन सब जाए तन तन ते सुहागनी अमाली जिन सो रहा समाए हौ वारिया तिन सुहागनी अमाली तिनके तोवा सद पाए जिचर दूजा परम सा अमाली तिचर मैं जानिया।

सच तुन सच शब्द विचारा अन दिन सच सलाना तन तन वड भाग हमारा मन मेरे साचे नाम विटों बल जाओ दासन दासा हो।

अधिकाई काम क्रोध नित संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस युग में दुर्लभ है गुरुमत हर रस की जय रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरुमति आपे आप पछाणे ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काड लिया साची वड्याई दिख से अमृत भये गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पये अंतर वासना समाई मानस जन्म दुलंग है जग में खटियाए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले बिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया नानक जिनके हृदय वसया मोख मुकत तिन पाया।

आइए नाता को प्रमाण सच कमाइए। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाइए। लिखे बाजों सुरत नाही बोल बोल गवाइए। जिथे जाए बइए भला कहिए सुरत शब्द लिखाइए। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाइए ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। अमृत हर का नाम मेरे मन पाया नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया। सुख मन में आए वस्या जाम तै फुरमाया। नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसे नाख झगड़ा पावना। ने पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना। जिस नाल संगत कर सरी की जाए क्या रुआवना। जो दे सेना मने कहना आख नाही बावना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना सब उपायन आप आपे नजर करे। कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे। सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे। किछ पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समतरे। नानका जिन नाम मिलिया कर्म होआ तुर कदे। सब उपायन आप आपे नदर करे। वडहंस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना। सब उपाय है आप आपे सर्व समाना। सर्वे समाना आप तू है उपाय तंदे लाया। एक तुझ ही किए राजे एक ना पिख पवाया। लोभ मोह तुझ किया मीठा एक परम फुलाना। सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना। नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना। दुख गया सुख आए समाना। गावन सुरनर सुगड़ सुजाना। सुरनर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे। माया मोहे चेते नाही एला जन्म गवावे। एक मूड मुगद ना चेते मूले जो आया तिस जाना। नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना। तेरा वक्त सुहावा अमृत तेरी वाणी। सेवक सेवे पाओ कर लागा।

चढ़े सवाया, एक करम तरम न होए संजम, जाम ना एक पछाणी, वक्त सुहावा सदा तेरा, अमृत तेरी बाणी। हों बलिहारी साचे नावे, राज तेरा कब हो ना जावे, राजो ता तेरा सदा नहीं चले, एहो कब हो ना जावे, चाकरता तेरा सोए होवे, जोए सहज समावे, दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे, हों बलिहारी सदा होवा, एक तेरे नावे। जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे, कीरत करें स्वामी तेरे द्वारे, जप

जुगें जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करो बेनंती हों आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

तेरे बंके लोएन दंत रिसाला सोने नक जिन लंबड़े वाला कंचन काया सोयने की टाला सोवन टाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेलियो जम द्वार ना हो खड़िया सिख सुनो महेलियो हंस हंसा बग बग्गा।

आप वाणी सिच मन की पूरी सारंग ज्यों पग तरे ठिम ठिम आप संदूरे श्री रंग राती फिरे माती उदक गंगा वाणी बिनवंत नानक दास हर का तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। वडहंस महला तीजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अपने पिर के रंग रती मोये सोभावंती नारे सच्चे शब्द मिल रही मोये पिर रावे पाए प्यारे सच्चे पाए प्यारी कंक सवारी हर हर स्यों निहो रचाया आप गवाया ता पिर पाया गुर के शब्द समाया सा तन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा तन मेल लई फिर आपे साचे सहे सवारी निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम गुरुमुख जिन्नी रावया मोये फिर रव रहा पर पूरे राम फिर रव रहा पर पूरे वे खजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली कोली फिर सहज रावे मिलिया कर्म विदाता जिन हर रस चाखिया शब्द सो पाखिया हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा फिर पावे शब्दे रह हदूरे सुहागनी जाए पूछो मुइये जिनी विच्चों आप गवाया फिर का हुक्म ना पायो मुइये जिनी विच्चों आप ना गवाया जिनी आप गवाया तिनी फिर पाया रंग स्यों रलिया माने सदा रंग राती सहजे माती अंदिन नाम वखाने कामन वड़ पागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामन सहजे राती जिन सच सिगार बनाया हों मैं मार मुये तू चल गुर के पाए हर वर रावे सदा मुये निज कर वासा पाए निज कर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागन नारी फिर रलियाला जोगन बाला अंदिन कंक सवारी हर वार सुहागो मस्तक पागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हर रंग राती जा चले सतगुर पाए। वडहंस महला तीजा गुरुमुख सब वापार पला जे सहजे की जय राम अंदिन नाम वखाणी है लाहा हर रस पी जय राम लाहा हर रस लीजे हर रावी जय अंदिन नाम वखाणे गुण संग्रह अवगुण विकणे आपे आप पछाणे गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे शब्द रस पीजे नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने कर अंदर रस कुंज तू लाहा ले परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम से आए मन वसाए बूजे गुर विचारा मन मुख खेती वणज कर थाके कृष्णा पुख न जाए नानक नाम बीज मन अंदर सच्चे शब्द सुहाए हर वापार से जन लागे जिना मस्तक मणि वड पागो राम गुरमति मन निज कर वस्या सच्चे शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साज रते विचारी नाम बिना सब जग बोराना शब्दे हो मैं मारी साचे शब्द लाग मत उपजे गुरुमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पौ पंजन हर रावे मस्तक पागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहा समाई। वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो
अपने घर तू सुख वसै कोहे ना सकै जम काल जियो काल जाल जम जोहे न साकै साचे शब्द लिव लाए सदा सच रता मन निर्मल।

सब दुख है खोटा एहो अपारा राम। कूड़ बोल बिख खावणी बहु वधे विकारा राम। बहु वधे विकारा सहसा एहो संसारा बिन नावे पत कोई। पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने बिन बूझे सुख ना होई। आवन जाना कदे ना चुके माया मोह प्यारा। माया मोह सब दुख है खोटा एहो वपारा। खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम। खोटे दरगे सुतियन उबे करन पुकारा राम। उबे करन पुकारा मुगद गवारा मनमुख जन्म गवाया। विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम न पाया। मनमुख संता नाल वैर कर दुख खटे संसारा। खोटे खरे परखियन तित सच्चे दरबारा राम। आप तरे किस आखिए होर करना किछु न जाई राम। जित खा दे तित लाए सी ज्यो तिस दी वड्याई राम। ज्यो तिस दी वड्याई आप कराई वरियाम ना फुसी कोई। जग जीवन दाता कर्म विदाता आपे बसे सोई। गुर प्रसाद जी आप गवाई है नानक नाम पत पाई। आप करे किस आखी है होर करना किछु न जाई। वडंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम। गुरमति हर नाम वणजी है अतमोल अफारा राम। अतमोल अफारा सच वापारा सच वापार लगे वडपागी। अंतर बाहर पगती राते सच नाम लिवलागी। नदर करे सोई सच पाए गुर के शब्द विचारा। नानक नाम रते तिन ही सुख पाया साचे के वापारा। हों में माया मैल है माया मैल परी जय राम। गुरुमति मन निर्मला रसना हर रस पी जय राम। रसना हर रस पी जय अंतर पी जय साच शब्द विचारी। अंतर फूटा अमृत परया शब्दे काड पिए पनिहारी। जिस नदर करे सोई सच लागे रसना राम रवि जय। नानक नाम रते से निर्मल होर हों मैं मैल परी जय। पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पे करे पुकारा राम। माया मोह अंतर मल लागे माया के वापारा राम। माया के वापारा जगत प्यारा आवन जान दुख पाए। बिख का कीड़ा बिख्यों लागा बिष्टा माए समाए। जो तुर लिखिया सोए कमावे कोई न मेटन हारा। नानक नाम रते

गुरमुख ए मन रंगी है, दूजा रंग जाई राम, दूजा रंग जाई साच समाई, सच परे भंडारा, गुरमुख होवे सोई बूझे, सत सवारण हारा, आपे मेले सो हर मिले।

दृढ़ाए। जप हर हर नाम विगसे राम, जप हर हर नाम कमल प्रगासे, हर नाम नमंग निद पाई, हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई।

मेरा सतगुरु पूरा राम, हो मन तन देवा किस काट शरीर आराम, हो मन तन काट काट किस दे जो सतगुरु वचन सुनाए, मेरे मन बैराग पया बैरागी, मिल गुरु दर्शन सुख पाए, हर हर कृपा करो।

गुरजेवर गुरजेवर दाता मैं अवर न कोई। वडहंस महला चौथा। हाँ गुरबिन खरी निवाणी राम, जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम। सत गुर मेल हर नाम समाणी, जप हर हर नाम ते आया, जिस कारण हो तू सुनेंदी सो सज्जन हर कर पाया। एक दृश्य हर एक हो जाता, हर आत्म राम पछाणी। हो गुरबिन खरी निवाणी, जिना सतगुर।

हर हर नाम मेरा प्राण सखाई, किस दिन करी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरुमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे,

नेफल जन्म किन बिछा गवाया, ते साकत मोए मर चूरे, कर होंदे रतन पदार्थ सूखे, पागहीन हर दूरे। हर हर तिन सा दर्श न करियो, जिनी हर हर नाम न प्याया, जिनी दर्शन सतगुरु पुरख न पाया। हम चात्रिक दीन।

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुरु मेल सुखदा।

ना जम कंकर मार बिदारे। हर प्रभु कृपा तारी सुख दाते, दुख लाके पाप संतापा। सुन गुरुमुख नाम सब दिन से हों मैं पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरुमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरुमुख जप सब रोग गवाया अरोग तय शरीरा। आन दिन सहज समाध हर लागी हर जपिया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन पाया तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा कर कृपा लेहो उबारे राम। हर तारो कृपा

महामार्ग पंथ बिखरा जन नानक पार लंघाया। कोड़ी तेजन दे राम पाया राम, जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाया राम। जित हर प्रभ जापै।

हर नाम गत मित जानिया, सब जन्म सफलो किया करता है, हर राम नाम वखानिया। हर राम नाम सलाए हर प्रभु, हर भगत हर

मन मैगल गुर शब्द वस आया राम, मन वसगत आया परम पद पाया, सातन कंत त्याई, अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सो है हर प्रभ नारी। हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभु हर हर पाया, नानक जन हर दा

हर गाय मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाय पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुवाए हर गुरुमति मन चाया जन

सो प्रभ पाया कथे न जाया सदा सदा संग बैसा। प्रभ जी पाना सच्चा माना प्रभ हर तन सहजे जीता। कहो नानक तिस जन बलिहारी तेरा दान सबनी है लीता। कहो पाना ता कृत अघाए राम।

सिख सेवक सब पुंचन लग हों सतगुर के कुर्बाना। निरपौ पए खत्म रंग राते जम की त्रास बुझाए नानक दा सदा संग।

जिन हर हर रसना पनिया राम सो सह सुहेले गुण अमोले जगत उधारण आए तह बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए। जिन कहो कृपा करी मेरा ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक।

ठाकुर माने से प्रधाने हर से रंग राते हर रसय अघाए सह समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कह सतगुरु बाणे श्लोक।

सास अगाने हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तू था अमयोग उठा सुख पाए दुख नाश परम विनाश संते जप जगदीश ईश्वर जय जय मोह रहत विकार था के पंच ते संग टूटा कहो नानक तिन कन्हिए वंजा जिन कट मेरा हर प्रभु उठा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से कांडया नानक जाने सत संग।

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख ले हो दीन दयाला। मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बहुर जन्म न मरता। दिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता। आठ पैर हर प्याये राम मन इच्छा फल पाये राम मन इच्छ पाये।

राम काट काट हर गोविंद गाजे राम गोविंद गाजे सदा विराजे अगम अगोचर ऊंचा गुण के अंत किस कह न जाई कोई न सके पहुंचा आप उपाय आप

आप निरालम तंदै बांधी कर हुकम छडावन हारो अज कल कर दिया काल दिया पै दूजे पाए विकारो जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़ अंग गुबारो वा ना जल लेप तुलाइया ना भोजन परकारो वा भोजन पाओ ना।

सातन रंड न कबू बैसई, ना कदे होवे सोग, ना कदे होवे सोग अंदिन रस पोग। सातन मैल समानी

नानक गुरमुख हर नाम पाया, सहजे सच समाए पौड़ी। गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई, गुरमुख जनक हर नाम लिव लाई। गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाए, बिन गुर हर नाम।

पुरख विधाता, हर नाम हम श्रेवे हैं, हर नाम हम पूजे हैं, हर नाम में ही मन राता, हर नाम में जेवट कोई अवर न सूजे, हर नामो अंत सदाता, हर नाम दिया गुरु।

के सतगुरु मिले उल्टी भई भाई, जीवत मरे तां बूझ पाए, सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए, मंगे हर हर सेती लिवलाए, मन हर जप मीठा लागे पाई।

राम नाम लिव लाए, नानक नाउ बेड़ा नाउ तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। श्लोक महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर, होर थे सुख नाही,

अब न आया संध्या तर्पण करें गायत्री बिन बूझे दुख पाया सतगुरु सेवे सो वडभागी जिसनो आप मिलाए हर रस पी जन सदा तृप्ता से विचों आप गवाए यह जग अंधा सब अंग कमावे बिन गुर मग न पाए नानक सतगुरु।

हर का नाम सच्चा मन वसिया, नामे नाम समाए बिन सतगुरु सब जग बौराना, मन मुख अंधा शब्द ना जाने, झूठे परम पुला ना रहा, त्रै गुण माया परम पुलाया, हौ मैं बंधन कमाए, जमन मरण सिर ऊपर उबो, गर्भ जोन दुख पाए, त्रै गुण वरते सगल संसारा, हौ मैं विच पत खोई, गुरमुख होवे चौथा पद चीने, राम नाम सुख होई।

प्यारे जप नानक भगत समाहा सोरठ महला चौथा दो तुके अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया मन मुख कर्म करे अहंकारी साधु परसत ही प्रभ पाया गोविंद शरण तुम्हारी गोविंद प्रीत लगी अत्यारी जब

सांप आई दुर्मत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया सब संगत पुरुष तुम्हारी पुरुष है पुरुष मिलिया गुरु पाया जिनको कृपा कही तुम्हारी नानक अतुल सहज सुख पाया अंदिन जागत रहे बनवारी सोरठ महला चौथा हर सो प्रीत अंतर मन भेदया हर दिन रह न जाई।

में हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल पए हैं, कृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचर चरै ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तं पीतर, तां श्रम काटिया जाई। मेरे गोविंद अपने जन को देह वडियाई, गुरमत राम नाम पर गासो, सदा रहो शरणाई। रहाओ ए संसार सब आन जाना, मन मूर्ख चेत अजाना, हर जियो कृपा करो गुर मेलो, ता हर नाम समाना। जिसकी वक्त सोई प्रभ जाने, जिसनो दे सु पाए, वक्त अनूप अगम अगोचर, गुर पूरा अलख लखाए। जिन ए चाखी सोई जाने, गूंगे की मिठाई।

हर सदा है निर्मला भाई, निर्मल साते सोए, नजर करे जिस आपनी पाई, तिस प्राप्त होए। ओट मदे जन पाए भाई, विरला कोई कोए, नानक रत्ता सत नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवा दो तुके, जो लो पाओ अभाव एह माने, तौ लो मिलन बुराई, आन अपना करत बिचारा, तौ लो बीच बिखाई, माधवे ऐसी दिहो बुझाई, सेवो साध गहो ओट चरना, ने बिचरे मोत चसाई, रहाओ रे मन मुग्ध अचेत चंचल, चित तुम ऐसी हृदय न आई, प्राण पत त्याग आन तू रचिया, उर्जो संग बैराई, सोग न व्यापे आप न थापे, साध संगत बुद्ध पाए, साकत का बकना यूं जानो, जैसे पान चुराई, कोट पराध अच्छा दियो ए मन, कहना कछु न जाई, जन नानक दीन सर।

माया संबंधे ही अंत की बार को खरा न होसी सब मिथ्या अपने ही। रे नर काहे पपोरो देही उड़ जाएगो।

जन नानक प्रभु कृपा पारी, मैं सतगुर ओट गए सोरठ महला पंजवा। गुरपुरा पेट्यो वड़ पागी मने पया तरगासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का भरवासा। अपने सतगुर कै बलिहार है आगे सुख पाछे सुख।

एक राम नाम आधारा, सकल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है बिहोन हारा, कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज शोभा कारज आया रासे, नानक तो गुरु पूरा पेटे हो सगले दुख विनाशे, सोरठ महला पंजवा, सुखिये को पेखे सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी, करण करावन हार स्वामी आपन हाथ संजोगी, मन मेरे जिन अपना कर्म गवाता तिसके पाने कोई न फूला, जिन सगलो ब्रह्म पछाता।

जन सेवा हर कीर्तन रस गाये, इहां सुख आगे मुख उजल, जन का संगवड पागी पाये। रचना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कहिए, अगम अगोचर सब अविनाशी, शरण संतन की लहिए। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही, बूढ़क मोह गृह अंधकूप में, नानक लेहो निवाही। सोरठ महला पंजवा हर पहला, जाके हृदय वस्या तू करते, ताकी तै आस पुजाई, दास अपने को तू विसरै नाही, चरण पूर मन पाई। तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निदान सुख दाते स्वामी, सब ते ऊंच बढ़ाई रहाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई, सेवक को तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अघाई। सर्व निरंतर तुम्हें समाने, जाको तुद आप बुझाई, गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना, प्रगट पय सब ठाई। सोई ज्ञानी सोई प्यानी, सोई पुरख सुभाई, कहो नानक जिस करे दयाला, ताको मन ते बिसर न जाए। सोरठ महला पंजवा, सगल समग्री मोह व्यापी, कब ऊंचे कब नीचे, शुद्ध न होई है काहू जतना, ओरक को ना पहुँचे। मेरे मन साधु शरण छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही, फिर आवत बारो बारा रहाओ। ओहो जो कर्म पुलावा कहियत, तिन में उर्जो सगल संसारा, पूरन भगत पुरख स्वामी का, सर्व थोक ते न्यारा। निंदो नाही काहू बात है, एहो खसम का किया, जासो कृपा करी प्रभ मेरे, मिल साध संगत ना ओलिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, सबना कर तू उधारा, कहो नानक गुर बिन नहीं करिए, एह पूरन तत्व बिचारा। सोरठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बिचार्यो, राम नाम सत सारा, किलबिख काटे निमक अरादया, गुरमुख पार उतारा। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी, सुन सुन महाकृपत मन पावे, साधु अमृत बानी रहाओ। मुक्त पुगत जुगत सच पाये, सर्व सुखा का दाता, अपने दास को भगत दान देवे, पूरन पुरख विधाता। श्रवणी सुनिए रसना गाये, हृदय त्याये सोई, करण कारण सम

साध संग नानक गुण गावे सिमरे सदा गोपाला सोरठ महला पंजवा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाखे प्रभ सरणा प्रगटे पले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुवाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुर पूरे तू राख्या रहाओ साचा साहिब अमित वडाई तगत वचल दयाला संता की पैज रखबा आया आग बिरद प्रतपाला। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो।

मेरे सब कला बने आई प्रगट पाई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई। सोरठ महला पंजवा कर दूजा चौपदे

पावत ते भयानक भया करे बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी शरणया जह भंडार गोविंद का खुलिया जह प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरु दीना मेरा मन तन शीतल थया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर न हुआ भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे फिर लेखा मूल न लया सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यो जा का मन लीना सेजन कृत अभाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर कृष्ण त्रिखाई हर आराधे अरोग अनबाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ जिन जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जे नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गणने जे गुरमान प्रभु लिवलाए ते महा आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए ते नरक कोर में परया जितको लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक से पकरी संतन की हृदय पै मगन चरनारा सोरठ महला पंजवा राजन में राजा उरझायो।

हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंड।

हम संतन सो बन आई पूरब लिखिया पाई एह मन तेरा भाई रहाओ संतन सो मेरी लेवा देवी संतन सो ब्योहारा संतन सो हम लाहा खाटिया हर भगत परे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का पोखा कर्म राय अब कहाँ करे गो जो फाटियो सगलो लेखा मां आनंद पाए सुख पाया संतन के प्रसादे कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते बिस्मा दे सूरठ महला पंजवा जेती समगरी देखो रे नर तेती ही छड़ जानी राम नाम संग कर व्योहारा पावे पर निर्वाणी

मोह अभिमाना कामे सुख नहीं पाये हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अनद मंगल सुख पाये पार न पाने अंतर विद जाने ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ए मनवा अकाल मूरत गुरुदेवा गोविंद दमोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण आधारा सूरत मेला पंजवा मृतक को पायो तम सासा बिचरत आन मिलाया पशु प्रेत मुगद कै स्रोते हर नामा मुख

तेरा अंग मंगल विश्रामा, मन बासित फल मिले अचिंता, पूरन होए कामा। इहा सुख आ गए मुख उजल, मिट गए आवन जाने, निरपो पे हृदय नाम वस्या, अपने सतगुर के मन पाने। उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द क्रम पागा, कहो नानक ताके पूर करमा, जासा गुर चरनी मन लागा। सोरठ महला पंजवा, रतन छाड़ कौडी संग लागे, जाते कछु न पाये, पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे मन सदा त्याये। सिमरो हर हर नाम परानी, बिनसे काची दे अज्ञानी, रहाओ मृग कृष्णा अर सुपन मनोरथ, ताकि कछ न गढ़ाई, राम भजन बिन काम न आवस, संग न काहू।

साथी दरगह माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब दलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूरन

सवारी गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अनुज सेती पर आया। सोरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुरु चाया। प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग।

मन वसिया अविनाशी, ताँ को विघ्न ना को उलावे जो सतगुरु अपने राखे, चरण कमल बसेरिद अंतर अमृत हर रस्ता के, कर सेवा सेवक प्रभ अपने।

सोरठ महला पंजवा। माया मोह मगन अंधियार है, देवन हार न जाने, जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो कर माने। मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी, जो किछ करे सोई सोई जाने, रहे न कछु छानी रहाओ। जेवा स्वाद लोग मद मातो, उपजे अनक बिकारा, बहुत जोन परमत दुख पाया, हों मैं बंधन के पारा। देखिवार अनक पर्दे में, परदारा संग थाके, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, तब कौन पर्दा तेरा ठाके। दीन दयाल पूरन दुख पंजन, तुम बिन ओट न खाई, काड ले हो संसार सागर में, नानक प्रभु शरणाई। सूरत महला पंजवा। पार ब्रह्म हुआ सहाय, कथा कीर्तन सुखदाई, गुर पूरे की बाणी, जप अनद करो नित पाणी। हर आचा सिमरो भाई, साध संग सदा सुख पाये, हर विसर न कभू जाय रहाओ। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे, जिसनो कर्म परापत होवे, सो जन निर्मल थीवे। विघ्न विनाशन सब दुखमासन, गुर चरणी मन लागा, गुण गावत अचुत अविनाशी, अन दिन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कथा सुहेली, आद अंत मद नानक को, सो प्रभु हुआ बेली। सोरठ महला पंजवा। पंच पदा। बिन से मोह मेरा और तेरा, बिन से अपनी तारी, संतो यहाँ बताओ कारी, जित हो में गर्भ निवारी रहाओ। सर्व पूत पार ब्रह्म कर्मान्या, होवा सगल रे नारी।

समायो सोरत महला पंजवा जाऊ कै सिमरन होए आनंदा बिन सह जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नवनिध पावे बहुर नाथ।

जन नानक फतेह में कहावो सूरत महला पंजवा जा के सिमरन सब कछ पाए बिरती काल न जाए किस प्रभ त्याग अवर कतरातु हो जो सब में रहा समाई हर हर सिमरो संत गोपाला साध संग में।

जगत जीवन कैसे पावे। सोरठ महला पंजवा, अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरनल कोई, गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई, जाकी शरण पै सुख पाये बहुत दुख न होई। रहाओ वड भागी साथ संत प्रापत, तिन पेटत दुर्मत खोई,

तेरो बख्श लहो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो। प्रभ जी तू मेरो ठाकुर नेरो हर चरण शरण।

उधारे दर्शन देखन हारे गुरपूरे की अचरज वड्याई नानक सद बलिहारे सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलिश बिनोद आनंद सुख मानो खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो।

नानक गुर पायो वड भागे तिस जेवड अवर न कोई। सोरठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज तुन प्रभ के चरण निहारया राखन हारे।

सतगुरु अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुरबचनी, मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता, करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गा।

हर के चरण हृदय उर्धार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाई, दुख किलबिक काटन हार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो पाई,

संतो हर हर नाम ते आई, सुख सागर प्रभ विसरो नाही, मन चिंदियड़ा फल पाई रहाओ। सतगुर पूरे ताप गवाया, अपनी कृपा धारी, पार ब्रह्म प्रभ पए दयाला, दुख मिटिया सब परवारी। सर्व निधान मंगल रस रूपा, हर का नाम आधारो, नानक पत राखी परमेश्वर, उदरिया सब संसारो। सोरठ महला पंजवा, मेरा सतगुर रखवाला होआ, पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ। पाप दया प्रभ आप मिटाया, जन की लाज रखाई, साध संगत ते सब फल पाए, सतगुर कै बल जाए। हलत पलत प्रभ दोवें सवारे, हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया, अटल बचन नानक गुर तेरा, सफल कर मस्तक धारिया। सोरठ महला पंजवा, जी जंत्र सब तिसके किए, सोई संत सहाई, अपने सेवक की आपे राखे, पूरन पई बढ़ाई। पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुर पूरे पूरी सब राखी, होए सर्व दयाल रहाओ। अंदिन नानक नाम ध्याए, जी प्राण का दाता, अपने दास को कंठ लाए राखे, जो बारिक पितमा।

कृपा तारी, प्रभु पूरी लोच हमारी, कर स्नान गृह आए, आनंद मंगल सुख पाए। संतो राम नाम निस्तरिये, उठत बैठत हर हर त्याये। हम दिन सुकृत करिये रहाओ, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए। कोट जन्म के किल विखनासे, हर चरणी चित लाए। उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

आई सास सास प्रभ त्याये हर मंगल नानक दाइये सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तागत पई हमारी हर की प्रेम।

हर रसक रसक गुण गाया। प्रभ काटिया जम का फासा, मन पूरन होई आसा, जह पेखा तह सोई, हर प्रभ बिन अवर न कोई। कर कृपा प्रभ राखे, सब जन्म जन्म दुख लाते, निरपो नाम ते आया, अटल सुख नानक पाया। सोरठ महला पंजवा, खांड पाई करतारे, ताप छोड़ गया परवारे, गुरपूरे है राखी, शरण सच्चे की ताकी, परमेश्वर आप हुआ रखवाला, सांप सहज सुख खिन में उपजे, मन हुआ सदा सुखाला।

तुम्हारे अपने दास का सदा रखवाला पर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रहाओ वड पागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जप जीवे से वड पागा हर अमृत बाणी गावे सादा की दूरी नावे अपना नाम

कर कृपा अंतर जामी, दास नानक शरण स्वामी। सोरठ मैला पंजवा, गुरपुरे चरनी लाया, हर संग सहाई पाया, जह जाये ता सुहेले, कर कृपा प्रभ मेले। हर गुण गावो सदा सुभाई, मन चिंदे सगले फल पावो, जी कै संग सहाय रहाओ। नारायण प्राण आधारा, हम संत जना रे नारा, पतित पुनीत कर दीने, कर कृपा हर जस दीने। पार ब्रह्म करे प्रतपाला, सद जी संग रखवाला, हर दिन रहन

पूरी प्रभ रब रहा पर पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म वित्तों कुर्बाना गुर के चरण कवल रिद कारे विघ्न ना लागे तिल का कोई कार्य सगल सवारे रहाओ मिर साधु दुर्मत खोए पतत पुनीत सब हुए रामदास सरोवर नाते सब लाते पाप कमाते गुण गोविंद नित गाय साध संग मिल त्याय मन बाचत फल पाए गुर पूरा हृदय त्याए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे।

सिद्ध करत लाल तब चतुर पात रो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर चर कै पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हों हों पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन देखे दूरायो पयो कृपाल।

सर्व गुना निध गायो, सर्व गुना निध रायो, रहाओ दूजा। सोरठ महला पंजवा

कीमत कह न जाई, पेख पेख जीवे सब अपना, अचरज तुम्हें वडाई। तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत की नी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी। सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, सब सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात न काई। रहाओ करते पुरख ताल दिवाया, पिछे लग चली माया, कोट न कटहू आवे, मेरे पूरे सतगुरु भावे, सिमर सिमर दयाला।

ते पुन पदार्थ तेरा जन नानक एक से आया सर्व फला पुन पाया। सूरत महला पंजवां करती जा दो पदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर स्नाना गुरपूरे कीने दाना। सब कुशल केम प्रभ तारे सही सलामत सब थोक उबारे गुर का शब्द विचारे रहा साध संग मल लाती पार ब्रह्म पयो साथी नानक ना।

सहज सुभाए मिले गोपाला, नानक सास पति ने सोरठ महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे।

बंधन काट करे मन निर्मल, पूरन पुरुष विधाता रहाओ। नानक प्रभ अविनाशी, ताकी सेव न बिरती जाती,

जो सुध भावे मोहे सियाणप कछु ना आवे। हम बारिक तौ शरणाई प्रभ आपे तेज रखाई। मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रकट।

काज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूरन जाके भागा मिल साध संग हर ध्याया आठ पहर आराध्यो हर हर मन चिंधिया।

जी जंत सब हाथ तिसै कह, सो प्रभु अंतर जामी रहा। कर्तव्य सब सवारे

सदा सदा हर जाते प्रभु बालक राखे आते शीतला छाप रहाई बिघन गए हर नाई। मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला अरदास सुनी।

हर सिमरत सब दुख लाथा, अपने दास की सुनी बेनंती, सब नानक सुख सवंती। सोरठ महला पंजवा, अपना गुरु ते आए, मिल कुशल सेती कर आए, अपना गुरु ते आए, मिल कुशल से

हर हर हर आराधो हर आराध सबो किछ पाये कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी

दुख रोग का डेरा बनना, परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभु।

वाला प्रभ सतगुरु दीन दयाला कैथे ओसे रखवाला प्रभ सतगुरु दीन दयाला दास अपने आप राखे कट कट शब्द सो पाके।

हाओ आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा टोआ आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा डोआ तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभ सरनाई सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे भाणा ता जपया नाम रमा।

कहो नानक सर्व थोक पूरन, पूरा सतगुर पाया सोरठ महला पंजवा। गरीबी गदा हमारी, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेन चारी, इस आगे को न टिके विकारी, गुरपूरे ए गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरे तिसकी गत होवे, उधरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नजरी आया, सोरठ महला पंजवा। गुरपूरे पूरी कीनी, बस अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुरपूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूरब लिखिया पाया, सोरठ महला।

नानक दास वखाणी निर्मल अकथ कहानी सोरठ महला पंजवा भूखे खावत लाज ना आवे क्यों हर जन हर गुण गावे भूखे खावत लाज ना आवे क्यों हर जन हर गुण गावे अपने काज को क्यों अलकाइए जित सिमरन दर गए मुख उजल सदा सदा सुख पाइए रहाओ ज्यों कामी काम लुभावे त्यों हर दास हर जस भावे ज्यों माता बाल लपटावे त्यों ज्ञानी नाम कमावे गुरपूरे ते पावे जन नानक नाम दियावे सोरठ मैला पंजवा सुख सांद कर आया निंदक के मुख छाया पूरे गुर पहराया दिन से दुख सवाया संतो साचे की वड्याई जिन अचरज सोभ बनाई रहाओ बोले साहिब कै भाणे बोले साहिब कै भाणे दास बाणी ब्रह्म वखाणे नानक प्रभु सुखदाई जिन पूरी बनत बनाई सोरठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय ध्याए कर

0: गुरपुर लै तारे संतो प्रभ मेरा सदा दयाला संतो प्रभ मेरा सदा दयाला अपने भगत की गणत न गणी राखे बाल गोपाला रहाओ हर नाम हृदय उधारे तिन सबदे थोक सवारे गुरपुरे तुस दिया फिर नानक दुख न सिया हर नाम हृदय उधारे तिन सबदे थोक सवारे गुरपुरे तुस दिया फिर नानक दुख न सिया।
1: सूरठ महला पंजवा हर मन

शरण आई रहाओ तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन भाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा करन करावन हर अंतर जामी जन अपने की राखे जय जयकार होत जग पीतर सबद गुरु रस चाखे। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई तू समरथ शरण का दाता आठ पहर तुम त्याई रहाओ जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पौ मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा जिन कर आए सो

पार उतारे, संतन के कार्य सगल सवारे, दीन दयाल कृपाल कृपानिध, पूरन खसम हमारे रहाओ, आओ बैठ आदर सब थाई, ऊन न कतहु बाता, भगत सिर पाओ दियो जने अपने, प्रताप नानक प्रव जाता, सोरठ महला नामा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रे मन राम स्यो कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो, अर गाओ रसना गीत रहाओ, कर साध संगत सिमर मादो, होहे पतत पुनीत, काल ब्याल ज्यो परयो डोले, मुख पसारे मीत। आज काल पुन तोहे ग्रस है, समझ राखो चीत, कहे नानक राम भज लै जात अवसर गीत। सोरठ महला नाम, मन की मन ही माहे रही, ना हर पजे ना तीर्थ सेवे, चोटी काल गही राव, दारा मीत पूत रख संपत, तन पूरन सब मही, अवर सगल मिथ्या ए जानो, भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुग हारयो, मानस दे लही, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहा नहीं। सोरठ महला नामा, मन रे कौन कुमत तैलीनी, परदारा निंदिया रस रचियो, राम भगत नह कीनी रहाओ, मुकत पंथ जान्यो तैनाहिन, तन जोरन कौधाया, अंत संग काहू नहीं दीना, बिरथा आप बंदाया, ना हर पज्यो ना गुरजन सेव्यो, न उपजो कछ ज्ञाना, कट ही माहे निरंजन तेरे, तै खोजत उद्याना, बहुत जन्म परमत तै हारयो, अस्थिर मत नहीं पाई, मानस दे पाए पद हर पज, नानक बात बताई। सोरठ महला नावा, मन रे प्रभ की शरण विचारो, जेह सिमरत गनकासी उदरी, ताको जसपुर धारो रहाओ, अटल भयो त्रू जाके सिमरन, अर निरपय पद पाया, दुख हरता ए विद को स्वामी, तै काहे बिसराया, जब ही शरण गई कृपा निद, गज ग्रह ते छूटा, महमा नाम कहां लो बरनो, राम कहत बंधन ते टूटा। अजामल पापी जग जाने, निमख माहे निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मन, तै भी उतरह पारा। सोरठ महला नामा, प्राणी कौन उपाव करे, जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाओ, कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करी, कौन नाम गुरजा कै सिमरे, पाव सागर को तरी। कल मैं एक नाम कृपा निध, जाहे जपे गत पावे, और धर्म ताके सम नाहिन, एह विद बेद बतावे, सुख दुख रहत सदा निर्लेपी, जाको कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर, नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नामा, माई मैं केविद लखो गुसाई, महा मोह अज्ञान तिमर मोह, मन रहो उरझाई रहाओ, सगल जन्म परम ही परम खोयो, नह अस्थिर मत पाई, बिख्या सकत रहो निस्बासर, नह छूटी अदमाई, साध संग कबहु नहीं कीना, नह कीरत प्रभ गाई, जन नानक मैं नाहे को गुन, राख ले हो सरनाई। सोरठ महला नामा, माई मन मेरो बस नाहे, निस्बासर बिखियन को तावत, के विद्रोह को ताहे रहाओ, वेद पुराण सिमरत के मत सुन।

संग छार सब पागे। कहो कहा जिया मन बौरे को इनस्यो नेहो लगायो। दीना नाथ सकल पै पंजन जस तां को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यो पयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो। नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो। सोरठ मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश कहां पयो जो मूड मुडायो। पगवो कीनो पेश रहाओ साथ छोड़ के चूठे लागयो। जन्म अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखियो।

नाम रतन बिसराना। रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी, कहो नानक हर बिरध पछानो पूले सदा प्राणी। सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने रहाओ, नह निंदिया नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर सोग ते रह न्यारो, नाहे मान अप

साई। मन बैराग रतो बैरागी, शब्द मन वेदिया मेरी माई, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यो लिव लाई रहाओ। असंख बैरागी कहे बैराग, सो बैरागी जे खसमे पावे, हृदय शब्द सदा पैर रचिया, गुर की कार कमावे। एको चेते मनुआ ना डोले, पावत वर्ज रहावे, सहजे माता सदा रंग राता, साचे के गुण गावे। मनुआ पौन बिंद सुखवासी, नाम वसे सुख पाई, जेबा नेत्र सोत्र सचराते, जल बूजी तुझे बुझाई। आस निराश रह बैरागी, निज कर तारी लाई।

दूजा भाई मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख दे वड्याई अपर अपार अगम अगोचर कहने कीम न पाई।

करम सुकरम कराए आपे आपे भगत दृढ़ामं मन मुख झूठ लह पैमान आपे ज्ञान अगामं जिन चाख्या से ही साध जान ज्यो गूंगे मिठियाई अकथै का क्या कथिय पाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत न काई ज्यो चलाए त्यों चाले पाई होर क्या को करे चित्राई एक परम पुलाए एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुकम चलावन हारा सेवा करी जे किछ होवे अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिले कृपा कीनी अमृत नाम आधारा गगन अंतर वासिया गुण प्रगासिया गुण में ज्ञान त्यान नाम मन पावे कहे कहावे तत्तो तत्व खान शबद गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरान पूरा बैरागी सह सुभागी सच नानक मन मान सोरठ महला पहला तितुकी आसा मनसा बंदनी पाई करम तरम बंदकारी पाप पुन जग जाया पाई बिनसे नाम विसारी एह माया जग मोहनी पाई करम सबे वेकारी सुन पंडित कर्माकारी जित करम सुख उपजे पाई सो आत्म तत विचारी रहाओ शास्त्र वेद बके खड़ो पाई

कह पारी। दुर्मत कणे विगूति पाई, दूजे पाए खुआई। बिन सतगुर नाम न पाए पाई, बिन नाम में परम न जाई। सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई, आवन जान रहाई। साच सहज गुरते उपजे पाई, मन निर्मल साज समाई। गुर सेवे सो बूझे पाई, गुर बिन मग्न पाई। जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई, कूर बोल बिख खाई। पंडित दही विलोई है पाई, विचो निकले तथ। जल मछिए जल देखिए पाई, ए जग ए हावत। गुर बिन परम विगूचिए पाई, कट कट देओ अलख। एह जग तागो सूत को पाई, दैदिस बांधो माए। बिन गुर गांठ न छूटे पाई, थाके कर्म कमाए। एह जग परम फुलाया पाई, कहना किछू न जाए। गुर मिले पौ मन।

रहाओ। साला ही सालाहना प्यारे दूजा अवर ना कोए, मेरे प्रभ सालाहन से पले प्यारे सब दरते रंग होए, तिसकी संगत जे मिले प्यारे रस ले तत विलोए, पत परवाना साच का प्यारे नाम सच्चा निशान, आया लिख ले जामना प्यारे हुक्मी हुक्म पछाण, गुरबिन हुक्म ना बूझिए प्यारे साचे साचा तान, हुक्मे अंदर निम्या प्यारे हुक्मे उदर मझार, हुक्मे अंदर जम्या प्यारे उदो सिर कै भार, गुरमुख दरगे जानिए प्यारे चले कारज सार, हुक्मे अंदर आया प्यारे हुक्मे जांदो जाए, हुक्मे बन चलाइए प्यारे मनमुख लह सजाए, हुक्मे शब्द पछाणिए प्यारे दरगह पैदा जाए, हुक्मे गणत गणाइए प्यारे हुक्मी हो मैं दोए, हुक्मे पवे पवाइए प्यारे अवगुण मुठी रोए, हुक्म सजापै साह का प्यारे सच मिले वड्याई होए, आखण औखा आखिए प्यारे क्यों सुनिए सच नाओ, जिन्नी सो सालाहया प्यारे हौ तिन बलिहारे जाओ, नाओ मिले संतोखिया प्यारे नदरी मेल मिलाओ, काया कागद जेथिए प्यारे मन मसवाणी तार, ललता लेखन सच की प्यारे हर गुण लिखो विचार, तन लिखारी नानका प्यारे साच लिखे उर्धार, सोरठ महला पहला दुत की, तू गुण दातो निर्मलो, तू गुण दातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होए, हम अपराधी निर्गुणे पाई तुझ ही ते गुण सोए, मेरे प्रीतमा तू करता कर वेख हौ पापी पाखंडिया पाई, मन तन नाम विशेख रहाओ बिख माया चित मोया पाई, चतुराई पत खोए चित में ठाकुर सच वसे पाई, जे गुर ज्ञान समोए, रूड़ो रूड़ो आखिए पाई रूड़ो लाल चलूल, जे मन हर्ष्यों बैरागिए पाई दर कर साच अपूल, पाताली आकाश तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान, गुर मिले सुख पाया पाई चूका मनो गुमान, जल मल काया मांजिए पाई पी मैला तन होए, ज्ञान महा रस नाइए पाई मन तन निर्मल होए।

गुर बिन अलख ना लखिए पाए, जग बूढ़े पत खोए, मेरे ठाकुर हाथ वडाइया पाए, जय पावे तें दे। बैसर बोले मीठली पाई, साच कह फिर पाए, बिरह बेदी सच वसी पाई, अधिक रही हर नाए। सबको आख है अपना पाई, गुरते बूझे सुजान, जो भी दे से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईदन अधिक सके लिए पाई, पावक रंचक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा कर पहला तितुकी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख ले, हर जियो हरनाथ समार पचाया। गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम पुलाया, हर जी ए तेरी वड्याई, भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी शरणाई रहाओ, भगतां नू जम जोहे ना साकै, काल ना नेड़े जाई, केवल राम नाम मन वसिया, नामे ही मुक्त पाई। रिद्ध सिद्ध सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई, मन मुखा नू प्रतीत ना आवे, अंतर लोभ सुआओ, गुरमुख हृदय शब्द ना भेजो, हर नाम ना लागा पाओ। कूड कपट पाज लह जासी, मनमुख फीका लाओ, भगतां विच आप वरदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता, माया मोह सब

समाणी गुर के शब्द पछाता अचिंत काम करें प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वस्या सब काज सवारण हारा ओना की रीस करे सो विगुचे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख पौ के मुए बिल लाई आवे जावे ठौर न पावे दुख में दुख समाई गुरमुख होवे सो अमृत पीवे सहजे साज समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े ते वाद वखाणे बिन हर पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी पज छूटे गुर शरणाई जिन हर मन वस्या से दर साचे दरसा चै सचियारा ओना दी शोभा जुग जुग होई कोई न मेटन हारा नानक तिन कै सद बलिहार है जिन हर राख्या उधारा सोरठ मैला तीजा दुत की निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है पाई राम नाम चित लाए हर जियो आपे बख्श मिलाए गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सतगुर लेर लाए रहो कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे साचे शब्द विचार पौजल पार उतारन पाई सतगुर बेड़े चार मनूरे ते कंचन भय भाई गुर पारस मेल मिलाए आप छोड़ नाओ मन वस्या पाई ज्योति ज्योत मिलाए हौवारी हौवारणे पाई सतगुर को सद बलिहारे जाओ नाम निधान जिन रिता पाई गुरमत सहज समाओ गुर बिन सहज ना उपजे पाई पूछो ज्ञानिया जाए सतगुर की सेवा सदा कर पाई विच्चों आप गवाए गुरमती पौ उपजे पाई पौ करनी सच सार प्रेम पदार्थ पाईए पाई सच नाम आधार जो सतगुर सेवे अपना पाई तिनके हो लागो पाए जन्म सवारी अपना पाई कुल भी लई बख्शाए सच बाणी सच शब्द है पाई गुर कृपा ते होए नानक नाम हर मन वसै पाई तिस बिघन न लागे कोए सोरठ मैला तीजा हर जियो शब्दे जापदा पाई पूरे पाग मिलाए सदा सुख सोहागणी पाई अंदिन रतिया रंग लाए हर जी तू आपे रंग चढ़ाए गावो गावो रंग राते हो पाई हर सेती रंग लाए रहाओ गुर की कार कमावणी पाई आप छोड़ चित

मन हठ कार कमावनी पाई बिन नावे कूड़ियार से गावे जिन मस्तक पाग है पाई पाए सच्चे बैराग अंग दिन राते गुण रवे पाई निरपो गुर लिव लाग सबना मार जीवालदा पाई सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारी है पाई जिस दी वड्डी है दात मन मुख मैली डुमनी पाई दरगह नाही थाओ गुरमुख हो वैता गुण रवे पाई मिल प्रीतम साच समाओ एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मोह देसी जाए किड़ी पवंदी मोह आयोन पाई बिखिया नो लो भाई नाम समाले सुख वसे भाई सदा सुख सांत शरीर नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर सोरठ मैला पंजवा कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिने उपाया भाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई देकर अपनी वथ किन कही है क्यों देखी है पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाही है पाई जिसते जापे तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके कर सब किछ है पाई नौनिद परे पंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगमा पार जी जंत प्रतपालदा पाई।

प्रंपो हो वै नाथ, मिल संत सवा मन मांझी है पाई, हर कै नाम निवास। मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई, कमल हो वै प्रगास। गुर बचनी सुख उपजै पाई, सब फल सतगुर पास। मेरा तेरा छोड़िए पाई, होइए सबकी तूर। कट कट ब्रह्म पसारिया पाई, पेखे सुने हजूर। जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई, तित दिन मरिए चूर। करण करावन समर्थो पाई, सर्व कला भरपूर। प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोह विनाश। तिस पावे ता मेल ले पाई, हृदय नाम निवास। गुरमुख कमल प्रगासिए पाई, हृदय होवे प्रगास। प्रगट पया प्रताप प्रभ पाई, मौलिया तरत आकाश। गुरपूरे संतोखिया पाई, एनस लागा पाओ। रसना राम रवै सदा पाई, साचा साध सुआओ। करनी सुन सुन जीविया पाई, नेचल पाया थाओ। जिस प्रतीत ना आवई पाई, सो जीड़ा जल जाओ। बहुगुण मेरे साहिब है पाई, हों तिसके बल जाओ। ओ निर्गुणिया रे पालदा पाई, देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास पाई, गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा पेटिए पाई, पूरा तिस करमाओ। तिस बिन कड़ी ना जीविए पाई, सर्व कला भरपूर। सास गिरास ना विसरै पाई, पेखो सदा हजूर। साधु संग मिलाया पाई, सर्व रहा भरपूर। जिना प्रीत ना लगिया पाई, से नित नित मरदे चूर। अंचल लाए तराया पाई, पौजल दुख संसार। कर कृपा नदर निहालिया पाई, की तुन अंग अपार। मन तन शीतल होया पाई, पोजन नाम आधार। नानक तिस शरणागति पाई, जे किलबिख काटनहार। सोरठ महला पंजवां। मात गर्व दुख सागरो प्यारे, तैं अपना नाम जपाया। बाहर काड बिख पसरिया प्यारे, माया मोह वधाया। जिसनो की तो कर्म आप प्यारे, तिस पूरा गुरु मिलाया। सो आरा दे सास सास प्यारे, राम नाम लिवलाया। मन तन तेरी टेक है प्यारे, मन तन तेरी टेक। तुद बिन अवर ना करन हार प्यारे, अंतर जामी एक रहाओ। कोट जन्म प्रम आया प्यारे, अनक जोन दुख पाए। साचा साहिब विसरिया प्यारे, बहुती मिले सजाए। जिन पेटे पूरा सतगुरु प्यारे, से लागे साचे नाए। तिना पिछे छुटिए प्यारे, जो साची शरणाए।

जोग पुंचाए कुलायन प्यारे उतरे नाही विजोग जोगुर मेल उधारिया प्यारे तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारे चितना वे मूल जिन तू विसरे पार ब्रह्म स्वामी से तन होए तूड़ बिल लाट करे बहुतेरिया प्यारे उतरे नाही सूल जोगुर मेल सवारिया प्यारे तिनका रहा मूल साकत संग न की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मोह काले उठ जाए मन मुख टोई न मिले प्यारे दरगे मिले सजाए जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिना पूरी पाए संजम सह स्याण पा प्यारे इक ना चली नाल जो बेमुख गोविंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वस्त ना जातियां प्यारे कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मिलायुन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे आंदिन कीर्तन गुण रवे प्यारे अमृत पूर पूर परे दुख सागर तिन लंगिया प्यारे पावजल पार परे जिस पावे तिस मेल लह प्यारे से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान तिस सरनाई टै पए प्यारे जे अंतर जामी जान हालत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे न विसरै प्यारे नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवा कर दूजा अष्टपदियां इक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचार्यो निवल पुयंगम सादे पंच जना स्यों संग ना छुटक्यो अधिक अंग बुद्ध बादे प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरयो बन माही तट तीरथ सब तरती प्रम्यो दुबदा छुटके नाही मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत धराए मन की मैल ना उतरे एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु विद दान दा दारा अन बस्तर कूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंद

कहो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले।

नतीजा सफलियो सतगुर सेविया तन जन्म प्रवान जिना सतगुर जीवंदिया मोया ना विसरै सेई पुरख सुजान कुल उधारे आपना सो जन होवै प्रवान गुरमुख मोए जीवंदे प्रवान है मन मुख जन्म मराहे नानक मोए ना आखियै जे गुर कै शब्द समाए पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम त्याई है सत संगत साधु लग हर नाम समाई है हर तेरी वड्डी कार मैं मूरख लाई है हौ लाला गोला तुद मैं हुक्म फरमाई है हौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है श्लोक महला तीजा पूरब लिखिया कमावना जे करते आप लिखियास मोठ गौली पायन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवदा दूजे पाए मोयास जिन्नी गुरमुख नाम न चेत्यो से बहन न मिलनी पास दुख लागा बहु अतकणा पुत कलत ना सास कोई जास लोकां विच मुह काला होआ अंदर उब्बे सास मन मुखानो को ना विसही चुक गया वे सास नानक गुरमुखानो सुख अगला जिना अंतर नाम निवास महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए सतगुर का पाणा अनदिन करे से सच रहे समाए दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे वेकार मन मुख आप स्वार्थी कारज ना सके सवार नानक पूरब लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हो मैं लेखा मंगिए फिर आवे जाया जिना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहारी।

बिन नावे जग कमला फिरे गुरुमुख नदरी आया। तंदा करतिया नेफल जन्म गवाया सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है मनमुखा साधना पाया। ज्यो कस्तूरी मृग ना जाने परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह करते आप खुआया। गुरमुख विरले सो जी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया रसना हर साध आया। सबदे ही नाउ उपजे सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया पौड़ी। सो हर पुरख अगम है कहो कित विद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाई है। जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाई है।

फिर मिलन ना पाए नहीं जम्मै ते मर जाए। सहसा रोग ना छोड़ई दुख ही मैं दुख पाहे, नानक नदरी बख्श ले सब दे मेल मिलाए। मैला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ, ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ। नानक गुरमुख बख्शी है से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी, जो से मैं सत मुरार से पवजल तर गया। जो बोले हर हर नाओ तिन जम छड़ गया, से दरगे पैंदे जाहे जिना हर जप लया। हर सेवै से ही पुरख जिना हर तु

नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी। से हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर इक त्यावे इक इको हर सत्या। हर इको वरते इक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर जपिया।

जा। हर गुण तोट ना आवई कीमत कहन ना जाए, नानक गुरमुख हर गुण रवे गुर में रह समाए पौड़ी। हर चोली दे सवारी तड पैंदी भगत कर, हर पाठ लगा अधिकाई बहु बहु विद पांत कर। कोई बूझे बूझन हारा अंतर विवेक कर, सो बूझे एहो विवेक जिस बुझाए आप हर। जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर। श्लोक महला तीजा। पर थाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहाने, गुरमुख होए सो पौ कर।

है सब राज सृष्टि काले, नानक गुरमुख बुझिए जा आपे नजर करे महला तीजा। जिन गुरमुख नाम से आया आए ते परवान, नानक कुल उदार अपना दरगे पावे मान पौड़ी। गुरमुख सखिया सिख गुरु मेला आया, एक सेवक गुर पास एक गुर कारे ला।

तन तन भाग तिना भगत जना जो हर नामा हर मुख कहत्या। तन तन भाग तिना संत जना जो हर जस श्रवणी सुनत्या। तन तन भाग तिना साज जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनत्या। तन

सा सिद्ध सा करमात है, अचिंत करे जिस दात, नानक गुरमुख हर नाम मन वसै, एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी। हम ताडी हर प्रभु खसम के, नित गावे हर गुण क्षमता, हर कीर्तन करें हर

पलका हर हर दयाल होवे जिस ऊपर सो गुरुमुख हर जप जिनका। श्लोक महला तीजा जन्म जन्म की इस मन को मल लागी।

गुरमुख हर कीरत फल पाए जिनको हर लिख पाए। नानक गुर प्रसादी अंधिन भगत हर उचरे हर भक्ति माए समाए पौड़ी। हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर पली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा गुरमति हर रंग सदा मान। हर जप जप औखद खा दिया सब रोग गवाते दुखा कान। जिना सास गिरास ना

नानक गुर शरण आई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पिरके पाने सदा चले ता बनिया सीगार। सेज सुहावी सदा पिर रावे।

गवावना जन नानक सद बलिहार है बल बल जावना। श्लोक महला चौथा। अंतर अज्ञान पई मत मद्दम सतगुरु की प्रतीत नाही अंदर कपट सब कपटो कर जाने कपटे खपे कपाही सतगुरु का पाना चित ना आवे अपने स्वाय फिराही कृपा करे जे अपनी ता नानक शब्द।

नहीं पौड़ी। संत भगत परवान जो प्रभ पाया, सही विचक्षण जंत जिन्नी हर त्याया, अमृत नाम निदान भोजन खाया, संत जना की तूर मस्तक लाया, नानक पय पुनीत हर की रचनाया। श्लोक महला चौथा। गुरुमुख अंतर शांत है, मन तन नाम समाये, नामो चित वे नाम पढ़े, नाम रहे लिवलाए, नाम पदार्थ पाया चिंता गई बिलाए, सतगुरु मिले नाम।

न पाई। दर्भ संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी। वेद पढ़े पर पंडित मुए रूप देख देख नारी। राम

मरकट लो सब लोग कुटुंब भयो आगे हंस अकेला। कैत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ चूठी माया।

आई बाजीगर स्वांश कहला अपने रंग रवे अकेला कथनी कह परम न जाई सब कट कत रही लुकाई जा को

निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ कस कुंकम चंदन गारिया बिन रहनो जगत निहारिया पूत पिता इक जाया बिन ठाहर नगर बसाया जाचक जन दाता।

तो मन पवने सुख बनिया किच जोग प्राप्त गनिया रहाओ गुर दिखलाई मोरी जित मृग पड़त है चोरी मूंद लिए दरवाजे बाजिये ले अनहद बाजे कुंभ कमल जल परया जल मेटिया उबा करया कहो कबीर जन जानिया जो जानिया तो।

ऐ भिखारी अछत राज बिछरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राजपुर अंग प्रसंग जैसे हैं अब कछ मर्म जनाया, अनिक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट

मीन पकरफा के ओर काट्यो राम कियो बहुबानी खंड खंड कर भोजन कीनो तऊ ना बिसरियो पानी आपन बापे ना किसी को पावन को हर राजा मोह पटल।

नहीं ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा गुर प्रसाद कह।

चुप चुप होए रहाओ तनाश्री मैला पैला। हम आदमी हाँ इस दमे मोलत मोत न जाना, नानक बिनवे तिसै सरेवो जाके जी पराना। अंधे जीवना विचार देख चेते के दिना, रहाओ सास मास सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा। नानक शायर एव कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे न देही मेरे साहिबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन मैं सो किस पाई है पुरबल से का लेना। नाम खसम का चित ना किया कपटी कपट कमाना, जम द्वार जा पकड़ चलाया

क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे हियाओ जीड़ा बिललाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिए चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए, रहाओ वखर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीण ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तेरे आसमाए, तुझ बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे की तै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुन उठ चलना मोहत के ताल, क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, विण नजरी नानक नहीं कोए, कनासरी मेला पहला, नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हास्यों चित लागे फिर काल न खाए, रहाओ सच सिमरिए होवे प्रगास, ताते बिखिया मह रहे उदास, सतगुर की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छे सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे, पंत नानक करे विचार, साची बाणी स्यों तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार, तनाफरी मैला पहला, जियो तपत है बारो बार, तक तक खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विस्तर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चखन होए, जिन बोले जाने सब सोए राव, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सब्बा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नाही जाए, कर्म मिले आखन तेरा नाओ,

ना छीजे, चोर की हामा परे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। सुन मन अंधे कुत्ते कूड़ियार, बिन बोले बूझिए सत्यार रहाओ। चोर सुआलियो चोर सियाना, फोटे का मूल एक दुगाना। जे साथ रखिए दी जैर लाए, जहाँ पर खिए खोटा होए जाए। जैसा करे सो तैसा पावे, आप बीज आपे ही खावे। जे वड्याया आपे खाए, जे ही सुरत ते है राहे जाए। जे सो कूड़िया कूड़ कबाड़।

नाही सबका टब, खानस्त जग पृष्ट होए डूबता इव जग। कल में राम नाम सार, अखी तमी ते नाक पकड़े ठगन को संसार रहाओ। आंट फेती नाक पकड़े सूझते तिन लो, मगर पाछे कछ न सूझे ते पद्म अलो। खत्रिया ता कर्म छोड़िया मलेच पाखिया गही, सृष्ट सब एक वर्ण होई धर्म की गप रही। अष्ट साज साज पुराण सो दे करें वेद अभ्यास, बिन नाम हर के मुक्त नाही कहे नानक दास। तासी मैला पहला आरती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। तूप मले आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना, तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत बेरी रहा। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नन्ना एक को ही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध इव चलत मोही। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए। गुरसाखी ज्योत प्रगट होए, जो तिस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, हम दिनो मोहे आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारन को, होए जाते तेरे नाम वासा। त्रासरी मैला तीजा कर दूजा चौक दे इको अंकार सतगुर प्रसाद। ए तन अखुट नान खुटे ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए। अपने सतगुर को सद बल जाए, गुर कृपा से हर मन वसाए। से तनवंत हर नाम लिव लाए, गुर पूरे हर तन पर गासिया। हर कृपा से वसे मन आए रहाओ। अवगुण काट गुण हृदय समाए, पूरे गुर कैसे सुवाए। पूरे गुर की साची बाणी, सुख मन अंतर सहज समाणी। एक अचरज जन देखो भाई, दुखदा मार हर मन वसाई। नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसे मने आए। सब में वसे प्रभ एक को सोए, गुरमति कट प्रगट होए। सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया। त्रासरी मैला तीजा हर नाम तन निर्मल अच अपारा, गुर के शब्द परे पंडारा। नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोह जले अभिमान। गुरमुख हर रस चाखे कोए, तिस सदा आनंद होवे दिन राती। पूरे पाक प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरते ते लोए। जो चाखे सो निर्मल होए, निर्मल नाम हो मैं मल तोए। साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग। तिस सदा हरख नाही कदे सोग, आप

वड़ियाई पाए आपे करता जुग जुग सोए नदर करे मेलावा होए गुरबाणी ते हर मन वसाए नानक सात रते प्रभ आप मिलाए तनासी मैला तीजा जग मैला मैलो हो जाए आवे जाए दूजे लोभाए दूजे पाए सब परज विगोई मन मुख चोटा खाए अपनी पत खोई गुर सेवा ते जन निर्मल होए अंतर नाम वसे पत उत्तम होए रहाओ गुरमुख उगरे हर शरणाई राम नाम राते पगत दृढ़ाई पगत

सो तन पुरख जिस नाम प्यार। तिन प्रभ साचे इक सच लाए, उत्तम वाणी शब्द सुनाए। प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार। तनास जी मैला तीजा, जो हर से मैं तिन बल जाओ। तिन हृदय साच सच्चा मुखनाओ, साचो साच समालो दुख जाए। साचे शब्द वसे मन आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए। सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ कुसत तृष्णा अग्न बुझाए। अंतर सांप सहज सुख पाए, गुर के पाने चले ताँ आप जाए। सात महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी। मन मुख अंधे दुख विहानी, सतगुर पेटे ताँ सुख पाए। हों मैं विच्चों ठाक रहाए, किसनो कही है दाता एक सोए। कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा। नानक साचे साचा धावा, त्रासी मैला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन हुए कैसे हर पाए। ए मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे हर दे वडियाई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे, पाइस मन की सो जी पावे। मन में मत मैगल मिकदारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा। मन असाध साधे जन कोई, अचर चरे ताँ निर्मल होई। गुरमुख ए मन लया सवार, हों मैं विच्चों तजै विकार। जो तुर रखियन मेल मिलाए, कदे न विछड़े शब्द समाए। अपनी कला आपे प्रभ जाने, नानक गुरमुख नाम पछाणे। त्रासी मैला तीजा, काचा तन संचे मूर्ख गावार। मन मुख पूले अंध गवार, विख्या कै तन सदा दुख होए। ना साथ जाए ना प्राप्त होए, साचा तन गुरमती पाए। काचा तन सुन आवे जाए रहाओ, मन मुख पूले सब मरें गवार। पर जल डूबे ना उरवार ना पार,

सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ। हम मूरख मूरख मन माहे हों मैं विच सब कार कमाहे। गुर प्रसादी हों मैं जाए आपे बख्शे ले मिलाए। बिख्या का तन बहुत अभिमान।

अवर न कोई जिस सच लाए सोई लागे, नानक नाम सदा सुख आगे। राग तनासरी महला तीजा कर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हम पीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता। हों बलिहार जाऊं साचे तेरे नाम बिटो, करण कारण सब

परम पट फूले गुर प्रसादी जाने साची लिव लागी है पीतर सतगुर से मन मानिया। सना श्री मैला चौथा कर पहला चौक दे।

हमारी, हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी, हर गुण कहे ना सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत, कर कृपा पाखण हम तारी। रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा, लग संगत साध सवारी, जो कंचन बै संतर पायो, मल काटी कटक उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर हर हर उर्धारी, हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी, जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पै सवारी। तना श्री मैला चौथा, हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ पागी, अपनी सेवा आज कराई, गुरमत अंतर जागी। हर के नाम रता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई, गुरमत हर लिग लागी। रहाओ संत जना की जात हर स्वामी, तुम ठाकुर हम सांगी, जैसी मत देवो हर स्वामी, हम कैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नान निक कीरे, तुम वड पुरख वडागी, तुमरी गत मित कह न सके।

नानक दासन दास करो प्रभु हम हर कथा कथा गी तना श्री मेरा चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर वाणी जो जो कहे सुने सो मुक्ता हम किसके सद कुर्बानी हर के संत सुनो जस्तानी हर हर कथा सुनो एक निमख पल सब के लिए पाप लह जानी रहाओ ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरुष वडानी तिनकी तूर मंगे प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी हर हर सफल्यो बिरत प्रभ स्वामी जिन जप्यो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुकानी जिनके वड्डे पाग वड ऊचे तिन हर जप्यो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी तनासी मैला चौथा हम अंधले अंध दिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाली सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली गुर सिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली राव हर के संत सुनो जन पाई गुर सेवियो बेग बेगाली सतगुर सेव खर्च हर बांधो मत जानो आज के काली हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपिया से हर होए हर मिलिया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली तनासी मेला चौथा हर हर बूंद पे हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिललाती हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती हर बिन रह ना सकूं एक राती जो बिन अमले अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ तुम हर सरवर अप आगा हम ले न सके अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती हर के संत जना हर जपियो गुर रंग चलू लहराती हर

बाकी हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साथ जना की दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरयो चंद चंदा की तुम वड पुरुष वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपा की जन नानक को प्रभु कृपा की जय कर दासन दास दशा की तनासी मेला चौथा कर पंजवा दो पदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद उर्धार विचार मुरार रमोरम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपूरे प्रकट कर दीने राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट हर संग हरी सब संग भय हर कंचन चंदन कीने रहा नव छह खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नापति ने जन नानक हर हृदय सद प्यावो क्यों हर प्रभ मेरा पीने तनाश्री मैला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम ति आई हर दरगे पावे फिर जन्म ना आवे हर हर हर जोत समाई जप मन नाम हरी हो है सर्व सुखी हर जस ऊंच सगुना ते ऊपर हर हर हर सेव छड़ाई रहाओ हर कृपा निध कीनी गुरु भगत हर दीनी तब हर स्यों प्रीत बने आई बहुत चिंत विसारी हर नाम उर्धारी नानक हर पय है सखाई तनात्री मेला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर कौजल पार उतारी मन बचन हृदय ते आए हर होए संतुष्ट इन पान हर नाम मुरारी मन जपिए हर जगदीश

तब भयो मन उद्यम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए परयो है शरण तुम्हारी। तनाश्री मैला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाम गुर प्रसाद को विरला पावे जिनको लिलाट लिखिया तुर पाओ जब मन राम में नाम हर जस उत्तम काम जो गावे सुने तेरा जस स्वामी हूँ तिनके सब दलिहारे जाऊ रहाओ। शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देओ सोई हो पाओ दीन दयाल कृपा कर दीजे नानक हर सिमरन का है चाओ। तनाश्री मेला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बानी गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत करमानी।

नहीं रहा, आपे गुरचेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज विडानी, जन नानक आप मिलाए सोई हर मिल से, अवर सब त्याग को है हर पानी। सातवीं मैला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुख।

ज्यो पावे त्यो रख तू मेरे प्यारे सत नानक के पातशाह। तना श्री मैला पंजवा कर पहला चौपदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। पव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारे ओट पराध मिटे किन पीतर जा गुरुमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दुतारे राव। तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोए दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप ना लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल नैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करें सगल जन तेरी तू अदनासी पुरख मुरारे ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। तना श्री मैला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यो हेत बढ़ायो कमल हेत बिन स्यो है पवरा उन मार्ग निकस न पायो। अब मन एक स्यो मोह कीना मरे न जावे सद ही संगे सतगुर सबदी कीना रहाओ। काम हेत कुंचर ले फांक्यो ओ परवस पयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत विदारा। देख कुटंब लोभ मोहयो प्राणी माया को लपटाना अतरच्यो कर लीनो अपना उन छोड़ सरा पर जाना। बिन गोविंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर एह बुझायो प्रीत प्रभु सदकेला। सनासरी मैला पंजवा कर कृपा दियो मोहि नामा बंधन से छुटकाए मन से बिसरो सगलो तंबा गुर की चरणी लाए। साध संग चिंत बिरानी छाडी अनन बुद्ध मोह मन बासन देख कर गढ़ा गाडी रहाओ। ना को मेरा दुश्मन रहा ना हम किसके बहराई ब्रह्म प्रसार पसारो पीतर सतगुर ते सो जी पाई। सब को मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन दूर करायो मन का बिरहा ता मेल कियो मेरे राजन। बिन सियो तीठा अमृत बूठा सर्व लगो गुर मीठा जल फल नैयल सर्व निवासी नानक रमैया जीठा। तना श्री मैला पंजवा जब से दर्शन पेटे साधु परे विनस कोए आए महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विदाता पाए। अब मोहे राम जसो मन गायो पयो परगास सदा सुख मन में सब गुरु पूरा पायो रहाओ। गुण निदान रिद पीतर वसिया ता दुख परम को पागा परि प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा चिंत अचिंत।

कहो नानक जिन जमते काढे तिस गुर के कुर्बानी तनासरी मैला पंजवा जिसका तन मन तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी तिन्ही सुनिया दुख सुख मेरा कहो बिदनी की खटानी।

पूर्ण हुए तृप्तानी। ओए जो बीच हम तुम कछ होते, तिनकी बात बिनानी, अलंकार मिल थैली हुई है, तांसे कनक वखानी। प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी, कहो नानक ने चल कर बांधियो, गुर की ओ बंदानी। तनासरी मैला पंजवा, वडे वडे राजन अर पूमन, ताकि तृष्ण न बूझी, लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी। दिखिया मैं किन्हीं तृप्त न पाई, जो पावक ईदन नहीं तापे, बिन हर कहां अगाई रहाओ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटे न भूखा, उद्यम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा। काम वंत कामी बहु नारी, पर गृह जो न चूके, दिन प्रत करे करे पछतापे, सोग लोभ महसूके। हर हर नाम अपार अमोला, अमृत एक निधाना, सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। तनासरी मैला पंजवा, लवे ना लागन कौ है कछुए, जाको फिर ए तावे, जाको गुर दीनो ए अमृत, किसी को बने आवे। जाको आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदिया, ताके चितना बसा रहाओ। मौल्यो मन तन होयो हरिया, एक बूंद जिन पाई, वर्ण न साको उस्तत ताकी, कीमत कहन न जाई। काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता, जाको दया करी मेरे ठाकुर, तिन गुरे कमानो ममता। दीन दयाल सदा कृपाला, सर्व जिया प्रतपाला, ओत पोत नानक संग रविया, जो माता बाल गोपाला। तनासरी मैला पंजवा, बार जाऊं गुर अपने ऊपर, जिन हर हर नाम दृढ़ाया, महा उद्यान अंधकार।

धर्म पदार्थ काच बाद है जीत जन्म जन्म के किल बिख दुख पागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख से निक्षो नानक एक परीत रात्रि मैला पंजवा पानी पखा पीसो संत आ गए गुण गोविंद जस जाई साथ साथ मन नाम समारे ए विश्राम निध पाई तुम करो दया मेरे साई ऐसी मत दी जय मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ त्याई रहाओ तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए परमाई अनद रूप रवियो सब मध्य जब कत पेखो जाई तुम दयाल कृपाल कृपा निध पतित पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुख से निमुख बुलाए जाप पाप पगत खा पूरी जो प्रभ के मन पाई नाम जपत तृष्णा सब बुझी है नानक तृप्त अघाई तनाश्री मैला पंजवा जिनकी ने बस अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या ए जंत विचारा प्रभ की ओट गई तो छूटो स्वाद प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याज सब हूटो रहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोह ओडी थी ऐसी ठगोरी पाए पुलावे मन सब के लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेलियो दुआ किसी वाद काट किसी ही पे सगले लर लर मुआ हूँ बलिहारी सतगुरु आपने जिन ए चलत दिखाया बूझी पाए जले संसारा भगत न व्यापे माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया अपने कर ले आया खाटे सनातनी मैला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खत्म हमारे निमक निमक तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे धारे जेवा एक कवन गुण कही है बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना कि नहीं लही है रहाओ कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके बोले त्रात्री मैला पंजवा पूजा वर्त तिलक स्नाना पुन दान बहुदैन कहू न पीजे संजम स्वामी बोले मीठे बैन प्रभ जी को नाम जपत मन चैन बहु प्रकार खोजे सबका को बिखम न जाई लैन राव जात ताप प्रमन बसबा कर उर्द ताप ले गैन ए विद न पतिया नो ठाकुर जोग जुगत कर जैन अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेते नानक सुख जन रैन सनातनी मैला पंजवा बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे हर हर नाम सुनावे अस्थिर करे नेचल ए मनवा बौर न कठूतावे है तू ऐसो हमरा मीत सगल समग्री जियो हियो देओ अर्पो अपनो चीत रहाओ पर तन पर तन पर की निंदा इन स्यों प्रीत न लागे संत संग संत संबाखन हर कीर्तन मन जागे गुण निधान दयाल पुरख प्रभ सब सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जो माता बाल गोपाला त्रासरी मैला।

नानक शरण परयो दुख पंजन गुण गावे सदा अकार निंदक का मुख काला हुआ दीन दुनिया के दरबार त्रासरी मैला पंजवा अधर राखन सितारिया पतित पुनीत किए खिन पीतर सगला रोग बिदारिया रहाओ गोष्ट पई साध के संगम काम क्रोध लोभ मारिया सिमर सिमर पूरन नारायण सगले तारिया औखद मंत्र मूल मन एक है मन विश्वास प्रभ तारिया चरण रेन बांछे नित नानक।

0: आधार जनका रास पूंजी एक तार मान दीवान साचा नानक की प्रवटेक श्री मैला पंजवा। फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया आम सगल विद कामना आवे हर हर नाम के आया। तांते मोह तारी ओत गोपाल शरण परयो पूरन परमेश्वर बिन से सगल जंजाल रहाओ सुर्ग मृत कयाल पू मंडल सगल व्यापे माए जी उदाहरण सब कुल कारण हर हर नाम ते आए। नानक नाम निरंजन गाये पाये सर्व निधाना कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना।
1: तनाश्री महला पंजवा कर दूजा चौपदे।

चाल संग ना चाले तिन स्यों हीत जो गहराई से ही मीत ऐसे परम पुले संसारा जन्म पदार्थ कोई गवारा रहा साथ तरम नहीं पावे दीठा चूठ तो क्यों रचो मीठा दात प्यारी विसरिया दा तारा जाने नाही मरण विचारा वस्त पराई को उठ रोवे कर्म तरम सगलाई खोवे हुक्म ना बूझे आवन जाने पाप करे ता पछोताने जो तुद पावे सो परवान तेरे पाने नो कुर्बान नानक गरीब बंदा जन तेरा राख ले साहिब प्रभ मेरा तना श्री मैला पंजवा मोह मस्कीन प्रभ नाम आधार खाटन को हर हर रोजगार संचन को हर एको नाम हलत पलत ताके आवे काम नाम रते प्रभ रंग अपार साध गावे गुण एक निरंकार रहाओ साध की शोभा अतमस्कीनी संत वडाई हर जस्तीनी अनद संतन के पगत गोविंद सुख संतन के बिन सी चिंद जह साध संतन होवे इकत्र तह हर जस गावे नाद कवित साध सभा में अनद विश्राम उन संग सो पाए जिस मस्तक क्राम देकर जोड़ करी अरदास चरण पखार कहां गुणतास प्रभ दयाल कृपाल हजूर नानक जीवे संतां दूर तनाश्री मैला पंजवा सो कट डरे जे खत्म समारे डर डर पचे मन मुख विचारे रहाओ सिर ऊपर मात पिता गुरुदेव सफल मूरत जाकी निर्मल सेव एक निरंजन जाकी रात मिल साध संगत होवत परगास जीवन का दाता पूर्ण सवठाए कोट कलेश मिटे हर नाए जन्म मरण सगला दुख नासे गुरमुख जाके मन तन बासे जिसनो आप लए लड़ लाए दरगे मिले तिसे ही जाए सही पगत जे साचे भाने जम काल ते पए निकाने साचा साहिब सच दरबार कीमत कौन कहे विचार कट कट अंतर सगल आधार नानक जाचे संतरेणार तनाश्री मैला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद कर बाहर तेरा दरवासा तू जन कहे संग कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग जन को प्रभ अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी सामसलत परवान रहाओ पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी चरण शरण नानक दास हर हर संती ए विद जाती तना श्री मैला पंजवा सगल मनोरथ प्रभ से पाए कंठ लाए गुरु राखे संसार सागर में

अनब सदा उलास रहाओ, चरण तरण पूरन परमेश्वर, अंतर जामी साखियो, जान बूझ अपना कियो, नानक भगतन का अंकर राखियो। त्रासरी मैला पंजवा, जय जय पेखो तै हजूर, दूर कथो न जाई, रव रया सर्वत्र में मन सदा त्याय, ईत ऊत नहीं बीछड़े, सो संगी गनिये, दिन स जाए जो निमक में सो अल्प सुख पनिये रहाओ। प्रतपाले अप्याओ दे, कट ऊन न होई, सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई, अचल अछेद अपार प्रभ, ऊंचा जा का रूप, जप जप करें आनंद जन अचरज अनूप, सामत देव दयाल प्रभ, जित तुम्हें अरादा, नानक मंगे दान प्रभ, रेन पग सादा। तनाश्री मैला पंजवा, जिन तुम तेजे तिने बुलाए, सुख सहज सेती कर आओ, अनद मंगल गुण गाओ, सहज तुन नेकल राज कमाओ, तुम कर आवो मेरे मीत, तुमरे दुखी हर आप निवारे, अपदा पई बतीत रहाओ। प्रगट कीने प्रभ करने हारे, नाशन पाजन थाके, पर मंगल वाजे नित वाजे, अपने खत्म निवाजे, अस्थिर रहो डोलो मत कबू, गुर के बचन आधार, जय जयकार सगल पू मंडल, मुख उजल दरबार, जिनके जीत नहीं फेरे, आपे पया सहाई, अचरज किया करने हारे, नानक सच वडियाई।

सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो, हर दिन मुक्त न काहू जियो रहाओ। मन निर्मल कर्म कर तारण करण हर, अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो। जीवन देवा पारगम सेवा, के उपदेश मोको गुरु दीना जियो। तिस त्यों ना लाय हीत, जा को किस ना ही बीत। संत की बार ओ संग न चाले, मन पर तू आराध हर के प्रीतम साध। जा के संग तेरे बंधन छूटे, गो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण। अवर आस कट पटल न की जय, सोई भगत ज्ञानी त्यानी तपा सोई। नानक जा को कृपा की जय, तना श्री मेला पंजवा। मेरे लाल पलो रे पलो रे पलो हर मंगना, देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन। प्राण पक चित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चोआ रस भोग करत अनेक, बिखिया विकार देख सगल है फीके। एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन। तन तन आपन साप्यो, हर जपना निमक जाप्यो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना। जा को रे कर्म पला, तिन ओट गही संत पला। तिन नाही रे जम संतावे, साधु की संगना। पायो रे परम निधान, मिट्यो है अभिमान। एक है निरंकार, नानक मन लगना। तनाश्री मेला पंजवा, कर सतवा इको ओंकार। सतगुर प्रसाद हर एक सिमर, एक सिमर एक सिमर प्यारे। कल कलेश लोभ मोह, महापौ जल तारे रहाओ। सास सास निमख निमख, दिन सुरैन चितारे। साध संग जप निसंग, मन निधान धारे। चरण कमल नमस्कार, गुण गोविंद विचारे। साध जना की रेन नानक, मंगल सुख सदारे। तनाश्री मैला पंजवा, सारे अठवा दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। सास सास संभाले, ए लोक परलोक संग सहाई। जत तत मोहे रखवाले, गुर का बचन बसे जी नाले। जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाए न साके जाले रहाओ। निरसन को तन अंधले कौटिक, मात दूध जैसे बाले। सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। सनाश्री मैला पंजवा, पय कृपाल दयाल गोविंदा। अमृत हृदय सिंचाई, नव निध सिद्ध हर लाग रही जन पाई। संतन को अनग सगल ही जाई, गृह बाहर ठाकुर भगतन का। रब रहा सर्व ठाई राव, ताको कोई न पहुंचन हारा। जाके अंग गुसाई, जम की त्रास मिटे जिस सिमरत। नानक नाम से आई, तनाश्री मैला पंजवा। दर्भवंत दर्भ देख गर्भे, पोमवंत अभिमानी। राजा जाने सगल राज हमरा, क्यों हर जन टेक स्वामी। जे को अपनी ओट संवारे, जैसा बित तैसा हुए वर्त है। अपना बल नहीं हारे रहाओ। आन त्याग पे इक आसर, शरण शरण करे आए। संत अनग्रह पे मन निर्मल, नानक हर गुण गाए। सनासी मैला पंजवा, जान को हर रंग लागो इस युग में। सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस्ता कै। जा का सतगुरु पूरा, ठाकुर गा ये आत्म रंग। शरणी पावन नाम से आवन, सहज समावन संग रहाओ। जन के चरण वसे मेरे ही रे, संग पुनीता देही। जन की तूर देहो कृपा निद, नानक कै सुखे ही। सनासी मैला पंजवा,
जतन करे मानुख डहकावे को अंतर जामी जाने पाप करे कर मुह कर पावे पेख करे निर्वाने जानक दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ताके उतते उत पेखे आवे लोभी फेर रहाओ जब लग तुते नाही मन परमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई तनाश्री मेला पंजवा नाम गुरुदियो है अपने जाके मस्तक करमा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा जन को नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाओ नाम तन जिस जन के पाले सोई पूरा शाह नाम व्योहारा नानक आधारा नाम परापत लाहा तनाश्री मेला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श देखे माथे परो रवाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल तुम तो राखनहार दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभु प्रभु के पाल रहाओ महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधे पाल तनासरी मेला पंजवा अपनी उकत खिलावे पोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे मैं तारी बार तो तैसे ही पपाल रहाओ नीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा तनाश्री मेला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारे राज माल जोवन तन जियरा इन ऊपर ले बारे मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहत पवनित पारे तारे रहाओ तन सो थान तन ओए पवना जामे संत बसारे जन नानक की सरदा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे तनाश्री मेला पंजवा छड़ाए लियो महाबली पे अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता दिल सुना कतहु जात सतगुरु पूरे की नीदात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात नासरी मेला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी के टेक मने सदारी साकत की आवरदा जाए बिरसारी जैसे कागज के पार मूसा तूप गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ते बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ कादत साध जना संगारी तनाश्री मेला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तनवन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने के चरण कमल निज साती रहाओ जिसका साथिन ही रख लिया पूरन प्रभ की पांति मेल लियो आपे सुखदाते नानक हर राखी पाती तनाश्री मेला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरे प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा निरखो तुमरी और हर नीत मुरार सहाय हो दास को कर गए उदरो मीत रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरे खसमाना करे आप नानक आनंद भये दुख पागे सदा सदा हर जाप तनाश्री मेला पंजवा
चतुर्दिशा की नो बले अपना सिर ऊपर कर पा रहे हो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारे हो। हर जन राखे गुरु गोविंद कंस लाए अवगुण सब मेते दयाल पुरख बख्शंद।

औखी करी न देखण दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को साथ साथ प्रताले प्रभ क्यों लाग रहे हो मेरा चीत आग अंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ मन विलास पहे साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई तनासरी मैला पंजवा जिसको बिसरे प्राण पतदाता सोई गनो अबागा चरण कमल जाका मन राज्य हो हमें सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस खीज गया सब तन के प्रीतम से मन लागा रहाओ जय जय पेखो तय नारायण सगल कटा में तागा नाम उदक पीवत जा।

राम राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की खाती कोट सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रहन नानक सद कुर्बान तनासरी मैला पंजवा मांगो राम से एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो शोक अगन में मन ना व्यापे आठ पहर गुण गावो स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मधंत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म न छापन तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानक को जाचत श्रम पाई है प्रभ के सिमरन मोख रहाओ कोखे मुन जन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा चंद सेव सच पाई है दोवे सुहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पै काटे मिल साधु बिन से शोक सनातरी मैला पंजवा कृष्णा बुझे हर के नाम महा संतोष होवे गुरु बचनी प्रभ से लागे पूरन ध्यान रहाओ महाकलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूरन होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सब खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया तुर करता है नानक जन के पूरन काम सनातरी मैला पंजवा जन की कीनी पार ब्रह्म सार निंदक टिकन न पावन मूले उड गए बेकार रहाओ जह जह देखो तह तह स्वामी कोई न पहुँचन हार जो जो करे अवज्ञा जन की हो गया तत्चार करण हार रखवाला होआ जाता अंत न पारा वार नानक दास रखे।

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभ तारो कृपा कर तारो पूजा कह कूप से काट ले वो राव। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दो खातन साध पूरे। प्रभ बिना आन न राखन हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। तनाश्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सदा लीजै। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जीजै। रहाओ राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एहो महांत कहे। आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नान।

बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय राव। वड़े पाग पेटे गुरुदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापे सोग अगन किस जन न व्यापे। सागर करे आ साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोख किस पाप न फेरे जम जंदार ना वे नेड़े। कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाए नानक उदरे प्रभ शरणाए। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साग संग्रहाओ। अनेक प्रकारी बस्तर उधाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा। समुद्र सागर जिन चिन्ह में तारा रहा। कोई हो आ कर्म रत कोई तीरथ नाया। दासी हर का नाम से आया। बंधन का तनहार स्वामी जन नानक सिमरै।

काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, ओही संग समाई रहाओ, कोप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, सट ही खोजो पाई, बाहर पीतरे को जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न परम की काई, तनासरी मेला नामा, साधो ए जग परम तुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ, मात पिता पाई सुख बनता, ताके रस लपटाना, जोबन तन प्रभ ताके मद में, एन सरह दीवाना, दीन दयाल सदा दुख पंजन, सांस्यों मन न लगाना, जन नानक को तन में किन्हों, गुरमुख होए पछाना, तनासरी मेला नावा, तिन जोगी को जुगत न जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जे कट माए पछानो रहाओ, पर निंदा

पुस्तक न जाके कंचन लो समानो हर शोक तेरे अतीता जोगी ताहे बखानो चंचल मन देह दिसको तावत अचल जाए ठहरानो कहो नानक ए बिद को जो नर मुक्त ताहे तुम मानो सनातनी मैला नावा अब मैं कौन उपाय करो जे बिद मन को संसा चूके पौन पार करो रहाओ जन्म पाए कच पलो न कीनो ताते अधिक डरो मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच डरो गुरमत सुन कच ज्ञान न उपजो पत्यो दर परो कहो नानक प्रभ बिरद पहचानो तब हो पत करो

दूरे, अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभु पावे, सरवर में हंस प्राण पत्तावे, क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए, रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पय निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाके, खावन जान रहे गुरु राखे, सरवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम पगत कर सहज समाए, सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुरु बचनी आदर, सुन मंडल इक जोगी बैसे, नारे ना पुरख कहो कहू कैसे, त्रिभवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ से शरणाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरुमुख भगत सहज विचारी, भगत वचल पै काटन हारे, हो मैं मार मिले भगतारे, अनिक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीरज तरम तरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुरु के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच स्वरूप, सुना श्री मैला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, ना तिस्मरण ना आवन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जह देखा तह अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाये, बिन गुरु पे ते मर आये जाये, रहाओ सो गुरु करो जे साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिलावे, हर के लोग अवर नहीं सारा, साचो ठाकुर साच प्यारा, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभ के लागे पाए, सतगुरु पूरा मिले मिलाए, आप दिखावे आपे देखे, हथ ना पतीजे ना बहुपेखे, कर पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया, पड़ पड़ फूले चोटा खाए, बहुत स्यान पावे जाए, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पै उदासा, मन मैले सूचा क्यों होए, साथ मिले पावे पत सोए, आचारा विचार शरीर, आज जुगाद सहज मन तीर, पल पंकज में कोट उदारे, कर कृपा गुर मेल प्यारे, किस आगे प्रभ तुझ सा लाही, तुझ बिन दूजा मैं को नाही, ज्यों तुझ पावे त्यों राख रजाए, नानक सहज

उर्जायो मानस जन्म संजोग पाया ताकि है ओत साध राखो देकर हाथ कर कृपा मेलो हर राया अनक जन्म प्रमचित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ अनक उपाव करो माया को बचित करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे कोई ऐसे रे पेट है संत मेरी लाह सगल चिंत ठाकुर सो मेरा रंग लावे परे रे सगल वेद न चूके मन तेद एक खिन न तीर मेरे करके पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए अंग बुद्ध मैल लाए कर को ठाकुर एक तिल न माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान सगल आश्रम कीने मनुआ ने पति ने विवेकहीन देही तोए कोई पाये रे पुरख विधाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे जिस पेटी है सफल मूर्त करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों के खे मन हट जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभु की कथा सुनाई तिस पेटे गत हुए हमारी तो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर के शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद पेत्यो निरपय गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल जातरा आवन जान रहे।

तीरथ नामन जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दशहरा, हौ नाम हर का सदा जा।

बिना गुरुवाक निर्मल सदा चानन नित सात तीर्थ मजना। साच ना लागे मैल क्या मल धोइए गुणे हार परोए किसको रोइए विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे आप पारस परम त्यानी साच साचे भावे आनंद अनदिन हरख साचा दुख किल विख पर हरे सच नाम पाया गुरु दिखाया मैल नाही सच मने। संगत मीत मिलाप पूरा नावनो गावे गावन हार सब सुहावनो साला है साचे मन सतगुरु पुन दान दयामते तिर संग पावे सहज नावे बेड़ी त संगम सत्सते आराध एकंकार साचा नित दे करे सवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया। कहन कह सब को एक वड आखी है हाँ मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सतगुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा पूछ करे आवे बिखला दे शब्द सचे गुर मेरा आखन कोट न पगत पंडारी पर पुर रहे सोई नानक साथ कह बेनंती मन मान जय सच सोई। सनातनी मेला पहला जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो साचो साचा नाऊ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा सृजनहारा जिन सृजी तिन गोई परवाना आया हुकुम पठाया फिर न सच्चे कोई आपे कर वेखे सिर सिर लेखे आपे सुरत बुझाई नानक साहिब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई तुम सर अवर न कोए आया जाए सी जियो हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो गुर परम चुकाए अकत सहाए सच में साच समाना आप उपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाना सच्ची वड्याई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई नानक साहिब अवरण दूजा नाम तेरे वड्याई तू सच्चा सृजनहार अलख सिरंदे आजियो एक साहिब दो रहा वाद वदंदे आजियो दो रहा चलाए हुक्म समाए जन्म हुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझे हुक्म सवारन हारा नानक साहिब सबक सिंजापे साचा सिरजनहारा भगत सोहे दरबार शब्द सुहाया जियो बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो रसन रसाए नाम तिसाए गुर कै शब्द विकाने पारस पर से पारस होए जा तेरे मन पाने अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहंदर साचे साचे के वापारी भूख प्यासो आस क्यों दर जाए सा जियो सतगुरु पूछो जाए नाम ते आए सा जियो सच नाम ते आए साच चवाए गुरमुख साच पछाणा दीना नाथ दयाल निरंजन अंदन नाम वखाना करनी कार तुरु फुरमाई आप मुआ मन मारी नानक नाम महारस मीठा कृष्णा नाम निवारी। सनासी संत मैला पहला तिर संग मूठड़ी खबर न पाया जियो मस्तक लिखेड़ा लेख पूर्व कमाया जियो लेख न मिटी पूर्व कमाया क्या जाना क्या होसी गुणी अचार नहीं रंग राती हम गुण बै बैरोसी तन जो बन आख की छाया बिर्द पए दिन पुन्या नानक नाम बिना दोहागण छूटी झूठ विछुनिया बूढ़ी कर का लियो गुर कै पाए चलो साचा नाम ते आए पावे सुख मैलो हर नाम ते आए ता सुख पाए पेयड़े दिन चारे निज कर जाए बह सत पाए अन दिन नाल प्यारे
विन पगती कर वास न होवी, सुनियो लोक सभाए नानक सरसी ता फिर पाए, राती साचे नाए फिर तन पावे ता फिर पावे नारी जियो, रंग प्रीतम राती गुर के शब्द विचारी जियो, गुर शब्द विचारी ना प्यारी निव निव पगत करे, माया मोह जलाए प्रीतम रस में रंग करे, प्रभ साचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी, नानक साच वसी सोहागण फिर स्यो प्रीत प्यारी, फिर कर सो है नार जे फिर पावे जियो, झूठे वैन चवे काम ना आवे जियो, झूठ अलावे काम ना आवे ना फिर देखे नैनी, अवगुणियारी कंत विसारी छूटी विदन रैनी, गुर शब्द ना माने फाई फाथी सा तन मेल न पाए, नानक आपे आप पछाणे गुरमुख सहज समाए, तन सुहागण नार जिन पिर जानिया जियो, नाम बिना कूड़ियार कूड़ कमाणिया जियो, हर भगत सुहावी साचे भावी पाए भगत प्रभ राती, तिर रलियाला जो बन बाला तिस रावे रंग राती, गुर शब्द विगासी सोरा वासी फल पाया गुणकारी, नानक साच मिले वडियाई तिर कर सो है नारी। तनाश्री संत महला चौथा कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद, हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो, सतगुण मिले सुभाए सहज गुण गाई है जियो, गुण गाए विकसे सदा अंदिन जा आप साचे भावे, अंकार हो मैं तजे माया सहज नाम समावे, आप करता करे सोई आप दे ता पाई है, हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो, अंदर साचा निहो पूरे सतगुर जियो, हाँ तिस तेवी दिन रात मैं कदे ना विसरे जियो, कदे ना विसारी अन दिन समारी, जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता ए मन तृप्त है, गुरमुख अमृत पीवा, नगर करे ता सतगुर मेले अन दिन विवेक बुद्ध बिचरे, अंदर साचा ने हो पूरे सतगुरे, सत संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो, अन दिन रहे लिव लाए ता सहज समावे जियो, सहज समावे ता हर मन भावे सदा अतीत बैरागी, हलत पलत सोबा जग अंतर राम नाम लिव लागी, हरख सो दोहा ते मुक्ता जो प्रभ करे सो भावे, सत संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो, दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो, हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो, माया दुख मोया हो मैं रोया मेरी मेरी करत विहावे, जो प्रभ दे तिस चेते नाही अंत गया पछतावे, बिन नामे को साथ ना चाले पुत्र कलत्र माया तोया, दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो, कर कृपा लियो मिलाए महल हर पाया जियो, सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो, प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया, अन दिन जपत रहे दिन राती सहजे नाम ते आया, नामो नाम मिली।

ले जिस संग हर गावी है जियो, अमृत हर का नाम साध संग रावी है जियो, तज संग साधु इक आराधु जन्म मरण दुख नासे, तुर कर्म लिखिया साथ सिखिया कट्टी जम की फासे, तै परम नाथे छुटी दाथे जम पंथ मूल ना आवी है, दिनवंत नानक तार कृपा सदा हर गुण गावी है, नितरिया तार एक नाम निरंजनो जियो, तू दाता दातार सर्व दुख पंजनो जियो, दुख हरत करता सुख है स्वामी शरण साधु आया, संसार सागर महा बिखड़ा पल एक माही तराया, पूर रया सर्व थाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो, बिनवंत नानक सदा सिमरी सर्व दुख तय पंजनो, आप लिए लर लाए कृपा तारिया जियो, मोहे निर्गुण नीच अनाथ प्रभ अगम अतारिया जियो, दयाल सदा कृपाल स्वामी नीच थापन हारिया, जी जंत सब वक्त तेरे सगल तेरी सारिया, आप करता आप पुगता आप सगल विचारिया, बिनवंत नानक गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया, तेरा दर्श अपार नाम अमोले जियो, नित जपें तेरे दास पुरख अतोले जियो, संत रसन बूठा आप टूठा हर रसे से ही मातिया, गुर चरण लागे महा पागे सदा अंदिन जागया, सद सदा सिमर तब स्वामी सास सास गुण बोले, बिनवंत नानक।

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाए राव, हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं।

हेरी फिरे बदक जो कहो कवन विद की जय। सो दिन आवन लागा मात पिता पाई सुत बनता कहो को है काका रहाओ। जब लग जोत काया में बरते आपा पशु न बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो मन के परमा केवल नाम जपो रे प्राणी परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने ताको अचरज काहो जो जल जल में पैसना निकसे त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा जो तन कांसी तजे कबीरा रमैये कहान हो रा रहाओ। कहत कबीर सुनो रे लोई परम न पूलो कोई क्या कांसी क्या ऊखर मगहर राम हृदय जो होई।

माही राम नाम रख मन माही रहाओ सोबा राज बिदे बड़ियाई अंत न साहू संग सहाई पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया इनते कहो कम ने सुख पाया कहत कबीर अवर नहीं कामा हमरे मन तन राम को नामा राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई रहाओ बनता सुत दे ग्रह संपत सुखदाई इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई अजामल गज गनका

राम नाम छाड़ अमृत काहे बिखाई, तज परम कर्म विद निखेद राम नाम लेही, गुर प्रसाद।

आई, ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधिकाई, जिन त्रिन तर मुंड बलाए हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो बिनस जाए चूठी देही राव। मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई, बारह जोजन छत्र चले था देही गिरज न खाई, सर्व सोयन की लंका होती रावण से अधकाई, कहां भयो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई, दुर्वासा स्यों करत ठगौरी जादव ए फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुन गाए। दस बैरागन मोह बत्कीनी पंचों का मिट ना हो, सत्तर दो परे अमृत सर बिख को मार कडावो, पाछे बौर ना आवन पावो अमृत बाणी करते उचरो आत्म को समझावो रहाओ। बजर कुठार मोए है छीना कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक पगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो जो माया नहीं लिपटाओ, माया नाम गर

कारणा पतित पावन माधो बिरद तेरा तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी ले।

गर्भ परहारी चरण शरण नामा बल तिहारी। तनाश्री भगत रविदास जी की इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हम बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कवन अबोल रहाओ। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एक जन्म तुम्हारे लेके, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण बानी सुजस पूर राखो। मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो, रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यो जिन कटे, मैं तो मोल महंगी लई जी सके रहाओ। साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे, पाव बिन भगत नहीं होए तेरी। कह रविदास एक बेनती हर स्यो, पैज राखो राजा राम मेरी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन चूठे सगल पसारे। रहाओ नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अम्बुला, नाम तेरो चंदनो, कस जपे नाम ले तुझे कौचारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे।

तागा नाम फूल माला पार अठारे सगल जुठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर टोलारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे तनाश्री बाणी भगता की त्रिलोचन इको ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण निंदस काए फूली गवारी दुकृत सुकृत।

करा मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन्म दे मिलो सारंग पान रे कर्म कर कलंक मफी तसरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा कर्म कर अरुण पिंगलारी अनित पातिक हरता त्रिभुवन नाचरी तीरथ तीरथ प्रमता लहे न पारी कर्म कर कपाल मफी तसरी अमृत सस्य तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सुनागर नदी के नाथं कर्म कर खार मफी तसरी दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण बन फल बिसल आन तोखी ले हरी कर्म कर कछोटी मफी तसरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोह जापी अले राम चे नामं बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन तूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा।

रामानंद जाने, पूरन परमानंद बखाने, मदन मूरत पैतार गोविंदे, सैन पणे पज परमानंदे। पीपा कायो देवा कायो देवल, कायो जंगम जाति, कायो तूप दीप नहीं वेदा, कायो पूजो पाती, काया बोखंड खोजते नव निध पाई, ना कछ आयबो ना कछ जायबो, राम की दुहाई रहाओ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत् है, सतगुरु होए लखावे। कन्ना गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी पगत करंते, तिनके काज सवारता रहाओ। दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया साधननी का, अनाज मंगो सबसी का, गौ पैस मंगो लावेरी, इक साजन तुरी चंगेरी, कर की गीहन चंगी, जन तन्ना ले वे मंगी। जैतसरी महला चौथा, कर पहला चौप दे, इकोंकार सतगुर प्रसाद। मेरे ही अरे रतन नाम हर बसया, गुरहास तरयो मेरे माथा, जन्म जन्म के किलबिक दुख उतरे, गुरु नाम दियो रिन लाथा। मेरे मन पज राम नाम सब अर्था, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ। बिन गुर मूर पए है मन मुख, ते मोह माया नित फाखा, तिन साधु चरण न सेवे कबहू, तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफल्यो जन्म सनाता। मोको की जय दास दास दासन को, हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले को गुर अंचल दीजै, जन नानक चले मिलंथा। जैतसरी मैला चौथा, हीरा लाल अमोलक है पारी, बिन गाहक मीका खाका। रतन गाहक गुर साधु देखियो, तब रतन बिकानो लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मिलायो गुर साधु, गुर मिले हीर पराखा रहाओ। मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा, तिन कर रतन न लाखा, ते उजड़ परम मोए।

सदगुर मिल साधु पाखान हरयो मन मूड़ा जैसरी मैला चौथा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। हर हर सिमरो अगम अपारा जित सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलावो गुर मिले सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे हर हर नाम रखो उधारे। हर हर अमृत बचन सुनावो गुर मिले प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधो प्राणा मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करो गुर मेलो पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता हर कै रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मेलो गुरु नानक नाम सुखोई राम। जैसरी महला चौथा। हर हर नाम जपाहा गुरमुख नाम सदा ले लाहा। हर हर भगत दृढ़ावो हर हर नाम उमाहा राम। हर हर नाम दयाल त्याहा हर के रंग सदा गुण गाहा। हर हर हर जस कुमर पावो मिल सत्संग उमाहा राम। आओ सखी हर मेल मिलाहा सुन हर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मेलो गुर मिलिए हर ओ महाराम। कर कीरत जस अगम अथाहा खिन खिन राम नाम गावाहा। मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते हर नानक भगत ओ महाराम। जैसरी महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा मन राम नाम पीना ले लाहा। खिन खिन भगत करे दिन राती गुरमत भगत ओ महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा मन तन जीत शब्द ले लाहा। गुरमत पंच दूत वस आवे मन तन हर ओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा हर गुण गाए सदा ले लाहा। दीन दयाल कृपा करमा दो हर हर नाम ओ महाराम। जप जगदीश जपो मन महा हर हर जगन्नाथ जग लाहा। तन तन वडे ठाकुर प्रभ मेरे जप नानक भगत ओ महाराम। जैसरी महला चौथा। आपे जोगी जुगत जुगाहा आपे निरपौ ताड़ी लाहा। आपे ही आप वरते आपे नाम ओ महाराम। आपे दीप लो दीपाहा आपे सतगुर समुंद मथाहा। आपे मथ मथ तत कढ़ाए जप नाम रतन ओ महाराम। सखी मिलो मिल गुण गावाहा गुरमुख नाम जपो हर लाहा। हर हर भगत दृढ़ी मन पाई हर हर नाम ओ महाराम। आपे वड दाना वड साहा गुरमुख पूंजी नाम विसाहा। हर हर दात करो प्रभ पावे गुण नानक नाम ओ महाराम। जैसरी महला चौथा। मिल सत्संगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा। हर हर कृपा तार मधुसूदन मिल सत्संग उमाहाराम। हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा कर कृपा सतगुरु मिलाहा। गुण गावे गुण बोले बाणी हर गुण जप उमाहाराम। सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा हर हर नाम ना पुजे पुजाहा। हर हर अतुल तोल अत पारी गुरमत जप ओ महाराम। सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किलविक मैल पाप सोवाहा। दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम।

गुरुप्रसाद। कोई जाने कौन इहां जगमीत, जिस होए कृपाल सोई विध बूझै, ताकि निर्मल रीत रहाओ, मात पिता बनता सुत बंदत, इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सहाय, मुक्त माल कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बिहानी अवधै, ता मैं संतोख न पाया। हस्त रथ अश्व पवन तेज तनी, पूमन चतरांगा, संग न चालियो इनमें कछुए, ऊंट सिदायो नांगा, हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाय, नानक की हां सुख आगे मुख उजल, संग संतन कह पाये। जैत सरी महला पंजवा, करती जा दुपदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद देहो संदेश रो कहियो प्रिय कहियो, विषम पई मैं बहु विध सुनते, कहो सुहागन सहियो रहाओ, को कह तो सब बाहर बाहर, को कह तो सब महियो, वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए, सुहागन सांत बुझियो, सर्ब निवासी कट कट वासी, लेप नहीं अल्पइयो, नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बचहियो। जैत सरी महला पंजवा, तीरो सुन तीरो प्रभु को रहाओ, जी प्राण मन तन सब अर्पो, नीरो पेश प्रभु को नीरो, बेकुमार बेअंत बड़ दाता, मन है गहीरो पेख प्रभु को, जो चाहो सोई सोई पावो, आशा मनसा पूरो जप प्रभ को, गुर प्रसाद नानक मन वसिया, दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभ को। जैत सरी महला पंजवा, लोड़िंदड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, कट कट तिसे बसेरा रहाओ, सुख अरादन दुख अरादन, बिसरे न काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा, बिनसे परम अंधेरा, थान सनंतर सबनी जाई, जो दिसे सो तेरा, संत संग पावे जो नानक, तिस बहुर ना होई है फेरा। जैत सरी महला पंजवा, काल चौथा दो पदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग, तजी सियानप चिंत विसारी, अहंक छोड्यो है त्याग रहाओ, जो देखो तौ सगल मोय मोहियो, तौ शरण पर्यो गुर पाग, कर कृपा टहल हर लायो, तौ जम छोड़ी मोरी लाग, तरयो सागर पावक को जाओ, संत पेटे वड पाग, जन नानक सर्व सुख पाए, मोरो हर चरनी चित लाग। जैत सरी महला पंजवा, मन में सतगुरु ध्यान तरा, दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा, प्रभ जियो मया करा रहाओ, ताल जाल अर महा जंजाला, छुटके जमे डरा, आयो दुख हरण शरण करुणा पत, गयो चरण आसरा, नाव रूप पयो साध संग, पवनिद पार परा, अपियो पियो गत थियो परमा, कहो नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवा, जाको पय गोविंद सहाय, सुख सहज आनंद सगल स्यों, वाको ब्याज न काई रहाओ, दीसे सब संग रहे अलेपा,
नै व्यापे उन माई एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुध पाई। दया मया कृपा ठाकुर की सेई संत सुभाई तिनके संग नानक निस्तरिय जिन रस रस हर गुण गाई। जैत श्री महला पंजवा। गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे में दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल आनूप। अनेक बार करो ते बंदन मने चरावो तूप हार परयो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गई तुम्हारी लूक। काड ले हो नानक अपने को संसार पावक के कूप। जय श्री महला पंजवा। कोई जन हर स्यों दे वै जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचे सुधा संजोर या रस में मगन होत कृपा ते महा बिखिया ते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन

पहला पंजवा चात्रिक चितवत बरसत में है कृपा सिंध करुणा प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूरन पेख देह आन उपाव ना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हम अनाथ नाथ

प्राण कर कृपा साधु संग पेटे पूरन पुरख सुजान रहाओ प्रेम ठगोरी जिनको पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कह न जाई कुदरत कवन हमारी लाए लाए लड़दास जन अपने उदरे उदरन हारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जैत श्री मैला पंजवा आए अनक जन्म प्रम सरणी उदर देह अंध कूप ते लावो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बिकम नदी जाए तरणी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन में तरणी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग अपरणी जैत श्री मैला पंजवा हर जन सिमरो हिरदे राम हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम रहाओ कोट बिगन बिनसे हर सेवा नेचल गोविंद काम भगवंत भगत को पौ किछ नाही आदर देवत जाम ताज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहो।

फूल्यो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ। समझ न परी दिखे रस रचियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जानियो नाहिन, बन खोजन कौता।

जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जैसरी महला नावा हरजू

महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा पै मर्दे को बिसरत नाहिन ते चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण देह दिस को उठ धाया काट ही पीतर बसे निरंजन ताको मर्म न पाया। नाहन गुण नाहन कछ जप तप।

मन रे साचा गहो विचारा, राम नाम बिन मिथ्या मानो, सगरो ए संसारा रहाओ। जाको जोगी खोज तुहारे, पायो नाए ते पारा, सो स्वामी तुम निकट पछानो, रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जग तुम्हें हर को, कबहू नाए संभारा। नानक शरण पर्यो जग बंदन, राखो बिरद।

जय प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चात्रिक जिवै तिसंतिया जन नानक गुरु पूरा।

बधाई। माँ मंगल रहस थिया, फिर दयाल सद नव रंगिया। वड पाग पाया गुर मिलाया, साध के सतसंगिया। आशा मनसा सगल पूरी, प्रे अंक अंक मिलाई। बिनवंत नानक।

श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत ज्यो जानो त्यो राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूलिय मोह मगन विकराल माया को प्रसादी कूलिय लूक करक विकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया श्लोक नृत न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ चंत दूसर नाही ठाओ का पह जाइए आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याए त्याए सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाइए तज मान मोह विकार दूजा एक स्यो लिवलाइए अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाइए बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाइए श्लोक रे मन पासो त्याइए सब विद जा के हाथ राम नाम तन संचिए नानक निभे साथ संत साथियेरा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल मैयल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुणता के क्या गनी पज शरण स्वामी सुखे गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख समाया संत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरुमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किलबिक बुझी तप्त अगान्या गह पुजाली ने दया की ने अपने कर मान्या ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जैतरी छंत मैला पंजवा पाधानो संसार गर्व अटिया करते पाप अनेक माया रंग रटिया लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीतना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता ए कर्त बिहावे पुज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूते डिठिया किर्त कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया उद्यम करे अनेक हर नाम न गावही पर मैं जोन असंख मर जन में आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु न आवे बीज बोवस पोग पोगे किया अपना पावे रतन जन्म हार अंत जुए प्रभु आप न पावही बिनवंत नानक पर मैं परमाए खिन एक टिकन न पावही जोगन गया बतीत जरमल बैठिया कर कंपे सिर डोल नैन न डीठिया नै नैन दीस है बिन भजन ईस है छोड़ माया चालिया कया ना माने सिर खाक छाने जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूरन नै निमख मन में वूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सुबार ना चूठिया चरण कमल शरणाए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे पजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारे।

मन वसंदड़ो सच सौ नानके हबे दुखड़े उलाए पौड़ी कोट अघा सब नास होए सिमरत हर नाम मन चिंदे।

कदाचन सिमरंत नानक तेजंत विस्तात्र में मुझे अडंबर हब क्यों मंज मोहब्बत ने।

छतर चमर तक आसनं रटंत मूड अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हबरंग।

काज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर संग।

नच भोग रश्मिस्तं नच मिस्तं सुख माया मिस्तं साध संग हर नानके दात मिस्तं प्रभ दर्शनं लगना सोने मन मजाहू रतिया विधड़े सच थोक नानक मिठड़ा सोधनी पौड़ी।

संता संग उधार सगला दुख लथास। श्लोक भावी उदोत करणं हर रमणं।

जित मिलंदड़ो मां फिरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूरत भला संजोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर ध्याय कै मनीष पुजाई वडे भाग।

रह ना सके मन मेरा, मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभु गुर मेले, बहुर ना पवजल फेरा।

ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंगियानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, निरपो होए रहे लिव एकै नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहां ब्यापै जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अर जारी। नव खंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी, सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आयो रे मन दह विस्तायो, माया मगन स्वाद लोभ मोयो, तिन प्रभ आप भुलायो। रहाओ हर कथा हर जस साज संगत स्यो, एक मोहत ना ए मन लायो। बिकस्यो पेख रंग कुसम को पर ग्रह जोहन आ जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो, ने सतपुरख मनायो। तावत को तावे बहु पाती ज्यो तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान न कियो, एक निमख न कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन तोख्यो, ने बूझियो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए, नहीं संत गुर सेव ते आयो। पंच दूत रज संगत गोष्ट मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हर भगत वचन सुन आयो। नानक पाग परयो हर पाछे रात लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा मानुक बिन बूझे बिरथा आया, अनक साज सिगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया। रहाओ ताए ताए कृपन श्रम कीनो, एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज ना आया। कर अपरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया, संग न पायो

जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया, साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवा, कृपा निध बसो हृदय हर नीत, तैसी बुद्ध करो परगासा, लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ। दास तुम्हारे की पावो दूरा, मस्तक ले ले लावो, महापति ते होत पुनीता, हर कीर्तन गुन गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो, कियो तुआरो पावो, जो तू दे तही ए तृप्त है, आन न कथमु तावो। सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी, सगल रेण होए रही है, साधु संगत होए प्राप्त, ता प्रभु अपना लही है। सदा सदा हम छोरे तुमरे, तू प्रभु हमरो मीरा, नानक बारक तुम मात पिता, मुख नाम तुम्हारो खीरा। टोडी महला पंजवा, कर दूजा दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद, मांगो दान ठाकुर नाम, अवर कछु मेरे संग न चाले, मिले कृपा गुण गाम रहाओ। राज माल अनेक भोग रस, सगल तरवर की छाम, पाए पाए बहुविध को तावे, सगल निरारथ काम। बिन गोविंद अवर जे चाहो, दीसे सगल बात है काम, कहो नानक संत रेन मांगो, मेरो मन पावे विश्राम। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी को नाम मने साधारे, जी प्राण सुख इस मन को, बर्तन ए हमारे रहाओ। नाम जात नाम मेरी तप है, नाम मेरे परवार है, नाम सखाई सदा मेरे संग, हर नाम मोको निस्तार है। विखे विलास कहियत बहुत तेरे, चलत ना कछु संगार है।

योग। मुख उजल मन निर्मल होई है, तेरो रहे इहा उहा लोग। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग। छोड़ आपत बाद अंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग। कहो नानक एक बिन दूजा, हवर न करने जोग। तोड़ी महला पंजवा। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोबा। चिंता लाए हमारी, रहाओ हवर न सूजे दूजी ठार। हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे। हम निर्गुण लेहो बारी, सद बख्शिंद सदा मेहरवाना। सबना दे अधारी, नानक दा संत पाछे पर्यो। राख लेहो ए बारी, टोडी महला पंजवा। रसना गुण गोपाल निद गायन, शांत सहज रहस मन उपजो। सगले दुख पलाए रहाओ, जो मांगे सोई सोई पावे। सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहु ते छूटे। पवजल जगत तरायण, खोजत खोजत तत विचार्यो। दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे। जे नानक सदा सिमर नारायण, टोडी महला पंजवा। निंदक गुर कृपा ते हाट्यो, पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला। शिव के बाण सिर काट्यो, रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके। सच का पंथा थाट्यो, खात खर्चत किच निखुटत नाही। राम रतन तन खाट्यो, पसमा पूत हुआ खिन पीतर। अपना किया पाया, आगम निगम कह जन नानक। सब देखे लोग सबाया, टोडी महला पंजवा। किरपन तन मन किलविख भरे, साध संग भजन कर स्वामी। तातन को इक हरे, रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत। थाम न जाही करे, जिसका बोहित तिस आरादे। खोटे संग खरे, गली सैल उठावत चाहे। ओए उहां ही है तरे, जोर सकत नानक किछ नाही। प्रभ राखो शरण परे, टोडी महला पंजवा। हर के चरण कमल मन त्याओ, काड कुठार पित बात हंता। औखद हर को नाओ, रहाओ तीने ताप निवारण हारा। दुखंता सुख रास, ताको बिघन न को लागे। जाकी प्रभ आगे अरदास, संत प्रसाद वैद नारायण। करण कारण प्रभ एक, बाल बुद्ध पूरन सुखदाता। नानक हर हर टेक, टोडी महला पंजवा। हर हर नाम सदा सद जाप, पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी। वसदी की नी आप, रहाओ जिसके से फिर तिन्ही समाले। बिन से सोग संताप, हाथ दे राखे जन अपने। हर होए माई बाप, जी जंत होए मेहरवाना। दया तारी हर नाथ, नानक शरण परे दुख पंजन। जाका बड़ प्रताप, टोडी महला पंजवा। स्वामी शरण परे ओ दरबारे, कोट अपराध खंडन के दाते। तुझ बिन कौन उधारे, रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे। सर्व अर्थ विचारे, साध संग परम गत पाये। माया रत बंधारे, चरण कमल संग प्रीत मन लागी। सुरजन मिले प्यारे, नानक आनंद करे हर जप जप।

कछु ना थोरी, तेरो नहीं सो जानी मोरी। रहाओ आपन राम न कीनो खिनुआ, जो प्राई सो अपनी मनुआ। नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहु चित लायो। सो संचयो जित ऊख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो। काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया। टोडी महला पंजवा, हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंहान न करी, रहाओ वड़े पाग गुर अपना पायो। गुर मो को हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप व्रत नेमा। हर हर त्याए कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया। महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया। सब किछ तिसके गृह में आया, टोडी महला पंजवा। कर चौथा दो पदे ओंकार सतगुर प्रसाद।

देखा गुरमिल परम गवाया है। ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुरमाते ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा। गर्भ गैलड़ो मूडड़ो ही ओरे हियो महराज री मायो दीहर न्याई मोहे।

पागड़ो पाए संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले प्राचित मिट्यो रे। जाको लहनो महराज री गाठड़ियो, जन नानक गरबा।

ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहंग रोग ए तन से सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर छोर बिख्याते, गुरु को शब्द मेरा ही रह दीन, रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाट बीच खोए, आनंद चिता हरखे पतीन, तिसी को गृह सोई प्रभ नानक, सो ठाकर तिसी को तीन। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्रीत, एही कर्म तरम जप एही, राम नाम निर्मल है रीत रहाओ। प्राण आधार जीवन तन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीत, बाट काट तो सासंग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पे मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत, सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमक ही रहते, अपने भगत को पूरन दान रहाओ। खोवो परम राख मेरे प्रीतम, अंतर जामी सुगड़ सुजान, कोट राज नाम तन मेरे, अमृत दृष्ट तारो प्रभ मान। आठ पैर रसना गुण गावे, जसपुर अगावे समरथ कान, तेरी शरण जियन के दाते, सदा सदा नानक कुर्बान। टोडी महला पंजवा, प्रभ तेरे पग की तूर, दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ। दह विस रव रया जस तुमरा, अंतर जामी सदा हजूर, जो तुमरा जस गावे करते, से जन कभो न मरते चूर। कंद बंद बिन से माया के, साधु संगत मिटे बिसूर, सुख संपत भोग इस

दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ। सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विख नास। पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास। सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पा

सब देता रिद्दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पूम बीजन सो खावन बिस्मन बिस्म पै बिस्मादा आनन बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। होडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियान बहु चतुराई दो कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानस देखा ए उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पे मल। तोड़ी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वडे पाग देवे परमेश्वर कोट फला दर्शन गुरु डीठे राव गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिनते मद पीठे अस्थिर पै सात रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब चूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे। तोड़ी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद होवे दिन राती अंकुर पलो हमारा रहाओ गुरपूरा पेट्यो बड़ पागी जाको अंत न पारा वारा कर गए काढ़ लियो जन अपना दिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुर न संकट द्वारा नानक सर

चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख, नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ न दुख। टोडी महला पंजवा, हर हर चरण हृदय उधार, सिमर स्वामी सतगुरु अपना, कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर, हर कीरत तत् विचारे, गुण गावत अतुल सुख पाया, ठाकुर अगम अपारे। जो जन पारगम अपने कीने, तिनका बहुर कछ ना विचारे, नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मजारे। टोडी महला नावा।

पासों रुच उपजाई, दीन बंद सुमरियो नहीं कभू, होत जो संग सहाय। मगन रहो माया में निस दिन, छुटी न मन की काई, कह नानक अब नाहीं अनत गत, बिन हर की शरणाई।

कोई बोले निर्वाण, कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर, कांगरे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिने छपायो, रहाओ पंडित होए के देर बखाने, मूरख नाम जो राम जाने, कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही, पतित पवित भय राम कहत ही, रहाओ राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रहे काहो को तीर्थ जाई, पनक नाम देव

कुम्हार के पर हांडी अच्छे है, राजा के कर सांडी दो, बामन के कर रांडी अच्छे है, रांडी सांडी हांडी दो, बाणे के कर हींग अच्छे, पैसर माथे सींग गो, देवल मदे लीग अच्छे है, लीग सीग हींग गो, तेली के कर तेल अच्छे, जंगल मदे देल गो, माली के कर केल अच्छे, केल बेल तेल गो, संता मदे गोविंद अच्छे, गोकल मदे श्याम गो, नाने मदे राम अच्छे, राम श्याम गोविंद गो। राग बैराड़ी महला चौथा।

सारा कोट कोटन करके पाप सब खो गए हर पवजल पार उतारा रहाओ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निरपो निर्वैर निरंकारा हर नित्य बस्त कछ नगर न आवे हर लादा गुरु विचारा हर आपे साव सराफ रतन हीरा हर आप किया पासारा

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाए। राज तुलंग महला पहला कर पहला

तन माया पाया प्यारे लीतना लब रंगाए मेरा कंत न भावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन से जाए जाए हो कुर्बाने जाओ मेरवाना हो कुर्बाने जाओ हो कुर्बाने जाओ सुना के लैन जो तेरा नाओ लैन जो तेरा

आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामन कंते भावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला प्यामड़िए मानरा का

जोड़ी मंगले दान लालो शर्म तरम दो छपलोए कूड़ सिरे प्रधान वे लालो काजिया बामना सीजल थकी अगर पड़े शैतान वे लालो मुसलमानिया पढ़े कितेबा कष्ट में करे खुदाए वे लालो जात सनाती हो हिंदवानिया एदी लेखे लाए वे लालो खून के सोयले गावे नानक रत का कुंगू पाए वे लालो साहिब के गुरु नानक गावे माखपुरी विच आत्म सोला जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखे वक्त अकेला सच्चा सो साहिब सच तपास सचना न्याओ करे गुम सोला काया कपड़ टुक टुक होसी हिंदुस्तान समाल सी बोला आन अड़त्रे जान सतानवे होर भी उसकी मर्द का

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साहेब साचा केले सब हर तनी साला है सच सब ऊपर हर तनी जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ पौन पानी धरती आकाश कर मंदिर हर बनी विच वर्ते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना केते हर नामा खिन में दिन सह सब झूठ मेरे मन के आए रामा रहाओ सावेला चित ना आवे जित आए चंकक काल ग्रस है किस नानक ले छाए जिस कृपा कर हृदय वसै तिलंग महला पंजवा कर कहला।

तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। सब ऊपर पार ब्रह्म दा तार, तेरी टेक तेरा आधार। रहाओ है तू होनहार, अगम आगाध ऊंच अपार। जो तुझ से है तिन पौ दुख नाही, गुर प्रसाद नान गुण गा है। जो दिन सो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप। सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक करम प्राप्त होए। जिन जपया किसको बलिहार, किसके संग तरह संसार। कौन नानक प्राप्त।

सदा अचरज तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे मेहदीप खुद कसम खलक जहान अल्लाह मेहरवान खुदाए जिन सुरैन जे खुद अरादे सो क्यों दोजिक जाए अजराइल यार।

जब आवे जीवारी। कंस लिया सुहागनी मैं ते वदनी एहे, से गुण मुझे न आवनी कै जी दोष करे। जिनी सखी सौरावया तिन पूछोगी जाए, पाए लगो बेनती करो लियोगी पंथ बताए। हुकम पछाने नानका तो चंदन लावे, गुण कामन कामन करे तो प्यारे को पावे। जो दिल मिलिया सो मिल रहा, मिलिया तो यारे सोई। जे बो तेरा लोची है बाकी मेल न होई। तात मिले कुन तात को, लिव लिव को तावे। गुर पर साधी जानिए तो अन को पावे। पानावारी हुए कर खर सार न जाने, रसिया होवे मुस्का तब फूल पछाने। अप्यो पीवे जो

सद बलिहारी। हर हर तेरा नाम है दुख में तनहारा, गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा। जो हर नाम ते आएंगे ते जन परवाना, तिन विचो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। सा हर तेरी उस्तत है जो हर प्रभु पावे, जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे। जिना हर से की पिरहड़ी बिना जीव प्रभ नाले, कोई जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले। जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया, कोई आप छुटे परवार स्यों सब जग छाया। गुर प्यारे हर सेविया

जाग लिहो रे मना जाग लिहो कहां गाफिल सोया जो तने उपजिया संग ही सो भी संग न होया रहा माप पिता सुत बंग जन हित जासियों की ना जियो छूटे हो जब देहते दार अगन में दीना जीवत लो व्योहार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाय लै सब सुखन समानो तिलंग महला नाव हर जस रे मना गाय लै जो संगी है तेरो अवसर भी त्यो जात है कहो मान लै मेरो रहा संपत रख तन राज्यों अपने हो लगायो काल पास जब गल परी

नानक कहत पुकार दो प्रभु सरनाई। तिलंग बाणी भगतां की कबीर जी इको अंकार सतगुर प्रसाद। देव कतेब उत्तरा पाई दिल का फिक्र न जाए, तुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज ना सिर परेशानी माहे, ते जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहे। रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बताहे। हक सच खालक खलक न्याने श्याम मूरत नाहे। आसमान न्याने लहंग दरिया गुसल करदन बूद, कर फकर दाइम लाए चश्मे जह तहां मौजूद। अल्लाह पाक पाक है सच करो जे

क्या करी नामे के स्वामी बसंत तू हरे। हल्ले यारा खुशखबरी, बल बल जाओ हो बल बल जाओ, नीति तेरी बिगारी आले तेरा नाव रहाओ। कुजा आमद कुजा रफ्ती।

चंदी हजार आलम एकल खाना, हम सुनी पापसा सामले बरना। अस्पत गजपत नर नरिंद, नाम के स्वामी मीर मुकंद।

अंतर वसे ना बाहर जाए, अमृत शोध काहे बिख खाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चाकर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे, बांधन बांधिया सब जग पवे, सेवा करे सोचा कर होए, जल तल मैयल रव रहा सो

कोठे मंडप माड़िया पासो चितवियां कठिया तम नाम नी विखो सकनिया बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन कुट कुट जी आखावने बग्गे ना कहियन सिमल रुख शरीर में मैं जन

तेरा एक नाम मजीठड़ा, रत्ता मेरा चोला, सग रंग तोला, राव साजन चले प्यारिया, क्यों मेला होई, जे गुण होवे गंठड़िया, मेले दा सोई, मिलिया होए ना विछड़े, जे मिलिया होई, आवा गुण निवारिया, है साचा सोई, हों मैं मार निवारिया, सीता है चोला, गुरबचनी फल पाया, सहते अमृत बोला, नानक तह कहे लियो, सौ खरा प्यारा, हम सह तेरिया दासियां, साचा कसम हमारा, सुही महला पहला, जिनको पांडे पाओ तिना सवार सी, सुखी करें पसाओ दुख विसार सी, सहसा मूले नाने सर प्रकार सी, तिना मिलिया गुर आए जिनको लिखिया, अमृत हर का नाव देवे दीखिया, चाले सतगुर पाए पवे ना सीखिया, जा को महल हजूर दूजे निवे किस, दर दरवाई नाहे मूले पुछ तिस, छुटे ताके बोल साहिब नगर जिस, कल्ले आए आप जिस नाही दूजा मते कोए, ताहे उसारे साज जाने सब सोए, नाव नानक।

पांडा हच्छा सोए ज्योतिष पावसी, पांडा अतमलीन तोता हच्छा न होए सी, गुरु द्वारे होए सो जी पाए सी, एक द्वारे तोए हच्छा होए सी, मेले हच्छे का विचार आप वरताए सी, मत को जाने जाए अग्गे पाए सी, जे ही कर्म कमाए तेहा होए सी, अमृत हर का नाम आप वरताए सी, चलिया पक्षों जन्म सवार वाजा वाए सी, मानस क्या विचारा ते लोग सुनाए सी, नानक आप

जोग ना सुनसा, जोग ना दंडे, जोग ना पसंद कराये, जोग ना मुंडी मूल मुडाये, जोग ना सुनी वाये, अंजन माह निरंजन रहिये, जोग जुगत तुर पाये, गली जोग ना होई, एक दृष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिये सोई, रहाओ, जोग ना बाहर मरी मसानी, जोग ना ताड़ी लाये, जोग ना देश दिशंकर पवे, जोग ना तीर्थ नाये, अंजन माही निरंजन रहिये, जोग जुगत के उपाये, सतगुरु पीते का कैसा टूटे, तावत वर्ज रहाये, निजर झरे सहज तुन लागे, कर ही परचा पाये, अंजन माही निरंजन रहिये, जोग जुगत के उपाये, नानक जीव किया मर रहिये, ऐसा जोग कमाये, वाजे बाजों सुजी वाजे तो निरपो पद पाये, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाये, सुई महला पहला कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन शराब बुलावा, कौन गुरु कह कह दीखिया लेवा, कह कह मुल करावा, मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल तल मैया।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन प्रबोधिया, हर किया रस गट के रहाओ। सब संगत उत्तम सत गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मेलो सत संगत, हम तोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाठी किस किस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम देखियो सुर गुर के, जन नानक नाम पढ़ो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुई महला चौथा, हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम, सब दिन से दाल दलगा, तौ जन्म मरना मेट्यो गुर सबदी, हर अस्थिर सेर सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अतिरगा, मैं मन तन अर्प करो गुर आगे, सिर बेच लियो मूल महंगा रहाओ। नरपत राजे रंग रसमान, दिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, सिर पछताने हाथ फलगा। हर रात रात जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रत पलगा, दर्शन संत जो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समर्थ पुरख वडे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटो सद तुमगा। सुही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ है रंग, गुर पुख है हर रंग चालिया, फिर गौर न होवी पंग, मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर पुख है हर उपदेशिया, हर के त्यारा निसंग रहाओ। मुंड आनी मन मुखी, फिर आमन जाना अंग, हर प्रभ चित न आयो, मन दूजा पाओ सैलंग। हम नैल परे दो चारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाखे किलित पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सत संगत मेलो संग, निर संगत हर रंग पाया, जन नानक मंतन रंग। सुही महला चौथा, हर हर करें नित कपट कमावे, हृदय शुद्ध न हुई, अंगिन कर्म करें वो तेरे, सुखने सुख न होई। ज्ञानी गुरबिन भगत न होई, कोरे रंग कदे न चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संजम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पाए खुआई। बाहर देख बहुत चतुराई, मनवा जय विस्तावे, होमे ब्या प्या सबद न चीने, फिर जूनी आवे। नानक नदर करे सो गूंजे, सोजन नाम ते आए, गुर प्रसादी एको बूजे, एक समाए समाए। सुही महला चौथा, कर दूजा इक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गुरमत नगरी खोज खोजाए, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर शांत बसाई, कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर, गुर मिले सब दुख गवाई रहाओ। हर गुण गावा जीवा मेरी माई, सतगुरु दयाल गुण नाम दृढ़ाई, हो हर प्रभु प्यारा टूट टुड़ाई, सत संगत मिल हर रस

नदर करे ता सतगुरु पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। तू ही महला चौथा, जेवा हर रस रही अगाए, गुरमुख पीवे सह समाए। हर रस जन चाखो जे पाए, सौकत अनत साध लो भाई। रहाओ गुरमत रस राखो उरधार, हर रस राते रंग मुरार। मनमुख हर रस चाख्या ना जाए, हों मैं करे बहुती मिले सजाए। नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण।

नीच जात हर गत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो विदरदासी सुत किसन उतरिया कर जिस जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन पाए, जित कैसा दुख पूख सब ले जाए। रहाओ रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमक इक गाए। पतित जात उत्तम भया, चार वरन पे पग आए। नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोक छीपा कह बुलाए। खत्री ब्राह्मण किठ दे छोड़े, हर नाम देओ लिया मुख लाए। जितने भगत हर सेवका, मुख अखर तीरथ तिन तिलक कढ़ाए। जन नानक तिन को अंगिन परसे, जे कृपा करे हर राय। सुई महला चौथा, तिनी अंतर हर आराध्या, जिनको तुर लिखिया लिख लिलारा। तिनकी वकीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा। हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए, हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा। रहाओ तुर भगत जना को बख्शिया, हर अमृत भगत भंडारा। मूर्ख हो वै तो उनकी रीस करे, तिस हल्त पलत मुहकारा। से भगत से सेवका, जिना हर नाम प्यारा। तिनकी सेवा से हर पाई है, सिर हिंदक कै पवे चारा। जिस तार विरती सोई जाने, जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा। चौपीड़ी आग जुगाद बकीली, किने न पायो हर सेवक पाए निस्तारा। सुही महला चौथा, जिते हर आराधी है, तिथे हर मित सहाय। गुर कृपा ते हर मन वसे, होरत विद लया ना जाई। हर तन संचिय पाई, जे हल्त पलत हर होए सखाई। रहाओ सत्संगति संग हर तन खटिय, होर थे होरत उपाय हर तन किते न पाई। हर रत्ने का वापारिया, हर रतन तन विहाजे। कच्चे के वापारिय वात, हर तन लया न जाई। हर तन रतन जरे हर मानक, हर तने नाल अमृत वेले वत्ते। हर पगति हर लिवलाई, हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजिया। पगत खाए खर्च रहे निकुटे नाही, हल्त पलत हर तने की पगता को मिली वड्याई। हर तन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा, ए हर तन अग्नि तस्तर है पानी है। जमदूत है किसे का गवाया न जाई, हर तन को उचका नेड़ न आवई। जम जा गाती दंड न लगाई, साक्षी पाप करके बिख्या तन संचया। तिना एक विख नाल न जाई, हल्के विस्थाक दुहेले पर हथों छुड़ गया। अग्गे पलत साकत हर दरगे टोई न पाई। इस हर तन का साहो हर आप है, संतो जिसनो दे तो हर तन लग चलाई। इस हर तने का तोता कभी न आवई, जन नानक को गुर सो जी पाई। सुही महला चौथा, जिसनो हर सो प्रसन्न होए, सो हर गुणा रवे सो भगत को प्रमाण। किसकी महिमा क्या वर्णी है, जिसके हृदय वसिया हर पुरुष भगवान। गोविंद गुण गाये।

जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध श्रेम दे सो नेफल सब अज्ञान जिसनो प्रतीत होवे इसका गावया थाए पवे सो पावे दरगे मान जो बिन प्रतीति

मैं रोग सब जगत व्यापिया तिनको जन्म मरण दुख पारी गुरु प्रसादी को विरला छूटे किस जन को हों बलिहारी जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारो नानक आपे।

रखी है। मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नाही जे किस कर हम साके, ज्यो पावे तिवे बस रहाओ। सब जियो पिंड दिया तुद आपे, तुद आपे कारे लाया, जिहा तू हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे, जिहा तू तुर लिख पाया। पंच तत्व कर तुद शिष्ट सब काजी, कोई सेवा करो जे किसीता होवे, इक ना सतगुर मेल तू बुझावे, इक मनमुख करे सिरोवे। हर की वडियाई हों आख ना साका, हों मूरख मुग

असल मैयल रे आपरपूर, निकट वसे नाही प्रभ दूर। लोक पतिया रे कछु न पाई है, साथ लगे ताहो मैं जाइए। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर तिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम से आए। दो कर जोर करो अरदास, खुद पावे तान है रास। कर कृपा अपनी पक्षि लाए, जन नानक प्रभ सदा से आए। सूही महला पंजवा। तन स्वादन जो प्रभु पछाने, माने हुक्म तजे अभिमाने। तैसो राती रलिया माने, सुन सकिए प्रभ मिलन निशानी। मन तन अर्प तज लाज लोकानी, रहाओ सकी सहेली को समझावे। सोई कमावे जो प्रभ पावे, सास सुहागण अंक समावे। गर्भ गहेली महल ना पावे, फिर पछतावे जब रैन बिहावे। कर्महीन मनमुख दुख पावे, बिनो करी जे जाना दूर। प्रभ अविनाशी रहा परपूर, जन नानक गावे देख दूर। सुही महला पंजवा। गृहवास गुर की ना हो कर किनार, दस दासी कर दीनी पतार। सगल सामग्री में कर की जोड़ी, आस प्यासी तिर को लोड़ी। कौन कहा गुण कंत प्यारे, सुगर स्वरूप दयाल मुरारे। रहाओ सत सिगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम कंबोल मुख खाया। कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जा फिर कर आवे। गुण कामन कर कंत

प्रीतम मेरा। प्रगटिया सूर जोत उजियारा, सेज विछाई सरद अपारा, नव रंग लाल सेज रावण आया, जन नानक फिर तन मिल सुख पाया। सुही महला पंजवा, उमक्यो ही मिलन प्रवताई, खोज चरियो देखो प्रह जाई, सुन सदेश रो प्रह ग्रह सेज विछाई, प्रम प्रम आयो तो नदर न पाई, किन विद हीरो तीरे निमानो, मिल साजन हो तुझ कुर्बानो। रहाओ एका सेज विछी तन कंता, तन सूती पिर सज्जा गंता, पियो मदरो तन मतवंता, तन जागे जे फिर।

हुए कृपाल प्रभ मिले सुभागे। पयो कृपाल सत्संग मिलाया, बूझी तब करें फिर पाया, सगल सिगार हूँ मुझे सुहाया, कहो नानक गुरु परम चुकाया। जय देखा तह फिर है पाई, खोलो कपाट का मन ठहरा।

कुचल कठोर कामी मुक्त की जय। दर्शन देखे की वड़ियाई, तुम सुखदा से पुरुषवाई। रहाओ दूजा तुही महला पंजवा, बुरे काम को ऊट खलोया। नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बूझे ना आना। माया मोरंग लपटाना रहाओ, लोभ लहर को बिगत फूल बैठा। सात जना का दर्श ना जीता, कभू ना समझे अज्ञान गवारा। बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहाओ, बिके नाद कर्म सुन पीना। हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेखत अंधे। छोड़ जाए चूठे सब तंदे रहाओ, कहो नानक प्रभ बख्श करी जय। कर कृपा मोहे साथ संग दी जय। तो किस पाये जो हो ये रे ना, जिसे बुझाए किस नाम लेना। सुई महला पंजवा, कर में ठाकुर नदर ना आवे। गल में पान ले लटकावे, परमे पूला साकत फिरता। नीर बिरोले खप खप मरता।

गुरु मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल मैयल पूरन विदाता, सुही महला पंजवा। लालन रावया कवन गतिरी, सखी बताओ मुझे मतीरी, सुहब सुहब सुहवी, अपने प्रीतम के रंग रती, रहाओ पा मलोवो संग नैन पतीरी, जहाँ पठाओ जाओ ततीरी, जब तब संयम देव।

चाहे गीत नाद अखाड़े संगा, उहा संत करे हर रंगा, चाहे मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वरखा, दोहज कथा ए गुर ते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। सूही महला पंजवा, जा के दर्श पाप कोट उतारे, पेट संग ए पव जल तारे, ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे, रहाओ जा का सबक सुनत सुख सारे, जा की तैल जम दूत बिदारे, जा की तीरथ इस मने सुधारे, जा के सिमरन मुख उजलारे, प्रभ के सेवक प्रभ

जाके सिमरन कछ पौना व्यापे, सदा सदा नानक हर जापे। सुही महला पंजवा, गुर के बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण धारी, रहाओ साथ संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करन आधारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान इस

लोभ मोह मगन अपराधी करणहार की सेवना साधी पति पावन प्रभ नाम तुम्हारे राख लियो मोहि निर्गुनियारे रहाओ तू दाता प्रभ अंतर जामी काची दे मान अभिमानी स्वाद बाद ईर्ष मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर राया सगल त्याग नानक शरणाया सुही महला पंजवा चेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही तो किस कार जित छुटे प्राणी हर हर नाम जब अमृत बानी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु ना जाता रखे तो चार माटी का भांडा अत कुचीर मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बांधा महागर्त में निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय डूबत पान प्रभ मेरे ली जय सुही महला पंजवा जीवत मरे बुझे प्रभ

का नहीं जाने, काट काट अंतर पार ब्रह्म पहचाने, जो किस करे सोई पल माने, आद अंत की कीमत जाने, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कह हृदय वसै मुरारी, सुही महला पंजवा। गुर परमेश्वर करने हार, सगल सृष्टि को दे आधार, गुर के चरण कमल मन प्याए, दुख दर्द स्तन ते जाए, रहाओ पव जल डूबत सतगुर काडे, जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे सांत, सतगुर की रेण वड पागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे, सुही महला पंजवा। गुर अपने ऊपर बल जाइए, हाथ पैर हर हर जस जाइए।

संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, नानक मांगे संतुर वाला। सुही महला पंजवा, दर्शन देख जीवा।

जब तक देखो हर संग सहाई, जब मेरी पत मेरी तन हर नाम, सुख सहज आनंद विश्राम रहाओ पार ब्रह्म जब पहर सनाहा, कोट आवद किस बेदत नाहे, हर चरण शरण गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम किस ना बिदार है, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मुरारी, सुही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, अनंत दिनोद मंगल सुखताहा, चल सखिए प्रभ

मन तन प्राण जियो अर्पाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साहा, नानक दास हर शरण समाहा। तुही महला पंजवा। बैकुंठ नगर जहां संत वासा, तब चरण कमल रिद महा निवासा। सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो। रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने।

जपना मुरारी। दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक शरणाए। सुई महला पंजवा दीन छाए, दुनी जो लाए दोही सराई खुनामी कहाए। जो जिस पावे सो प्रवान, अपनी कुदरत आपे जान। रहाओ सच्चा कर्म पुन पला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए। सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम अगोचर सच सा।

प्रभ अविनाशी रैन दिन गाओ जीवत मरत नहीं चल पावे थाओ सो साहो सेव जित तोट ना आवे खाप खर्चत सुख अनद बिहावे जग जीवन पुरख साध संग पाया गुर प्रसाद नानक।

साध गावे गुण सदा रसाला रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करे बसे तिस मेरा जन की पूछ तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुही महला पंजवा बैठी जात करे दृष्ट ना तारक मिथ्या मोह बंदे नित पारक माधवे पद

परण पोखण संग औध बिहानी। जय जगदीश की गत नहीं जानी, शरण समरथ अगोचर स्वामी। उदर नानक प्रभ अंतर जामी, सुई महला पंजवा। साप संग तरह पैसागर, हर हर नाम सिमर रतनागर। सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिनसे। गुर पूरे मिल पाप सजायण, रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ। मन तन निर्मल साज सुहाओ, आठ पैर पार ब्रह्म त्याई है। पूरब लिप्त हुए ताँ पाई है, शरण पे जप दीन दयाला। नानक जाचे संत रवाला, सुही महला पंजवा। कर का काज ना जाने रूड़ा, चूठे तंदे रचियो मूड़ा। जित तू लावे तित तित लगना, जा तू दे तेरा नाम जपना। रहाओ हर के दास हर से तेरा से, राम रसायन अंगन माते। वहां पकड़ प्रभ आपे काटे, जन जन्म के टूटे गांडे। उधर स्वामी प्रभ कृपा धारे, नानक दास हर शरण द्वारे। सुई महला पंजवा। संत प्रसाद नहीं चल कर पाया, सर्व सुख फिर नहीं डुलाया। गुरु त्याए हर चरण वंची ने, ताते करते अस्थिर कीने। रहाओ गुण गावत अच्युत अविनाशी, ताते काटी जम की फांसी। कर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए। सुही महला पंजवा। अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपे तिस की गत होवे। हर हर नाम नित रसन बखानी। रहाओ कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन में परवेसा। साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उदरे हर गुर शरणाई। सुही महला पंजवा। कर पूजा गोविंदा गुण गाओ दयाला, दर्शन देहो पूरन कृपाला। रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतपाला, जियो पिंड सब तुमरा माला। अमृत नाम चले जपनाला, नानक जाचे संत रवाला। सुही महला पंजवा। तिस दिन दूजा अवर न कोई, आपे थमे सच्चा सोई। हर हर नाम मेरा आधार, करण कारण समरथ अपार। रहाओ सब रोग मिटावे नवा निरोआ, नानक रखा आपे होआ। तुही महला पंजवा। दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे पाग पर

अनित दया न पाई, अनित जन्म बीतने परमाई, कर वास न देवे दुत्तर माई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दीजे किर्त पवाई, सुन साजन।

ना तौल हरे जित हर बिसराय रहाओ अनद गरीबी साथ संग जित प्रभु चित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपताए ईसन पीस ओट कामरी सुख मन संतोखाए ऐसो राज ना कितै कार जित नह तृप्ताए नगन फिरत रंग एक कह ओ शोभा पाए पाठ पटंबर दित्या जे रच लो भाए सब किसी तुम रह हाँ।

की न्याय पद अभिमान सरनी परो हर गुण निध पाए अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार कितवो मन आशा करो जन का

पालना। जब मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है, संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया। रहा निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया। विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया, तहां आनंद करिया। नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया, बहु विध प्रिया पर को हिरिया। दिखना क्रिया अब साधु संग परिया, हर द्वारे खरिया दर्शन करिया। नानक गुर मिरिया बहुर न फिरिया, सुही महला पंजवा। रात मंडल की नो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा। रहाओ बहुविध रूप रंग अपारा, देखे खुशी भोग नहीं हारा। सब रस लैत बस निरारा।

तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हौ कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया, जा पाया अगम अपा।

तहां निमुख सिमरत जित छूटे। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन कहा, सो गुर प्रसादी करिए। रहाओ कोट तीर्थ मजन स्नाना, किस कल में महल पर ही जय। सात संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर ली जय। वेद कते सिमरत सब शास्त्र, किन पढ़िया मुक्त न होई। एक अखर जो गुरुमुख जापे, तिसकी निर्मल सोई।

जो कुछ करे सोई प्रभु माने, ओए राम नाम रंग राते, जिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभु के चरण पर आते, मेरे राम हर संता जीवड़ ना कोई, भगता बने आई प्रभु।

जन्म जन्म का बिछड़िया होवे, किन हर्ष्यों आन मिलावे, माया मोह परम पौ काटे, संत शरण जो आवे, जेहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावे, जन की महिमा केतक बरनो, जो प्रभ अपने पाने, कहो नानक जिन सतगुर केटिया, से सब ते पए निकाने, सुही महला पंजवा, मां अगन ते तुद हाथ दे राखे, पए तेरी शरणाई, तेरा मान तान रिद अंतर, होर दूजी आस चुकाई, मेरे राम राय तुद चित आये उबरे, तेरी तेग परवासा तुमरा, जप नाम तुम्हारा उदरे, रहाओ अंध कूप से काढ़ लिए तुम, आप पे किर

परम दया पै मोह विनाशे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुख दाता पेटिया सतगुरु पूरा तू ही महला पंजवा जब कछ ना सियो तब

पातशाही सच्चे से पी राते, सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके से तिन जाते। पखा फेरी पानी टोवा, हर जन कै पी।

कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया नानक को प्रभ है कृपाला सतगुर पूरा पाया सोही मैला पंजवा तुझ चित आए महा आनंदा जिस विसरे सो मर जाए दयाल होए जिस ऊपर करते सो तुझ सदा त्याए मेरे साहिब तू मैं मान निमाणी अरदास।

अमृत वचन हृदय और धारी तौ कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुझ पे सारी तुझ जेवड अवर न कोई, जिसनो लाए लह सो लागे भगत तुहारा सोई। दो कर जोड़ मांगो।

तेरे सेवक को पौक्ष नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम से आयन सुख फल पायन, आठ पैर आराधे तेरी शरण, तेरे परवास है, पंच दुष्ट ले साधे ज्ञान ध्यान।

प्याइए गुर प्रसाद पाव करिए आप त्याग होइए सब रीणा जीव त्या मरिए सफल जन्म तिसका जग पीतर साथ संग नाव जाते सगल मनोर तिसके पूरन जिस दया करें प्रभ आपे दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजे नानक सागर वाला राग सुही अस्पदिया महला पहला कर तहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद सब अवगुण में गुण नहीं कोई क्यों कर कंक मिलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना फुल टंग ना मीठे बैना रहा सहसीदार कामन कर आवे पांच सुहागन जा कंते भावे ना किस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत ना ही चतुराई कर कृपा प्रभ लावो।

ठग मुठी कूड़ियार जियो सच्चे सेती रतियां जन्म ना दूजी वार जियो रंगे का क्या रंगी है जो रखे रंग लाए जियो रंगन वाला सेवी है सच्चे से उचित लाए जियो रहाओ चारे कुंडा जे पवे दिन पागा तन नाहे जियो अवगण मुठी जे फिरे बदक खाए ना पाहे जियो गुर रास्ते से उबरे शब्द रते मन माहे जियो चित्ते जिनके कपड़े नैले चित कठोर जियो तीन मुख नाम ना उपजे दूजे व्यापे चोर जियो मूल न बूझे अपना से पशुआ से ठोर जियो नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो करता चित ना आवे फिर लगे दुख जियो सुख दुख दाता मन वसे चित तन कैसी दुख जियो बाकी वाला तलबी है सिर मारे जिंदार जियो लेखा मंगे देवना पुछे कर विचार जियो सच्चे की लिव उबरे बख्शे बख्शनहार जियो अनको की जय मित्रा खात रले मर जाए जियो बहुरंग देख पुलाया पुल पुल आवे जाए जियो नजर प्रभु ते छुटी है नदरी मेल मिलाए जियो गाफल ज्ञान विहूणिया गुर बिन ज्ञान ना पाल जियो किंचो तान भी गुची है बुरा पला दो नाल जियो दिन सब दे तैं रत्या सब जो ही जमकाल जियो जिन कर कारण तारिया सबसे दे आधार जियो।

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुरु पाया। चले जन्म सवार वखर सच ले, पथ पाए दरबार सत

गुणसार अंतर तू वसे, तू वसे मन माहे सहजे रस रस है। मूर्ख मन समझाए आंखों के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा। नित नित हृदय संभाल प्रीतम आपना, जे चले गुण नाल नाही दुख संतापना। मनमुख परम पुलाना ना सिस रंग है, मरसी होए विडाना मन तन पंग है। गुर की कार कमाए लावा तारे आणिया, गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया।

आप थाप थाप शब्द निवाजिया देही पसम रुलाए न जाती कह गया आपे रह समाए सो विस्माद कया तू ना ही प्रभ दूर जाने सब तू है गुरुमुख वेख दूर।

बिन सदगुरु नाम ना जाते। गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साव ना जाते। कौडी बदले जन्म गवाया, चीनस नाही आपे। गुरमुख हो वे ता एको जाने, हों में दुख ना संतापे। बलिहारी गुर अपने विटों, जिन साचे स्यों लिव लाई। शब्द चीन आत्म प्रगासिया, सहजे रे आसमाई। रहाओ गुरमुख गावे, गुरमुख बूजे, गुरमुख शब्द विचारे। जियो पिंड सब गुरते उपजे, गुरमुख कारे सवारे। मनमुख अंधा अंध कमावे, दिखते संसारे। माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुर अब प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चाले सतगुर पाए। साचा साहिब सब सिफत है, साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आखे, हों में विच्चों जाए। आपे दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे, गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचे रंग राता, गुर कै सह सुवाए। मनमुख सभी कूड़ो बोले, बिख बीजे बिख खाए। जम काल बादा कृष्णा दादा, बिन गुर कौन छड़ाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाए। असठ तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नाचे मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए। सच्ची सिफ सच्ची सलाह, पूरे गुरते पाए। तन मन सब किछ हर किसकेरा, गुरमत कह न जाए। हुक्म होवे ता निर्मल होवे, होमे विच्चों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी, कृष्णा अग्न बुझाए। गुर के शब्द राता सहजे माता, सहजे रिया समाए। हर का नाम सब कर जाने, गुर के पाए प्यारे। सच्ची वड्याई गुर ते पाई, सच्चे नाए प्यारे।

सबो सच सच सच वरते गुरमुख कोई जाने जमन मरना हुक्मो वरते गुरमुख आप पछाने नाम से आए ता सब गुरु पाए जो इच्छा सो फल पाए नानक तिसदा सब किछ होवे जे विच्चों आप गवाए सोही महला तीजा काया कामन अप सुआल्यो फिर वसे जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागन गुर का शब्द समाले हर की भगत सदा रंग

पाया अंदर सब कुछ वसे, खंड मंडल पाताला पाया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला काया कामन सदा सुहेली गुरुमुख नाम समाला, काया अंदर आपे वसे अलख ना लखिया जाए, मन मुख मुगद बूझे नाही बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लखाए, काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाथ पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौ निध पाये गुर कै शब्द विचारा, काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलन हारा, यह मन रतन जवाहर माणक किसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाई है, मोल कित ही नाम पाई है, ना ही नाम पाई है गुर विचारा, गुरमुख होवे सो काया खोजे और सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावे और क्या को करे चतुराई, काया अंदर पाओ पाओ वसे गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपजित संसारा, सच्चे अपना खेल रचाया आवा गौन पसारा, पूरे सतगुर आप दिखाया सत नाम निस्तारा, सा पाया जो सतगुर सेवे सच्चे आप सवारी, बिन नामे दर टोई नाही कां जम करे कुआरी, नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा तारी, राग सूही महला तीजा कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दुनिया ना साला है जो मर वंजसी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे परवाह रहाओ, दुनिया केरी दोस्ती मन मुख दज मरन, जमपुर बद्दे मारिय वेला ना लहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन, तिसना पुख ना उतरे अंधन जल फिरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप दुबे

नरके कोर पवन। ये मन जैसा सेवै तैसा होवै तेहे कर्म कमाए। आप बीज आपे ही खावना कहना किछु न जाए। महापुरखा का बोलना होवै कितै परखाए। ओए अमृत परे भरपूर है ओना तिल ना कमाए। गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन सेवट पागी जे

सच्चा आसनी सो सच तेरे नाल है गुरमुख नदर निहाल आपे बख्शे मेले सो प्रभ सदा समाल मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलिया जाए प्रभ मेले ता मिल रहे हों मैं शब्द जलाए सो सो सच्चा विसरे त्रिग जीवन संसार नदर करे ना विसरे गुरमति विचार सतगुरु मेले ता मिल रहा साथ रखा उधार मिले।

मन मुख मन ना पिजय आत्मे ले चित कठोर सपे दुज पियाय अंदर हिसने कोर आप करे किस आखिए आपके बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे ता सच बनया सीगार सच्चा साहो सच्चे वन जारे उथे कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावे दुखी माए पचन हो मैं मैला जग फिरे मर जमे वारो वार पय किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए हो मैं मेरा वड रोग है।

आई। जो तुझ सेवे सो तू है होवे, तू सेवक पैज रखाई। भंडार परे भगती हर तेरे, जिस पावे तिस देवाई। जिस तू दे सोई जन पाए, होर ने फल सब चतराई। सिमर सिमर सिमर गुर अपना, सोया मन जागाई। एक दान मंगे नानक बेचारा, हर दासन दास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर वडियाई। गुरमुख बोले सो थाए पाए, मन मुख किछ थाए न पाई। पाला ककर वर्फ वर्षे, गुर सिख गुर देखन जाई। सब दिन सरैन देखो गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर पावे सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी, दया करो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अधाई। नानक का प्रभ पूर रहो है, जत कत तत गुसाई। राग सूही महला चौथा, अष्टपदियां।

कै संगा मने व्यापत अनक तरंगा मेरे मन अगम अगोचर कत पाये पूरन परमेश्वर रहाओ मोह मगन मह रहा व्यापे अब तृष्णा कबहू नहीं त्रापे बसे क्रोध शरीर चंडारा अज्ञान न सूजे महा गुबारा प्रमत व्यापत जरे किवारा जान न पाये प्रभ दरबारा आशा अंदेशा बंद पराना महल न पावे फिरत बेगाना सगल ब्याज कै वस्त्र दीना फिरत प्यास जो जल बिन मीना कछु सियानत उकत ना मोरी एक आस ठाकुर प्रभ तोरी।

मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत कह मेटन, साध संग जमदूत ना पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रमन गुणा कटिया जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोवत नाही पंच बटवारे।

आद मद अंत प्रभ सोई, नानक तिस बिन अवर न कोई। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदियां कारनावा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन रिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो। संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यो रंग जियो। तिन स्यो प्रीत ना टूटई, कबू न होवे भंग जियो। पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सज्जना, नाम जपे मन मित जियो।

मैं कह न सका गुण तेरिया। सहिया कऊ असंख मंजो हव बदानिया, चुप पोरी नजर निहाल देह दर्श रंगवाणिया। जय जिठे मन तीरी है किल विकवंजन दूरे, सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहया पर पूरे। होए निवाणी टह पई मिलिया सह सुभाए, पूरब लिखिया पाया नानक संत सहाय। सुही महला पंजवा सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां। नाम निधान अपार पगता मन वसै, जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै। रहा मोह बाद अंकार सर पर नुनिया, सुख न पाएं मूल नाम विछुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंदिया, नरक सुरक अवतार माया तंदिया। सोदत सोदत सो तत विचारिया, नाम बिना सुख ना ही सर पर हारिया। आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते। जिनको पै दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नाही दातार।

पहला कुचज जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मंज कुचज जी अमावन दोसड़े हों क्यों सो रावण जाओ जियो एक दू एक चरण दिया कौन जाने मेरा नाव जियो जिन्नी सखी सौ रावया से अंबी छावड़ी है जियो से गुण मंज न आमनी हों कह जी दोस्त रे ओ जियो क्या गुण तेरे विथरा हों क्या क्या किन्ना तेरा नाव जियो इकत तोल नाम बड़ा हों सब कुर्बान है तेरे जाओ जियो सोयना रूपा रंगला मोती तै मानक जियो से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते रास जियो हों इनी टोली पुलियस तिस कंत ना बैठी पास जियो अंबर कूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो सातन चली सहुरे क्या मुंह देसी अग्गे जाए जियो सुती सुती चाल थिया पुली वाटड़ी आस जियो तै सहनालो मुतियस दुखा को तरी आस जियो तुद गुण मैं सब अवगुणा एक नानक की अरदास जियो सब राती सोहागनी मैं डोहागन काई रात जियो सुही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सबको तू साहिब मेरी रास जियो तुद अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा वास जियो पाणे तख्त वडाइया पाणे पीप उदास जियो पाणे थल सिर सर्व है कमल फुले आकाश जियो पाणे पवजल लंगिए पाणे मंज परियास जियो पाणे सो सो रंगला सिफ्त रता गुणतास जियो पाणे सो पिहावला हों आमन जान मोई आस जियो तू सहो अगम अतोलवा हों कह कह तै पई आस जियो क्या मांगू क्या कह सुनी मैं दर्शन पूख प्यास जियो गुर शब्दी सो पाया सच नानक की अरदास जियो सुही महला।

गुणवंती। जोधि सह गुर सिखड़ा तिस निर्निवला गो पाए जियो, आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो। सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अंक न काहू जाए जियो, ए मन तै कू देवसा मैं मार्ग दिहो बताए जियो।

जियो हौ आपो बोल ना जानदा मैं कहया सब हुकमाओ जियो हर भगत खजाना बख्शिया गुरु नानक किया पसाओ जियो मैं बहुर ना तिसना पुखड़ी हौ रजा तृप्त आघाए जियो जो गुरु दी सह सिखड़ा तिस निव निवला

जोगन बाद गवाया वर कर दर दर्शन नहीं जाता फिर का सह न पाया। सतगुर पूछ नव मार्ग चाली सूती रहन विहानी नानक बालकन रणे का बिन फिर तन कुमलानी।

पूरे जैसी आशा तैसी मनसा पूर रहा पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण रांड न मैले वैसे नानक में वर्षाचा पावे जुग जुग प्रीतम कैसे बाबा लगन गणाए हम भी बन जा सहोरे बलराम जियो सारा हुक्म रजाए सो ना टले जो प्रभ करे बलराम जियो कृपाया करते कर पाया मेट न सके कोई जान जी ना रहने केवल रव रहा त्यो लोई माया निराशी रोए विचुन्नी बाली बाले ते

बाबुल बड़ी दूर ना आवे कर पई बलराम जियो रहती देख दूर फिर रावी कर सोई है बलराम जियो साचे फिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मखपूरी प्रधाने संजोगी मेला थाम सुहेला गुणवंती गुर ज्ञाने सच संतोष सभा सच पल्ले सच बोले फिर पाए नानक विछड़ना दुख पाए गुरमत पंथ समाए राव सुही मेला पहला संत कर दूजा।

मिलाए, हर मन पाए पंच मिले सुख पाया। साई वस्त प्राप्त होई जिससे ती मन लाया, अंदिन मेल पया मन मानिया, कर्म अंदर सोहाए, पंच शब्द अनहद वाजे, हम कर साजन आए। आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे, सच मंगल गावो ताप तब पावो, सोहिलड़ा जुग चारे, अपने घर आया थाम सुहाया, कार्य शब्द सवारे, ज्ञान महारस नेत्री अन्यन त्रिभुवन रूप दिखाया, सखी मिलो रस मंगल गावो, हम कर साजने आया। मन तन अमृत भिन्ना, अंतर प्रेम रतन्ना, अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत्व विचारो, जंत ते तू सफलो दाता, सिर सिर देवन हारो, तू जान ज्ञानी अंतर जामी, आपे कारण की ना, सुनो सखी मन मोहन मोया, तन मन अमृत पीना, आत्म राम संसारा, साचा खेल तुम्हारा, सच खेल तुम्हारा, अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए, सिद्ध साधक सियाने कहते, तुझ बिन कौन कहाए, काल विकाल पै देवाने, मन राखिया गुरु ठाए, नानक अवगुण सब जलाए, गुण संगम तब पाए, राग सूही महला पहला करती जा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।

मंचाओ कनेरा सुन प्रग मेरा मैं तेरा परवासा, दर्शन देख कहीं नहीं केवल जन्म मरण दुखनासा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सवाए, नानक साजन को बल जाइए साथ मिले कर आए।

पृथ्वीदास है। तस्तर मार हसी पंचायण अदर करे विचारे, नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे।

प्रभ दूर ना होई कट कट सोई तिसकी नार सवाई आपे रसिया आपे रावे जो तिसकी वड्याई अमर अडोल अमोल अपारा गुरपुरे सताई है नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़ी है मारड़ी है तेलो आसर ताजा राम हों विषम कई देख गुना अनहद शब्द अगा जा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठार नाम रतन परवानो पत मत पूरी।

प्रसाद राग सुई छंक महला पहला हर चौथा जिनकी आतिन देखिया जब पंदड़े लाया दान तेरे कट चानना तन चंदी पाया चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनी है लिया वियाहो हुआ सोभ सेती पंच शब्दी आया जिनकी आतिन देखिया जग तंदड़े लाया हों बलिहारी साजना मीता अवरीता ए तन जिन सू गा दिया मन लीड़ा दीता लिया का दिया मान जिन सो से सज्जन क्यों मिसरे जिन दिस आया हो रलिया जी से ती गह रहे सगल गुण अवगुण ना कोई ओहे नीता नीता हों बलिहारी साजना मीता वरीता गुणा को हो वै वासला कड वास नहीं जय जे गुण हो मन साजना मिल साज करी जय सांझ करी जय गुण केरी छोड़ अब गुण चलिए पहरे पटंबर कर अडंबर आपना पिड़ मलिए जिथे जाए गई है पला कही है चोल अमृत पी जय गुणा कहो वे वासला कद वास लई जय आप करे किस आखी है होर करे न कोई आखनता को जाई है जे पूलड़ा होई जे होए पूला जाए कही है आप करता क्यों फुले सुने देखे बाद कहे है दान अन मंगिया देवे दान दे दाता जग विधाता नाम का सच सोई आप करे किस आखी है होर करे ना कोई सूरी महला पहला मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई गुर की पौड़ी साफ की साचा सुख होई सुख सहज आवे सास पावे साच की मत क्यों टले स्नान दान सो ज्ञान मज्जन आप अछलियो क्यों छले परपंच मोह विकार था के कूर कपट न दोई मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई साहिब सो सालाही है जिन कारण किया मैं लागी मन मैं ले किने अमृत पिया मत अमृत पिया ये मन दिया गुर कह मोल कराया आप नड़ा प्रभ सहज पिछाता जामन सा फैलाया इस नाल गुण गावा जे तिस पावा क्यों मिले होए पराया साहिब सो साल आई है जिन जग तो पाया आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता प्रीतम स्यों मन मानिया हर से तीराता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारया पंच को नायको आप सिरंदा जिन सच का पिंड सवारया हम अवगुणियारे तू सुन प्यारे तुद पावे सच सोई आवन जाना नाची है साची मत होई अंजन कैसा अंजी है जैसा फिर पावे समझे सूझे जानिए जे आप जनावे आप जनावे मार्ग पावे आपे मनुआ ले वे कर्म सो कर्म कराए आपे कीमत कौन अपे वे तंत मंत पखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसे ते सूझे गुर शब्दी सच जानिया साजन होन आपने क्यों पार कर जाही साजन राते सच के संगे मन माहे साजन करें रलिया कर्म कर्म सब आया अठहट तीरथ पुन पूजा नाम साचा भाया आप साजे थाप वेखे तिसे पाना पाया साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जेती है क्यों पादर जाने आप मुसे मत होछिए।

कछ ना सूजे अंध बूढ़ो तंगली, दिन रात चानन चाओ उपजे, शब्द गुर का मन वसे, कर जोड़ गुर पे कर बिनंती, राह पादर गुर दसे। मन परदेसी जेती है सब देश पर आया, किस पे खोलो गंठड़ी दुखी पर आया।

मन परदेसी जेती है सब देश कराए। गुरमहली कर अपने सो कर कुरलीना, सेवक सेवा ता करे सत शब्द पतीना। सब दे पतीजै अंक पीजै सो महल महला अंतरे,

सोई, ताकी कीमत ना पवे जे लोचे कोई। कीमत सो पावे आप जनावे, आप अपुल न फुले। जय जयकार करे तुद पावे, गुर के शब्द अमूल्य। हीनो नीच करो बेनंती, साथ न छोड़ो पाई। नानक जिन कर देखिया देवे मत साई। राग सुही संत महला तीजा कर दूजा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सुख सोहेला हर त्यावो, गुरमुख हर फल पावो। गुरमुख फल पावो हर नाम त्यावो, जन्म जन्म के दुख निवारे। बलिहारी गुर अपने बिटो, जिन कार सब सवारे। हर प्रभु कृपा करे हर जापो, सुख फल हर जन पावो। नानक कह सुनो जन पावो।

जन्म मरण को पागा। अंदरों दुर्मत्तु जी खोई सो जन हर लिव लागा। जिनको कृपा कीनी मेरे स्वामी इन अमदिन हर गुण गाए। सुन मन पीने सह सुभाए जुग में राम नाम निस्तारा। गुरते उपजे शब्द विचारा गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा।

हूँ तेरा तू हमारा, जुग में राम नाम निस्तारा, साजन आए उठे कर माही, हर गुण गावे तृप्त अभाई, हर गुण गाए सदा तृप्तासी, फिर भूख न लागे आए, दे जिस पूज हो वे हर जन की, जो हर हर नाम से आए, नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े, हर बिन को दूजा नाही, साजन आए उठे कर माही। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सुही महला तीजा कर तीजा, भगत जना की हर जियो राखे, जुग जुग रखदा आया राम, सो भगत जो गुरमुख होवे, हों मैं सबद जलाया राम, हों मैं सबद जलाया, मेरे हर पाया जिस दी साची बाणी, सच्ची भगत करें दिन राती, गुरमुख आप वखाणी।

भगतां की जात सत है, भगत हर कै नाम समाने राम। हर भगत करे विचों आप गवावे, जिन गुण अवगुण पछाने राम। गुण अवगुण पछाने हर नाम वखाने, पै भगत मीठी लागी। हम जिन भगत करें दिन राती, कर ही मैं बैरागी। भगती राते सदा मन निर्मल, हर जियो वेखे सदा नाले। नानक से भगत हर कह दर साचे, हम जिन नाम संभाले। मन भगत करें बिन सतगुर, बिन सतगुर भगत ना होई राम। हों में माया रोग व्यापे, मर जन में दुख होई राम। मर जन में दुख होई दूजे पाए परज भी गोई, बिन गुर तत न जानिया। भगत भी होना सब जग परमिया, अंत गया पछतानिया। कोट मदे किने पछाणिया, हर नामा सच सोई। नानक नाम मिले वडियाई, दूजे पाए पत खोई। भगतां कै कर कार साचा, हर गुण सदा वखाणे राम। भगत खजाना पे दिया, काल कंटक मार समाणे राम। काल कंटक मार समाणे, हर मन पाणे। नाम निधान सच पाया, सदा फुट करे नाम खुटे। हर दिया सह सुहाया, हर जन ऊंचे सद ही ऊंचे। गुर कै सबद सुहाया, नानक आपे बख्श मिलाए। जुग जुग सोगा पाया, सुही महला तीजा। सबद सच्चे सच सोहेला, जिथे सच्चे का होई विचारो राम। हों मैं सब किलव काटे, साथ रखिया उधारे राम। सत रखिया उधारे दुत्तर तारे, फिर पाव जल करन न होई। सच्चा सतगुर सच्ची बाणी, जिन सच बिठा लिया सोई।

आपे ही सुख होए। साच रते भगत इक रंगी दूजा रंग न कोई, नानक जिसको मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई। सुही महला तीजा जुग चारे तांजे पवे

सुख होई। सतगुर सेव कन बालड़िए हर वर पावे सोई राम, सदा होवे सुहागनी फिर मैला वेश ना होई राम। फिर मैला वेश ना होई गुरमुख बूझे कोई, होमे मार पछाणिया करणी कार समावे सबद समावे अंतर एक हो जाणिया। गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना साची शोभा होई, नाम कामन फिर रावे अपना रव रहा प्रभ सोई। गुर की कार करे तन बालड़िए हर वर दे मिलाए राम, हर कै रंग रती है कामन मिल प्रीतम सुख पाए राम। मिल प्रीतम सुख पाए सच समाए सच वर कै सब खाई, सच्चा शिगार करे दिन राती कामन सच समाए। हर सुखदाता सब पछाता कामन लया कंठ लाए, नानक मैली मैल पछाणे गुरमति हर पाए। सातन बाली तुर मेली मेरे प्रभ आप मिलाए राम, गुरमति कर चानन हुआ प्रभ रव रहा सब खाई राम। प्रभ रव रहा सब खाई मन वसाई पूरब लिखिया पाया, शेष खाली मेरे प्रभ पानी सच सिगार बनाया। कामन निर्मल हो मैं मल कोई गुरमत सच समाई, नानक आप मिलाई करते हैं नाम नमै निध पाई। सूही महला तीजा हर हरे हर गुण गावो हर गुरमुखे पाए राम, अंजिनो शब्द रवो अनहद शब्द बजाए राम। अनहद शब्द बजाए हर जियो कार्य आए, हर गुण गावो नारी अंजिन पगत करे गुर आगे सातन कंठ प्यारी। गुर का शब्द वस्या कट अंतर सेजन शब्द सुहाए, नाम तिन कर सभी सोहिला हर कर कृपा कर आए। भगता मन आनंद पाया हर नाम रहे लिव लाए राम, गुरमुखे मन निर्मल हुआ निर्मल हर गुण गाए राम। निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए हर की अमृत बाणी, जिन मन वसया से जन निस्तरे कट कट शब्द समाणी।

सदा होवे सुहागनी हर जियो मरे ना जाए राम। हर जियो मरे ना जाए गुर के सह सुवाए सापन कंठ प्यारी सच संजम सदा है निर्मल गुर के सबसीदारी। मेरा प्रभ साचा सद ही साचा जिन आपे आप उपाया नाम सदा तिर रावे अपना जिन गुर चरणी चित लाया।

राम तित तन मैल न राती, हर प्रभ राती मेरा प्रभ मेल मिलाए, अंजन रावे हर प्रभ अपना विचों आप गवाए। गुरमत पाया सहज मिलाया, अपने प्रीतम राती नानक नाम मिले वडियाई, प्रभ रावे रंग राती।

दूर वसे है, इतना मन आधारो राम, इतना मन आधारो सिरजनहारो, वड पागी गुर पाया, काट काट हर प्रभ एको स्वामी, गुरमुख अलख लखाया। सहजे अंग हुआ मन मानिया, नानक ब्रह्म विचारो,

हों मैं रोग गया पौ पागा सहजे सहज मिलाया। काया सेज गुर सब सुखाली ज्ञान तत कर पोगो अंजन सुख।

बलराम जियो। अंतर ममता कूड़ कूड़ विहाजे, कूड़ लई बलराम जियो। कूड़ कपट कमावे मां दुख पावे, बिन सतगुरु मग न पाया। उज्जर पंथ प्रमे गवारी, खिन खिन थके खाया। आपे दया करे।

जन कह नानक लाभ पहले आरंभ काज रचाया, हर गुजरी लाभ सतगुरु पुरख मिलाया। बलराम जियो निर्भो कह मन होए हो मैं मैल गवाया। बलराम जियो निर्मल पौ पाया हर गुण गाया, हर वेखे राम हदूरे

अनहद शब्द बजाए। हर चीजड़ी लाभ मन चाओ पया बैरागिया बलराम जियो, संत जना हर मेल हर पाया वडपागिया बलराम जियो, निर्मल हर पाया हर गुंगाया मुख बोली हर बाणी, संत जना वडपागी पाया हर कथिये अकथ कहानी, हृदय हर हर हर तुन उपजी हर जपिये मस्तक पाग जियो,

गुरुमुख मिलिया सुभाए हर मंथन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अंजन हर लिवलाई मन सिंधिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी वधाई।

खास शब्द लिवलाई, अंजन सहज रहे रंग राता, राम नाम रिद पूजा, नानक गुरमुख एक पछाणे, अवर न जाने दूजा, सब में रब रहा।

आई राम अंतरे हो में ममता काम क्रोध चतुराई राम अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावे।

जाई। हम पूछूं अपना सतगुरु दाता किन विद उत्तर करिए राम। सतगुरु पाए चलो जीवत्या इव मरिए राम, जीवत्या मरिए पौजल करिए। गुरुमुख नाम समावे पूरा पुरख पाया वडपागी, सच नाम लिवलावे। मत प्रगास पई मन मानिया राम नाम वडिआई, नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई। सूही महला चौथा कर पंजवां।

हौ मन तन देवा सतगुरै मैं मेले प्रभु गुणता से तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर साबा से वड पागी हर पाया जन नानक नाम विगासे गुरु सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा कर आवो चिरी विछुन्या मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा हौ तुझ बाजू।

मन दैद से चल चल परमिया, मन मुख परम को लाया, नित आशा मन चितवे, मन कृष्णा भुख लगाया, अंता तन तर दबिया, फिर बिख पालन गया, जन नानक नाम।

सेव ठाकुर नाथ पराणा, सुन बावरे जो आया तिस जाना, नेचल हब वैसी सुन परदेसी, संत संग मिल रही है, हर पाई है पागी सुन बैरागी, चरण प्रभु गह रही है। एहु मन दी जय संत ना की जय, गुरमुख तज बहुमाना, नानक दीन भगत पवतारण, तेरे क्या गुण आस वखाना। सुन बावरे क्या कीचै पूरा मानो, सुन बावरे हब वैसी गर्भ।

पाई साचे सुजनहारा, जिससे खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रहन आस तुम्हारी, सफल दस पेटिया गुरपुरा नान सद बलिहारी। समलिया सच थान मान महत सच पाया, बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी, गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ, नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया, सुख दिवस आए गह कंठ लाए, मिले अंतर जामिया। सत संतोख बजे वाजे अनहदा चुनकारे, सुन पै विनाशे सगल नानक, प्रभ पुरख करने हारे। उपजया तत ज्ञान सहुरै पई है, इक हर बलराम जियो।

गोविंद गुण गावन लागे, हर रंग अंधन जागे, हर रंग जागे पाप पागे, मिले संत प्यारिया, गुर चरण लागे परम पागे, काज सगल सवारिया, सुन श्रवण बाणी सहज जानी, हर नाम जप वड पागे।

जियो पिंड प्रभ आ गए। अहत सब सुहावा सच मंगल हर जस गावा, गुण गाए हर हर दुख नासे, रहस्य उपजय मन कण।

बिनवंत नानक दया तारो सदा हर गुण गावा। गुर मिल सागर करया हर चरण जपत निस्तरया, हर चरण के आए सब फल पाए मिटे आवन जाना। पाए भगत सुवाए हर जप अपने प्रभ पावा, जप एक अलख अपार पूरन तिस बिना नहीं कोई। बिनवंत नानक गुर परम खोया, जप देखा तप सोई।

तू सा गुरु रतना गुरु हूं सार न जाना तेरी राम सार न जाना तू वरदाना कर मेर मत साई कृपा की जैसा मत दीजै हाथ पैर तू त्याई गर्भ ना की जय रेण हो भी जय तांगत जी रे तेरी सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जे ही कण चेरी राम तुम गौहर अत गहर गंभीरा तुम फिर हम दोरिया राम तुम बड़े बड़े बड़ ऊंचे हो इतनीक लोहरिया राम हो किछ नाही एको तू है आपे आप सुजाना अमृत दृष्ट निमित प्रभ जीवा सर्व रंग रसमाना चरण है सरनी दास है दासी मन मोले तन हरिया नानक ठाकुर सर्व समाना आसन पावन करिया तुझ ऊपर मेरा है माना तू है मेरा ताना राम सुरत मत चतुराई तेरी तू जाना है जाना राम सोई जाने सोई पछाने जाको नदर सिरंदे मन मुख फूली बहुती राही फाती माया फंदे।

तू पर्वत मेरा ओला राम हूँ बल बल जाई लख लख लख दरिया जिन परम पर्दा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकुर सो मन माना प्रभ जी पानी पई निकानी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खोला कहो नानक हो निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सूरी महला पंजवा साजन कोठ सतगुरु मेरा पूरा इस बिन अवर न जाना राम मात पिता ताई सुत बंदक जी प्राण मन पाना राम जियो पिंड सब किसका दिया सर्व गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्व रहा पर पूरे ताकी शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ को बलिहारे नानक सर्व कुर्बाना ऐसा गुरु वडकागी पाये जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलविक उतरे हर संत तूरी नित नापे राम हर तूरी नाई है प्रभु ते आई है बाहर जोन ना आई है गुरु चरणी लागे प्रम को पागे मन सिंधिया फल पाई है।

पूरा जिस पर ताप है। हर हरे हर गुण निदे हर संतन कैवस आए राम, संत चरण गुरु सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम। परम पद पाया आप मिटाया हर पूरन कृपा तारी, सकल जन्म हुआ पौ पागा हर पेटिया एक मुरारी। जिसका सा तिन ही मेल लिया ज्योति ज्योत समाया, नानक नाम निरंजन जपिया मिल सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो पुन्नी इच सदाई राम, रंग रते अपने स्वामी सेती मरे ना आवे जाई राम। अविनाशी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए, सांस सहज आनंद कनेरे गुरु चरणी मन लाए। पूर रहा कट कट अविनाशी थान थन अंतर साई, कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरु चरणी मन लाए। सोही महला पंजवा, कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखें दर्श तेरा राम। लाख जेवा देहो मेरे प्यारे मुख हर आराधे मेरा राम। हर आराधे जन पंख सा दे दूत न व्यापे कोई, जल खल मैयल पूरन स्वामी जत देखा तत सोई। परम मोह विकार नाठे प्रभ नेर हूते नेरा, नानक को प्रभ कृपा की जय नेत्र देखे दर्श तेरा। कोट करन दीजे प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अविनाशी राम। सो सुन ए मन निर्मल होवे कटिए काल की फांसी राम। कटिए जम फांसी सिमर अविनाशी सगल मंगल सो क्याना, हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहत्याना। कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी, कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिए अविनाशी। करोड़ हस्त तेरी टैल कमावे चरण चले प्रभ मार्ग राम। पर सागर नाम हर सेवा जो चढ़े तिस तारग राम। पर जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे, महाविकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। मन बांचत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग, कहो नानक प्रभ कृपा की जय मन सदा चले तेरे मार्ग। एहो वर एहा वड्याई एहो तन होए वडपागा राम, एहो रंग एहो रस होगा हर चरणी मन लागा राम। मन लागा चरणे प्रभ की शरणे करण पारम गोपाला, सब किस तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकुर दीन दयाला। मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा, कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा। सुही महला पंजवा, हर जपे हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप सजावे राम। हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी, सहज कथा प्रभ की अत मीठी कथी अकथ कहानी। पला संजोग मूरत पल साचा अब चल नीव रखाई, जन नानक प्रभ कहे दयाला सर्व कला बनियाई। आनंदा वजह नितवाजे कार ब्रह्म मन उठा राम, गुरुमुखे सच करनी सारी बिन से प्रम पहच उठा राम। अनहद बाणी गुरुमुख बखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया, सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करया। कर में नव निद परे पंडारा राम नाम रंग लागा, नानक जन प्रभ कदे न विसरे पूरन जाके भागा। छाया प्रभ छत्रपत कीनी सगली तपत विनाशी राम, दुख पाप का डेरा काठा कारज आया राशी राम। हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया साच कर्म पुन फलिया, सो प्रभ अपना सदा त्याई है सोवत बैसत खलिया। गुण निधान सुख सागर स्वामी जल खल में यह सोई, जन नानक प्रभ की शरण आई तिस बिन अवर न कोई।
मेरा कर बनिया बनपाल बनिया, प्रभ परसे हर राया राम, मेरा मन सोया मीत साजन सस्ते, गुण मंगल हर गाया राम, गुण गाए प्रभु त्याए साचा सगल इच्छा पाया, गुर चरण लागे सदा जागे मन वजिया वादाया, करी नदर स्वामी सुखेंगामी हल पल सवारिया, बिनवंत नानक नित नाम जपिए जियो पिंड जिन तारिया, सुही मैला पंजवा पै सागरो पै सागर तरिया, हर हर नाम त्याए राम, बोथड़ा हर चरण आराधे मिल सतगुर पार लंगाए राम, गुर शब्दी करिए बहुत न मरिए चूके आवन जाना, जो किछ करे सोई पल मानो तामन सह समाना, दुख ना पूख ना रोग ना व्यापे सुख सागर सरणी पाए, हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मिटाए, संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम, आत्मड़ा मन आगे तरिया सर्व सुखा कर दीने राम, कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदिर थित पाई, अनग दिनो सिमरो प्रभ साचा बिछड़ कब होना जाए, सावर कागण सदा सुहागण राम नाम गुण चीने, कौ नानक रहे रंग राते प्रेम महारस पीने, अनग दिनोद कहे मित सखिए मंगल सदा हमारे राम, आप न रह प्रभ आप सिगारी सोबावंती नारे राम, सह सुहाए पय कृपाला गुण अवगुण ना बिचारिया, कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उधारिया, मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारे, कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारे, गुण गोपाल गावो नित सखियो सगल मनोरथ पाए राम, सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार प्याए राम, जब एक प्रभु अनेक रविया सर्व मंडल छाया, ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया, जल फल मैयल पूर पूरन किस बिना नहीं जाए, एक दर्शन नानक बिकसे आप ले मिलाए, सुही मैला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे से ही फल पाए करते आप बसाया राम, करते आप बसाया सर्व सुख पाया उत्पाई सिख बिगाते, गुण गावे पूरन परमेश्वर कारज आया रासे, प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया, कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन एव थान सुहाया, कर मंदर हट ना ले सोहे जिस विच नाम निवासी राम, संत भगत हर नाम आराधे कटिए जम की फांसी राम, काटी जम फांसी प्रभ अविनाशी हर हर नाम ते आए, सगल समग्री पूर्ण होई मन इच्छे फल पाए, संत सजन सुख माने रलिया दुख दर्द क्रम नासी, सब सवारे सदगुर पूरे नानक सदगल जासी, बात खत्म की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई राम, पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वडी वड्याई राम, आज जुगाद भगतन का राखा सो प्रभ कया दयाला, जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर प्रतिपाला, जय दिस पूर रहा जस स्वामी कीमत कह न जाई, कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन अचल नीव रखाई, ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम, अनहद चोज पगद पल कंजन अनहद बाजे तुनिए राम, अनहद तुनकारे पत बिचारे संत गोष्ठ नित होवे, हर नाम आराधे मैल सब काटे किलविक सगले खोवे, तह जन्म न मरना आवन जाना बहु न पाइए जोनिए, नानक गुरु परमेश्वर पाया जिस पर साधे छकुनिए, सुही महला पंजवा संता के कारज आख खलोया हर काम करावन आया राम, तरत सुहावी काल सुहावा विच अमृत जल छाया राम, अमृत जल छाया पूरन साज कराया सगल मनोरथ पूरे, जय जयकार पया जग अंतर लाथे सगर विसूरे,
पूरन पुरख अचुत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम ते आया। नव निद सिद्ध दीने करते तोत ना आवै काई राम खास खर्चक दिलचक सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई निकुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ ना थे दुख न नेड़े आया शांत सहज आनंद घनेरे बिनसी पूप सवाई नानक गुण गावे स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या बेचारा राम भगत सोन हर के गुण गावे सदा करें जयकारा राम गुण गाए गोविंद अमद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्यम किया काल केरा तिसकी उपमा क्या गनी अखट तीरथ पुन किरिया महानिर्मल चारा पतित पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा गुण निधान मेरा कब करता उस्तत कौन करी जय राम संता की बेनंती स्वामी नाम महारस दी जय राम नाम दी जय दान की जय बिसरना ही खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाय अंदिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पी जय बिनवंत नानक इच पुनी पेख दर्शन जी जय राग सूही महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ बोलला जी हर सज्जन स्वामी मोरा हर संभल खत्नी जी ओ कदे ना बोले कौरा कौरा बोल ना जाने पूरन भगवान है अवगुण को ना सितारे पतित पावन हर बिर सदाए एक किल नहीं पन्ने काले खट खट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा नानक दास वा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हर विषम पई जी हर दर्शन देखा तारा मेरा सुंदर स्वामी जी हर चरण कमल पग छारा प्रभु पेखत जीवा ठंडी थीवा जिस जेवल अवर न कोई आद अंत मद प्रभ रव्या जल थल मैयल सोई चरण कमल जब सागर तरया कब जल उतरे पारा नानक शरण पूरन परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा हर निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण धारो गुर सतगुर कहया जी।

बार राग दोष ते न्यारो नानक दास गोविंद शरण आए हर प्रीतम मने सदारो। मैं खोजत खोजत जी

जाए परम अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा नि स्वामी बड पागी हर हर गाया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वारसुही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा। सुहै वेश दुहागणी पर फिर रावण जाए ते छोड़िया कर अपने मोही दूजे भाए। मिठा करके खाया बहु साधो वध्या रोग सुद पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग। गुरमुख होवे सो पलटिया हर राती साज सिंगार सहज सच फिर रावया हर नामा उधार। आज्ञाकारी सदा सुहागण आत्मेली करतार नानक फिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार। महला तीजा सूवीए निमाणिए सो सं सदा समाल।

नानक जन्म सवार है अपना कुल भी छुट्टी नाल पौड़ी आपे तक प्रचायन आकाश पताला हुक्मे धरती साजियन सच्ची धर्मशाला आप उपाय खपाए दा सच्चे दीन दयाला सबना रिजक संभाए दा तेरा हुक्म निराला आपे आप वर्तदा।

ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे न हो गई एन सलागे पाओ नानक सुहागण का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसमे माए समाए मैला तीजा लोका वे हौ सुहवी सुहा वेश करी वेसी सौ न पाई है कर कर वेश रही नानक तिन्नी सौ पाया जिनी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सोती है इन विद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहुपित संसारा तेरा हुक्म ना जाती केतना सच्चे अलखा पारा इतना नो तू मेल लह गुर शब्द विचारा सच रते से निर्मले हो मैं तज विकारा जिस तू मेल है सो तुद मिले सोई सत्यारा। श्लोक महला तीजा सुहुविये सुहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में टूट सब विनस जाए जो टिके ना बिरकी चाओ गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीठ सचड़ाओ उल्टी सकत स्वे कर आई मन वस्या हर अमृत नाओ नानक बलिहारी गुर आपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सूहा रंग विकार है कंत ना पाया जाए इस लहदे बिलम ना हो गई रंग बैठी दूजे भाए मुंड ए आनी दुमनी सूहे वेश लुभाए सर्व सच्चे रंग लाल कर पै पाए सिंगार बनाए नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुरु भाए। पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई तिसदा अंत ना जा पई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई मन मुख ठौर न पाईनी फिर आवे जाए जो तिस पावे सोती है सब चले रजाए। श्लोक महला तीजा सूहे वेश पावन कुलखणी जो प्रभ छोड़ पर पुरख करे प्यार उस सील न संजम सदा झूठ बोले मन मुख कर्म खुआर जिस पूरब हो वे लिखिया तिस सतगुरु मिले पतार सूहा वेश सब उतार तरे गल पहरे खिमे सिगार पेये सोहरे बहु सोगा पाए तिस पूज करे सब संसार ओहर लाई किसे दी ना रले जिस रावे सृजनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख करतार। महला पहला सूहा रंग सुपने निसी दिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीठ का गुरमुख ब्रह्म विचार नानक प्रेम महारसी सब बुरे आया चार। पौड़ी इह जग आप उपायन कर चोज विधान पंच पात विच पायन मोह झूठ गुमान आवे जाए पुआई है मन मुख अज्ञान इकना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजान।

तू हां वेख छड़ तू तातिर लगी प्यार तू है वेश तिरकिने ना पायो मन मुख दज मोई गवार सतगुरु मिले सूहा वेश दया हो मैं विचो मार मन तन रता लाल हुआ रसना रती गुणसार सदा सुहागन शब्द मन पै पाए करे सिगार नानक करमी महल पाया फिर राखिया उधार महला तीजा मुंडे सूहा परहरो लाल करो सिगार आवन जाना विसरे गुरसबदी विचार मुंद सुहावी सोनी जिस कर सहज पतार नानक सातन रावी है रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड़ कुटंब है मन मुख मुग्ध रता हो मैं मेरा कर्म ए किछ साथ न लिता सिर उपर जम काल न सुजई दूजे कर्मिता फिर वेला हथ न आवई जमकाल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता श्लोक महला तीजा सतिया ए नाखियन जो मड़िया लग जलन नानक सतिया जानियन जे बिरहे चोट मरन महला तीजा पी सो सतिया जानियन सील संतोख रहन सेवन साई अपना नित उठ संवालन महला तीजा कंका नाल महेलिया सेती अग जलाए जे जाने फिर अपना तन तन दुख सहाए नानक संत न जाननी से क्यों अग जलाए पावे जीवो कै मरो दूरो ही पज जाए पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख करते लिखिया नावे जेवड होर दात नाही किस रूप ना रिखिया नाम अकुट निधान है गुरमुख मन वस्या कर कृपा नाम देवसी फिर लेख ना लिखिया सेवक पाए से जन मिले जिन हर जपिया श्लोक महला दूजा जिन्नी चलन जानिया से क्यों करे विथार चलन सार न जानी काज सवारन हार महला दूजा रात कारण तन संची है पलके चलन होए नानक नाल न चले फिर पछतावा होए महला दूजा बब्बा चक्की जो करे ना गुण ना उपकार सेती खुशी सवारी है नानक कार सार महला दूजा मन हठ तरफ ना जिपई जे बहुता काले परख जिने सत पाओ दे जन नानक शब्द विचारे पौड़ी करते कारण जिन किया सो जाने सोई आपे शिष्ट उपायन आपे फुनगोई जुग चारे सब पाल सकी किन कीमत होई सतगुर एक खा लिया मन तन सुख होई गुरमुख सदा सलाय करता करे सोई श्लोक महला दूजा जिना पाओ तिन नाहे पाओ मुझ पाओ निबिव्या नानक एहो पटंतरा तित दी दान गया महला दूजा तुर देखो तुरदा मिले उड़ते को उड़ता।

सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी होमे मार मन निर्मला हर नाम उधारी कोठे मंदक मारियां लग पै गवारी जिनकी एतसे ना जाननी मन मत गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन को सिंगार कर जा कहना कंत मिनाए मत से जय कंत ना आवई एवे बिथा जाए कामन फिर मन मानिया कौ बनिया सिंगार किया तो परवान है जा सो करे प्यार कौ सिंगार तबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत कौ कौ नानक तो करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिंगार सेजै तंत न आयो एवं पया विकार। महला तीजा तन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दो मूर्ति तन फिर कही है सोए पौड़ी पै बिन भगत ना हो गई नाम ना लगे प्यार सतगुरु मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रता रंग स्यों होमे तिसना मार मन तन निर्मल अख सोहना तेतिया कृष्ण मुरार पाओ पाओ सब तिसदा सो सच वरते संसार। श्लोक महला पहला वाहो खसम तू वाहो जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुद्र सर वेल वर्ष वराहो आप खड़ो में आप कर आप पीने आता हो गुरमुख सेवा थाई पवे उन मन तत कमाहो मस्कत लहो मजूरिया मंग मंग खसम दराहो नानक पुर दर वे परवाह तो दर ऊना नाहे को सच्चा वे परवाह। महला पहला उज्जल मोती सोहने रतना नाल जुड़न तिन जड़ वैरी नानका जे बुद्धे थिए मरन पौड़ी हर साला ही सदा सदा तन मन सौंप शरीर गुर शब्दी सच पाया सच्चा गहर गंभीर मन तन हृदय रह रहा हर हीरा हीर जन्म मरण का दुख गया फिर पवे न फिर नानक नाम सलाहे तू हर गुणी गहीर। श्लोक महला पहला नानक इह तन जाल जिन जले नाम विसारिया पौंदी जाए पराल पिछे हक नाम बड़े तित निबंधे ताल। महला पहला नानक मन के कम फिटिया गणत न आवही किती लास हम जा बसे ता तका नहीं पौड़ी सच्चा अमर चलायन कर सच कुरमान सदा ने चल रव रहा सो पुरख सुजान गुरु प्रसादी सेवी है सच सगद निशान पूरा खाट बनाया रंग गुरमत मान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान। श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका पीतर तरयान खोटे खरे परखियन साहिब कह दीवान। महला पहला नान चले तीर्थी मन खोटे तन चोर इक पौ लखी नात्या दो पा चढ़िए सहोर बहर धोती तूमड़ी अंदर विस्निकोर साध पले अननात्या चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलाएदा जग तंदे लाया इक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दै जिस ए मन पाऊंदा गुर ठाक रहाया नावे नो सब लोच दी गुरमति पाया गुर लिखिया मेट न सकी है जो हर लिख पाया। श्लोक महला पहला दोए जीवे चौदह हट नाले जेते जी तेते बन जा रे खुले हट को आवा पार जो पहुंचे सो चलन हार धर्म दलाल पाए निशान नानक नाम लाहा प्रवान कर आए वजी वधाई सच नाम की मिली वड्याई। महला पहला राती होवन कालिया सुपेदा सेवन दिह बग्गा तपै कना कालिया काले वन अंधे अकली बाहरे मूरख अंध ज्ञान नानक नदरी बाहरे कभे न पावे मान। पौड़ी
काया कोट रचाया हर सच्चा आपे, एक दूजे पाए खुआयन हों मैं विच व्यापे, इह मानस जन्म दुलंग सा मन मुख संकापे, जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर थापे, सब जग खेल रचायन सब वर्ते आपे, श्लोक महला पहला, चोरा जाड़ा रंडिया कुटनिया दीवान, वेदीना की दोस्ती वेदीना का खान, सिफ्ती सार ना जाननी सदा बसे शैतान, गधो चंदन खौलिए पीसाहू स्यों पान, नानक कूड़े कत्ते कूड़ा तनिए तान, कूड़ा कच्चर कछिए कूड़ा पैनन मान। महला पहला, बांगा बुरगू सिंगिया नाले मिली कलान, एक दाते एक मंगते नाम तेरा प्रवान, नानक जिन्नी सुन के मन्या हों तिना विटो कुर्बान। पौड़ी, माया मोह सब कूड़ है कूड़ो हो गया, हों मैं चगड़ा पायन चगड़े जग मोया, गुरमुख चगड़ चुकायन इको रब रहा, सब आत्म राम पछाणिया पौजल तर गया, जोत समाणी जोत विच हर नाम सुनया। श्लोक महला पहला, सतगुर पीछिया देह मैं तू समरथ दार, हों मैं गर्भ निवारी है काम क्रोध अहंकार, लग लोग पर जाली है नाम मिले आधार, एनस नव तन निर्मला मैला कभू न होए, नानक ए

नाम हर अनहद शब्द बजाए ज्योति जोत हर हृदय हर गुण गाए जय जय शब्द हर जग में वर्त आतो हर से प्रीत।

हर हर नाम सलाइए सत्कार कमावे, दूजी कार लगिया फिर जोनी पावे। नाम रतिया नाम पाइए नामे गुण गावे, गुर कै सब सलाइए।

नहीं महला दूजा जा सुख पासर आवे हो दुख भी संभाले हो नानक सियाणी है क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी हो क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई जो तेरी शरणागति तिन लह छड़ाई नानक दे परवाओ है किस तिल ना कमाई राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सबना भगता की कबीर के

राम को नाम न कभू लीना। राम न जपो कवन मत लागे, मर जैबे को क्या करो अभागे। रहा दुख सुख करके कुटुंब जीवाया, मरती बार

एक सर दुख पाया, कंठ गहन सब करण पुकारा, कह कबीर आगे ते ना समारा। सुही कबीर जी हर हर कंपे बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो, रहन गई मत दिन भी जाए, पल गए बग बैठे आए, रहा काचे करवे रह न पानी, हंस चलिया काया कुमलानी, क्वार कन्या जैसे कर सिगारा, क्यों रलिया माने बाज बतारा, काग उड़ावत पूजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो अमल सियानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना, क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया, चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगे का आया, रहाओ करो अरदास गाव किछ बाकी, लेओ निबेर आज की राती, किछ भी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गुजारो, साध संग जा को हर रंग लागा, तन तन सोजन पुरख सभागा, ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले, जागत सोया जन्म गवाया, माल तन जोरिया पया कराया, कहो कबीर तेई नर फूले, खसम विसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो ललित, थाके नैन श्रवण सुन थाके, थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना खाक स्मार।

हो जब लग कट में साता जे कट जाए ता पाओ न जासी हर के चरण निवासा जिसको शब्द बसावे अंतर चूपे तिसे प्यासा हुक्मे बूझे चौपर खेले मन जिन टाले पासा जो जन जान पजे अवगत को तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबो न हारे पाल जो जाने पासा सुही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा पंचे मांगे हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला सर के लोगा मोको नीत डसे पटवारी ऊपर पूजा कर मैं गुर के पुकारिया तिन्हों लिया उबारी रहाओ नौ दाडी दस नु सब कावे रैयत बसन न देही डोरी पूरी मा पैना ही बोगस काला लेही बेहतर कर एक पुरख समाया उन दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर सोदिया बाकी रिजम न काई संता को मत कोई निंदो संत राम है एको कहो कबीर मैं सो गुर पाया जा का नाम विवेको राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की इको ओंकार सतगुरु प्रसाद सह की सार सुहागन जाने अज अभिमान सुख रलिया माने तन मन दे नांतर राखे अवरा देख ना सुने अपाखे सो खत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द न पाई रहो दुखी दुहागन दोए पखीनी जिन नहा निरंतर भगत ना कीनी पुर सलात का पंथ दुहेला संग न साथी गमन अकेला दुखिया दर्दवंद दर आया बहुत प्यास जवाब न पाया कह रविदास शरण प्रभ तेरी जो जानू त्यों करगत मेरी सोही जो दिन आवे सो दिन जाही करना पूछ रहन फिर नाही संग चलत है।

तै जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब कट पीतर हाथ चलावे। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम संवार सवेरा। जन्म सिरा नो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फनखाने। सोही ऊंचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रह न होई। यह तन ऐसा जैसे कास की ताटी, जल गयो कास रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुतंब सहेरा, कोई भी लागे काट सवेरा। कर की नार उन्हें तन लागी, ओ तो पूत पूत कर पागी। कह रविदास सब जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राजसूही।

सच में रहो रजाई रहो, जो किछ हुआ सब किछ तुझते, तेरी सब सुनाई, तेरा अंत न जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चकराई। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथ न जाई, जो तुझ पावे सोई आखा, तिल तेरी वड्याई। केते कुकर हो बेगाना, औका स्तन पाई, भगत हीन नानक।

अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी जल फल मैयल पर पुरलीना कट कट जो तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध।

शरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुझ पासे, जो तुझ पावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला, आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान, आपे कर कर वेखे पान, तू दाता नाम परवान।

ऐसा नाम निरंजन देओ, हम जाचिक तू अलख अधेयो रहाओ। माया मोह तर्क टीनार, ऊंदी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चांगन अंधियार। चक छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसे वे जात ना होए, एक एक को ना ही तो कोए, करता करे करावे सोए। शब्द मोए मन मन से माया, ठाक रहे मन खाते पारिया, अवर न सूजे गुर को वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला, गुर बचनी मन सहित्याने, हर के रंग रता मन माने, मन मुख परम फुले गौराने, हर दिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर दिन जीवरा रह न सके, खिन सतगुर बूझ बुझाई। रहाओ मेरा तब विसरे हो मरो दुखाली, सास विरास जतो अपने हर पाली, सब बैरागन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख शरणाली। अटक कथा कहिया गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करने क्या कार कमाए, हो मैं मेठ चले गुर शब्द समाए। मन मुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दासन दास, जन नानक हर नाम तन रास। बिलावल महला तीजा हर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग पापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटंब सहस्यों, जित हुन खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे, अहला जन्म गवाया, दूजा पाओ न गई लिव लागण, जिन हर के चरण विसारे। जग जीवन दाता जन सेवक तेरे, तिनके तें दुख निवारे। रहाओ तू दयाल दयापत दाता, क्या ये जंत विचारे, मुक्त बंद सब तुझते हुए, ऐसा आख बखाने। गुरमुख हो वैसो मुक्त कहिए, मन मुख बंद विचारे, सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी, सदा रहे हर नाले। तिनकी गहन गत कही न जाई, सत्य आप सवारे। परम कुलाने से मन मुख कहिए, ना उर्वार न पारे, जिसनो नजर करे सोई जन पाए, गुर का शब्द संभाले। हर जन माया माय निस्तारे, नानक पाग होवे जिस मस्तक, काले मार बिदारे। बिलावल महला तीजा, अतुल क्यों तोले आ जाए, दूजा होए तो सो जी पाए, किसते दूजा ना ही कोए, तिस दी कीमत किको होए। गुर प्रसाद वसे मन आए, ताको जाने दुबदा जाए। रहाओ आप सराफ कसवती लाए, आपके परखे आप चलाए, आपके तोले पूरा होए, आपे जाने को सोए। माया का रूप सब चिस्ते होए, जिसनो मेले सो निर्मल होए, जिसनो लाए लगे तिस आए, सब सच दिखा लेता सच समाए। आपके लिव पात है आपे, आप बुझाए आपे जाते, आपके सतगुरु शब्द है आपे, नानक आप सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा, साहिब ते सेवक सेव साहिब ते, क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनिया है, सब में एक समाना। सतगुरु परचय हर नाम समाना, जिस कर्म हो वैसो सतगुरु पाए, अंदिन लागे सहित्याना। रहाओ क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अभिमाना, जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, सब कोई करो दिखाव खियाना। आपे गुरु चेला है आपे, आपे गुणी निधाना, जो आप चलाए तिने कोई चाल है, जो हर पावे भगवाना। कहत नानक तू साचा साहिब, कौन जाने तेरे कामा,
इतना कर मैं देवड़े आई एक परम पवे अभिमाना। बिलावल महला तीजा पूरा थाट बनाया पूरे वेखो एक समाना इस परपंच में साचे नाम की वड़ियाई मत को करो गुमान। सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माए समाना ए बाणी जो जियो जाने इस अंतर रवे हर नामा। रहाओ चौ जुगा का हुन वेड़ा नर मनुखानो एक निधान जत संजम तीरथ ओना जुगा का कर्म है कल में कीरत हर नामा। जुग जुग आपको अपना

कहत नानक सच्चे सो प्रीत लाए चूके मन अभिमाना कहत सुनत सबे सुख पावे मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए मंगल मारी गावे आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए सौ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावे सह सुवाए रहाओ। सदा रंग राते तेरे चाए हर जियो आग वसे मन आए आचे शोभा सद ही पाए गुरमुख मेले मेल मिलाए गुरमुख राते सबद रंग आए निज पर वासा हर गुण गाए रंग चलू ले हर रस आए यह रंग कदे न उतरे साथ समाए। अंसर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सतरा ते तिन बहुत ना फेरा नानक नाम दिलवाए पूरा गुर मेरा। बिलावल महला तीजा पूरे गुर ते वड्याई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई हों में माया शब्द जलाई दर्शा ते गुर ते शोभा पाई जगदीश सेवो मैं और न काजा हम दिन अनुभ होवे मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहा मन की प्रतीत मन से पाई पूरे गुर ते शब्द गुजाई जीवन मरण को संसर वेखे बहु न मरे ना जम पेखे कर ही मैं सब कोट निदान सतगुरु दिखाए गया अभिमान सद ही लागा सहत्यान हम दिन गावे को नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुरु ते नाम से आई जय देखा तैरिया समाए सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई पूरे पाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निधान दिखाया गुर का शब्द अत मीठा लाया नानक कृष्ण बुझी मन सम सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा धरती जा इक ओंकार सतगुर प्रसाद उदम मत प्रव अंतर जामे ज्यो प्रेरे त्यों करना ज्यो नटुआ तंत बजाए तंती त्यों वाजे जंत जना जप मन राम नाम रसना मस्तक लिख लिखे गुरु पाया हर हृदय हर बसना। रहाओ माया ग्रस्त प्रमुख है प्राणी रख ले वो जन अपना जो प्रहला धरना कस ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना कवन कवन की गत नित कही है हर की ये पतित पवन्ना ओ टोवे टोर हाथ चम चमरे हर उद्रयो करे सरना प्रभ दीन दयाल पगत पग कारण हम पापी राख कपना हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दसन्ना। बिलावल मेला चौथा हम मूरख मुगध अज्ञान मती शरणागत पुरख अजन्मा कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर हम पाथर हीन अकर्मा मेरे मन पज राम नाम है रामा गुरमत हर रस पाये होर त्यागो नेफल कामा। रहाओ हर जन सेवक से हर पारे हम निर्गुण राख उपमा तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर हर गति है वड्डे करम्मा नामहीन त्रिग जीव ते तिन वड दुख सम्मा कोई फिर जोन पवाइये मंद पागी मूड अकर्मा हर जन नाम आधार है तुर पूरब लिखे वड परमा गुर सत गुरु नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनम्मा। बिलावल महला चौथा हमरा चित लुगत मोह बिखिया बहु दुर्मत मैल परा तुमरी सेवा कर न सकते हैं प्रभ हम क्यों कर मुग्ध करा मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जन ऊपर कृपा प्रभ तारी मिल सतगुरु पार करा। रहाओ हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर देहो मती जस करा तुमरे संग लगे से उदरे
जो संग काफ़त लोह तरा साकत नर होची मत मद्दम जिन हर हर सेव न करा ते नर पाघीन दोचारी कोई जन्म मोए फिर मरा। जिनको तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोष गुरसरा दुर्मत मैल गई हर पजया जन नानक पार करा। बिलावल महला चौथा। आवो संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बोहे थे कल युग खेवट गुर शब्द करो। मेरे मन हर गुण हर उचरो मस्तक लिख लिखे गुण गाए मिल संगत पार करो। रहा काया नगर में राम रस उत्तम क्यों पाये उपदेश जन करो सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखो गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब दिख रखो। राम नाम रस राम रसायन हर सेवो संत जनो चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर पजो। बिलावल महला चौथा। खत्री ब्राह्मण सूद वैश को जापे हर मंत्र जपैनी गुर सतगुर पार जम कर पूजो नित सेवो दिन सब रहनी। हर जम देखो सतगुर नैनी जो इच्छो सोई फल पावो हर बोलो गुरमत बैनी। रहाओ अनिक उपाव चितनी है बहुत तेरे सा हो वे जे बात हो वे नहीं अपना पला सब कोई बात है सो करे जे मेरा चित ना चितैनी। मन की मत त्यागो हर जन एहा बात कठैनी हम दिन हर हर नाम से आवो गुर सतगुर की मत लेनी। मत सुमत तेरे वत स्वामी हम जंत तू पुरख जंत रहनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी ज्यो पावे तिवें बुलैनी। बिलावल महला चौथा। अनद मूल से आयो पुरखोत्तम अन दिन अनद आनंदे तरम राय की कान चुकाई सब चूके जम के छंदे जप मन हर हर नाम गोविंदे वड पागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे। राव साकत मूड माया के बदक विच माया फिरे फिरंदे कृष्णा जलत किरत के बादे ज्यो केली बलद पहंदे गुरमुख सेव लगे से उदरे वड पागी सेव करंदे जिन हर जप्या तिन फल पाया सब टूटे माया संदे। आपे ठाकुर आपे सेवक सब आपे आप गोविंदे जन नानक आपे आप सब वरते जो राखे तिवे रहंदे। ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग बिलावल महला चौथा। पड़ताल हर तेरवा। बोलो भैया राम नाम पतित पावनो हर संत भगत पारनो हर पर पूरे रहा जल फले राम नाम नित गाय हर दुख विसार नो राव। हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख विसार हारा गुर पेटिया है मुकुट दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निराशी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक के सगलावनो। राग बिलावल महला पंजवा। चौक देख हर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। नदरी आवे तिस्यो मोह क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तोहे कर कृपा मोह मार्ग पावो साफ संगत के अंचल लावो क्यों करिए दिखिया संसार सतगुरु बोहित पावे पार। रहाओ पवन चुलारे माया दे हर के पगत सदा फिर से हर शोक से रहे निरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा।
पाया वेड़ माया सर्प तुयंगा, हऊ मैं पचे दीपक देख पतंगा, सगल सिगार करे नहीं पावे, जहाँ हुए कृपाल तो गुरु मिलावे। हऊ फिर उदासी मैं एक रतन दिखाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया, हर का मंदिर कुछ में लाल, गुर खोलिया पर्दा देख कई निहाल, जिन चाखिया तिस आया साध, जो गूंगा मन में विस्माद, अनद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आज सुनाया। बिलावल मैला पंजवा। सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव, विघ्न न लागे जब अल्प भेव, तरत पुनीत सही गुण गाए, दुर्त गया हर नाम से आए। रहाओ सबनी थाने रवे आप, आज जुगा जाका वड प्रताप, गुर प्रसाद ना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब थाने उठे, सब सुख पाए सतगुर तूठे, पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले, नानक दास खसम प्रभ पाले। बिलावल महला पंजवा। सुख निदान प्रीतम प्रम मेरे, अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे, मोय अनाथ तूरी शरण आई, कर कृपा हर चरण से आई, दया करो बसो मन आए, मोय निर्गुण लीजे लड़ लाए। रहा प्रभ चित आवे था कैसी पीड़, हर सेवक नाही जम पीड़, सर्व दुख हर सिमरत नसे, जाके संग सदा प्रभ दसे। प्रभ का नाम मन तन आधार, विसरत नाम हो संसार, प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब काम अवताज, चरण कमल संग लागी प्रीत, विसर गई सब दुर्मत रीत, मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कह कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा। कर दूजा यानड़िए कह कर गावना, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, अवर स्यान का बिरथियां प्यारे, राखन को तुम एक। रहा सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे, सोजन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला, सफल मूरत गुरदेव स्वामी, सर्व कला पर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिन अपना प्रभ जाता, हर नाम अरादे नाम वखाने, हर नाम ही मनवाता, सेवक जन की सेवा मांगे, पूरे कर्म कमावा, नाम की बेनंती स्वामी, तेरे जन देखन पावा। वड पागी से काढ़िए प्यारे, संत संगत जिना वासो, अमृत नाम अराधिए निर्मल, मने होए प्रगासो, जन्म मरण दुख काटिए प्यारे, चूके जम की काने, तिना प्राप्त दर्शन नानक, जो प्रभ अपने पाने। ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, गावते उदरे सुनते उदरे, बिन से पाप नेरे, पशु प्रेत मुग्ध को तारे, पाहन पार उतारे, नानक दास तेरी शरण आई, सदा सदा बलिहारे। बिलावल महला पंजवा। दिखे बन फीका त्याग रि सकिए, नाम महारस पियो, बिन रस चाखे बुड़ गई सगली, सुखी ना होत जियो, मान महत ना सकती काई, सादा दासी थियो, नानक से दशोभा बनते, जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित क्रम सखिए, मृग तृष्णा द्रुम छाया, चंचल संग ना चालती सखिए, अंत तज जावत माया, रस ओगण अतरूप रस माते, इन संग सूख न पाया, तन तन हर साध जन सखिए, नानक जिन्नी नाम ते आया, जाय बसो वड पागणी सखिए,
संता संग समाये, कहे दुख ना पूख ना रोग व्यापे, चरण कमल लिव लाये, कहे जन्म ना मरण ना आंग जाना, निचल सरनी पाये, प्रेम बिछो ना मोह व्यापे, नानक हर एक त्याये, दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे, रतड़े सह सुवाये, से सुहावी संग मिल प्रीतम, अर्ग मंगल गुण गाये, सती सहेली राम रंग राती, मन तन इच्छु जाए, नानक अचरज अचरज सो मिलिया, कहना कछु न जाए, राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा, इको उतार सतगुरु प्रसाद, एक रूप सगलो पातारा, आपे बनज आप व्यवहारा, ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए, जब जत जाइए तप दिश पाए, रहाओ अनेक रंग निर्गुण इक रंगा, आपे जल आप ही तरंगा, आप ही मंदिर आपे सेवा, आप ही पुजारी आप ही देवा, आपे जोग आप ही जुगता, नानक के प्रभु सद ही मुक्ता, बिलावल महला तन्वा, आप उपावन आप सुधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन वचन आप ही करना, आपन विपो आप ही जरना, रहाओ आप ही मस्त आप ही बुलना, आप ही अचल ना जाई चलना, आप ही दुख आप प्रगटना, आप ही कट कट आप अलिखना, आप से अवगत आप संरचना, कहो नानक प्रभु के सब जचना, बिलावल महला पंजवा, फूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु वड़पागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे।

हाँ, बंधन काट मुकुट गुर कीना, दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, चरण कमल गुर आसन दिया, अग्नि सागर बूढ़ संसारा, नानक बाँह पकड़ सतगुरु निस्तारा, बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पो सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जतना, कर आशा आयो प्रभ मांगन, तुम पे खोगा मेरे आंगन रहा, अनेक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मने उदार, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जान ले मिलाई, नैन संतो के प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया, बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहा प्रभ सब में आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे, रहा तिखा पूख बहुत तट व्यापया, शीतल पे हर हर जप जापया, कोट जतन संतोख न पाया, मन तृप्ता ना हर गुण गाया, देहो करत प्रबंध कर जामी, नानक की बेनंती स्वामी, बिलावल महला पंजवा, गुर पूरा वड पागी पाई है, मिल साधु हर नाम त्याई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलबे काटे पज गुर के चरना, रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत साख वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक को प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरी है, बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय में चीना, सगल मनोरथ पूरन आसीना, संत जना का मुख उजल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना, रहा अंध कूप से कर गहलीना, जय जयकार जगत प्रगटीना, नीचा से ऊंच ऊन पुरीना, अमृत नाम महारस लीना, मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभु पै परसीना, बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाई है मीका, चरण कमल सो लाई है चीता, हौ बलिहारी जो प्रभु त्यावत, जन्म बुझे हर हर गुण गावत, रहा सफल जन्म होवत वट पागी, साध संग्राम में लिव लागी, मत पत तन सुख सहज आनंदा, एक निमख न विसरो परमानंदा, हर दर्शन की मन प्यास तनेरी, अनंत नानक शरण प्रभ तेरी, बिलावल महला पंजवा, मोहि निर्गुण सब गुण बिहुना, दया तार अपना कर लीना, मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा प्रभ कर मैं आया, रहाओ भगत वचल कह का तुम्हारे, संसार सागर अब उतरे पारे, पतित पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया, तार ब्रह्म सो नैनो पेखिया, साध संग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दुख पलायण, बिलावल महला पंजवा, कौन जाने प्रभ तुमरी सेवा, प्रभ अविनाशी अलख अपेवा, गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे, ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे, तू अपरंपर ठाकुर मेरे, रहाओ एकक बिन नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी पूजा, आपको कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देवे सो नाम पाई, कहो नानक जो जन सब पाया, गुण निदान प्रभ तिन्ही पाया, बिलावल महला पंजवा, मात गर्भ में हाथ दे राख्या, हर रस छोड़ बिखिया फल चाख्या, पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए सिंगार है मूड़े, तब तन बिनस जाए बेहाल, रहाओ तन मन तन अपना कर थापया, कर्म हार एक निमक न जापया,
महा मोह अंधकूप परया पार ब्रह्म माया कटल विसरिया वड्डे पाग पग कीर्तन गाया संत संग नानक प्रपाया बिलावल महला पंजवा मात पिता सुत बंदो पाई नानक हुआ पार ब्रह्म सहाय सुख सहज आनंद कणे गुर पूरा पूरी जाकी बाणी अनेक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाओ सगल संजाम करे प्रभ आपे ऐ मनोरथ सो सब जापे हर चरम काम मोका दाता पूरी तई सिमर सिमर विदाता साथ संग नाम रंग मान्या कर आया पूरे गुरियाण्या बिलावल महला पंजवा सर्व निधान पूरन गुरुदेव रहाओ हर हर नाम जपत नर जीवे नर कुआर सातक नर पीवे राम नाम हुआ रखवारा चक मारो सातक बेचारा निंदा कर कर पचे कनेरे निरपक फाक दले सिर पैरे कहो नानक जपे जन नाम ताके निकट न आवे जाम राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा दो पदे

रहाओ ऐसी कृपा करो क्रम मेरे हर नानक बिसरना काहू बेरे। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय पे आए रोग गए सगले सुख पाए गुर दुख काटिया दीनो दान सफल जन्म में जीवन प्रवान रहाओ। अकत कथा अमृत प्रभ बानी कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा। सांस पाई गुरु सदगुरु पूरे सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ। पाप पाप संताप बिनासे हर सिमरत किल विक्षवना से अनुज करो मिल सुंदर नारी गुरु नानक मेरी पैसवारी। बिलावल महला पंजवा। ममता मोह त्रो मद माता बंधन बाध्या अत विकराल दिन दिन छिजत विकार करत औद फाही फाफा जम कह जाल। तेरी शरण प्रभ दीन दयाला महा विकम सागर अत पारी उधरो साधु संग रवाला रहाओ। प्रभ सुख दाते समरत स्वामी जियो पिंड सब तुमरा माल कम के बंधन काटो परमेश्वर नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिद समारया सात जना होए कृपाला दिक्षे सब परवारया कारज सतगुरु आप सवारया वड्डी आरजा हर गोविंद की सुख मंगल कल्याण विचारया रहा। वन त्रिण त्रिभुवन हरिया होए सगले जी सभारया मन इच्छे नानक फल पाए पूरन इच्छ पुजारया। बिलावल महला पंजवा। जिस ऊपर होवत दयाल हर सिमरत का तैसो काल रहा। सात संग पजिया गोपाल गुण गावत तू तै जंजाल आपे सतगुरु आपे प्रपाल नानक जाचे सादरवाल। बिलावल महला पंजवा। मन में संचो हर हर नाम अन दिन कीर्तन हर गुणगान ऐसी प्रीत करो मन मेरे आठ पहर प्रभ जानो मेरे रहाओ। कहो नानक जाके निर्मल पाग हर चरनी ताका मन लाग। बिलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया नींद पई सुख सहज कर आया रहाओ। राज राज भोजन खावो मेरे भाई अमृत नाम रिद माहे त्याई नानक गुरु पूरे शरण आई जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा। सतगुरु कर दीने अस्थिर कर बार रहाओ जो जो निंद करे इन ग्रहण की तिस आगे ही मारे करतार। नानक दास ता की शरणाई जा को शब्द अखंड अपार। बिलावल महला पंजवा। पाप संताप सगले गए बिन से ते रोग पार ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहाओ। सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन आरोग गुण गावो नित राम के ए अवसत जोग। आए बसो पर देश में ए तले संजोग नानक प्रभ सो प्रसन्न कहे लह गए बियोग। बिलावल महला पंजवा। काहू संग ना चाल ही माया जंजाल ऊंट सिधारे छत्र तक संतन के ख्याल रहाओ। अहं बुद्ध को बिन सना एक गुर की टाल बहुजोनी जन्मे मरे बिखिया विकराल। सत बचन साधु कहे नित जपे गोपाल सिमर सिमर नानक करे हर की रंग लाल। बिलावल महला पंजवा। सहज समाज आनंद सुख पूरे गुर दीन सदा सहाय संग प्रभु अमृत गुण चीन रहाओ। जय जयकार जगत में लोचे सब जिया सो प्रसन्न पे सतगुरु प्रभु कस बिघन न थिया। जा का अंग दयाल प्रभु ताके सब दास सदा सदा वडियाया नानक गुरु पास। राग बिलावल महला पंजवा। कर पंजवा चौक दे इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। मृत मंडल जग साजिया ज्यो बालू कर बार बिन सत बार ना ला गई ज्यो कागद बूंदार।
सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए करबार रहाओ जैसा सुखना रैन का तैसा संसार दृष्टमान सब बिनसी है क्या लगे गवार कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार एक चाल से सब अपनी वार जिन पूरा सतगुर सेविया से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख तैज मुरार बिलावल महला कन्या लोकन किया वड्याया बैसन कर पागो जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभु जियो दयाल होए तो पगती लागो लपट रहो मन बासना गुर मिल ए त्यागो रहाओ करो बेनती अटकनी ए जियो हम आगो अर्थ आम सब वारिया प्रिय निमक सुहागो पंच संग गुर ते छुटे दोख करवागो हृदय प्रवास प्रगट तया निष्बासर जागो शरण सुहागन आया जिस मस्तक पागो कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो बिलावल महला पंजवा लाल रंग किसको लगा जिस केवड़ पागा मैला कदे न हो गई नह लागे दागा प्रभ पाया सुख दाया मिलिया सुख पाए सह समाना पीतरे छोड़िया नह जाए रहा जरा मरा नह व्यापई फिर दुख न पाया पी अमृत आधान्या गुर अमर कराया सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला कीमत कही न जाइए क्या कह मुख बोला सफल दर्द तेरा पार जम गुण लिख तेरी बाणी पावो तूर ते दास की नानक कुर्बानी बिलावल मेला पंजवा राखो अपनी शरण प्रभु मोहि कृपा धारे सेवा कछु ना जानो नीच मूर्खारे मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सद्गुण से तुम बक्षण हारे रहाओ हम अवगुण करें असंख्य नीत तुम निर्गुण दातारे दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे तुम देवो सब किस दया तार हम अकीर्त कनारे लाग परे तेरे दान से नह चित कस मारे तुझते बाहर किछ नहीं पाव का तिनहारे कहो नानक शरण दयाल गुर लेहो मुगद उधारे बिलावल महला पंजवा दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याय जित सेवे सुख होए कहां मन सोई गाये कही है काय प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा रहाओ जो तुम राखो त्यों रहा अवर नहीं चारा नी तरिया कर तेरिया एक नाम आधारा जो तुम करो सोई पला मन लेता मुक्ता सगल समग्री तेरिया सब तेरी जुगता चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे बिलावल महला पंजवा निरप हसे सिर ऊपरे पशुआ नहीं बूझे बाद साध अंकार में मरना नहीं सूझे सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अपागे देख कुसुम्बा रंगुला काहे पून लागे रहाओ कर कर पाप दर्द किया वर्तन कह पाई माटी से माटी रली नांगा उठ जाए जा कह किए सम करे ते बैर विरोधी अंतकाल पद जाएंगे काहे जलो क्रोधी दास ऋण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की शरणा बिलावल महला पंजवा पिंगल पर्वत पार परे खल सतर्ग कीता

सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाओ। खोजत खोजत खोजिया नामे बिन पूर, जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली, जत तक तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किछ तुम ते मांगना।

सेवा जो करे इस उतना छूटे। सब कुछ तुम ही ते हो आप बनत बनाई, दर्शन पेट साधता नानक गुण गाई। बिलावल महला पंजवा, श्रवनी सुनो हर हर हरे, ठाकुर जस गावो संत चरण कर शीश धर, हर नाम से आवो कर कृपा दयाल प्रभु, ते निज सुध पावो संत जना की रेणका, ले माथे लावो रहाओ। नीच ते नीच अत नीच होए, कर दिनो बुलावो पाव मलोवा आप त्याग, संत संग समावो। सास सास न विसरे अन पते न तावो, सफल दर्शन गुर पेटिए मान मोह मिटावो। सत संतोष दया धर्म शिगार बनावो, सफल सुहागन नानका अपने प्रभावो। बिलावल महला पंजवा, अटल बचन साधु जना सब ने प्रगटाया, जिस जन हुआ साध संग तिस पे तय हर राया। ए प्रतीत गोविंद की जब हर सुख पाया, अनक बाता सब कर रहे गुर कर ले आया। रहाओ शरण परे की रास्ता नाही सहसाया, कर्म पूम हर नाम दोए अवसर दुलभाया।

मत फूलो मानुष जन्माया परमाया, नानक तुस पत राशी जो प्रभ पहराया। बिलावल मेला पंजवा। माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे, अनक छिदर मन में तके निर्मल दृष्टे, क्यों बिसरे प्रभ मने ते।

सास मत जुलम करे हे, छोड़ प्रपंच प्रभ सो रचो सज कूड़े ने हे। जिन अनक एक बहु रंग किए है होशी एहे, कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत ले हे। ऊंचे ते ऊंचा वड़ा सब संग बरने हे, दास दासन को दासरा नानक कर ले हे। बिलावल महला पंजवा। एक टेक गोविंद की त्यागी अनास, सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुणतास। जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतिपार है, दीन दयाल कृपा निधे सास सास समार है। करनहार जो कर रहा साई बड़े आई, गुरपुर उपदेशया सुख समर जाए। चिंत अंदेशा गणत ताज जन हुकम पछाता, न बिन सह में छोड़ जाए नानक रंग राता। बिलावल महला पंजवा। महा तपत ते पई शांत पर सत पाप ना थे, अंधकूप में गलत थे पादे देहा थे। कोई हमारे साजना हम उनकी देन, जिन पे तत होवत सुखी जी दान देन। रहाओ परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए, वस्त संग हर साध के पूरन आसाए। पैदन से तिल लोक के पाए सुख थान,

कीमत कहीं ना जाई है ठाकुर प्रताप है। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरै नाम।

बार जाओ लख देरिया दर्श पेख जीवाओ करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ के पावो देव सुहनी साध कह बीजन टोलावो रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पिलावो ओआ रस में सांप तृप्त होए बिखे जलन बुझावो जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो उठत बैठत जपो नाम ए कर्म कमावो नानक की प्रभु बेनती हर शरण समावो बिलावल महला पंजवा तिन सागर सोई करे जो हर गुण गाए साध संगत के संग बसे वड पागी पाए सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी रहाओ अगन सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई अमृत नाम जल संचिया गुर पहे सहाई जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया काटी सिर्फ प्रम मोह की अपने प्रभ पाया मत कोई जानो अगर कछ सब प्रभ के हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ बिलावल महला पंजवा बंधन काटे आप प्रभु हुआ कृपाल दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकी नदर निहाल गुर पूरे कृपा करी काटिया दुख रोग मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यावन जोग रहा औषध हर का नाम है जित रोग न जाते साध संग मन तन हित है फिर दुख न जाते हर हर हर हर जाती है अंतर निवलाई किलिख उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई सुनत जपत हर नाम जसे ताकि दूर बलाई महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई बिलावल महला पंजवा कहते उपजे भगत प्रभु अंतर होए शांत नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत गुरपुरा जिस पेटिया

मन से कभो ना विसरे सो पुरख अपार। चरण कमल से रंग लगा अचरज गुरुदेव, जा तो कृपा करो प्रभ का तो लाओ सेव। निध निधान अमृत पिया मन सन आनंद, नानक कभो न विसरे प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा। कृष्ण बुझी ममता गई नाथे तय परमा, चित पाई अनद भया।

रहाओ। सोवत हर जप जा गया तोथिया समाद की अमृत तृपाश्या ताका अचरज स्वाद। आप मुकत संगी करे कुल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा भई दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवा हर पगता का आसरा अन नाही ठाओ तान दीवान परवार तन प्रभ तेरा नाओ। कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए। रहाओ संता एक प्यावना दूसर को नाहे एकस आगे बेनती रविया सर्व खाए। कथा पुरातन क्यों सुनी पगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी। सत वचन नानक कहे प्रगत सब माहे प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिनको कहो नाहे। बिलावल महला पंजवा बंधन काटे सो प्रभु जाके कल हाथ अवर कर्म नहीं छूटी है रातो हर नाथ। कौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए।

सामग्री मन वशी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, जो तू राखे त्यो रहा प्रभ अगम अपारे। करण कारण समरथ प्रभ दिल अपना नाओ, नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल मेला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महामोहनी मोया नरक की रीत। मन फुटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा, हर का पैथर तो छुट जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड, सिमरै नाही जोन दुख निर्लजे पांड। हर संग सहाई महामीत तिस्यों तेरा तेद, दीदा पंच बटवारी उपजियो मां खेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना, तन तन सर्व सो अपना प्रभु जन को दीना। बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुखसार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा। रहाओ जी जंत सब सुख बसे सब के मन लोच, पर उपकार नित चितवते नाही कछ कोच। तमसो थान बसंत तन जह जपिए नाम, कथा कीर्तन हर अत कना सुख सहज विश्राम। मन से कदे ना विसरे अनाथ को नाथ, नानक प्रभ शरणागति जाके सब कुछ हाथ। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़िया कुन सुख में पाया, सदा सिमर चरणार बिंद शीतल होताया। जीवतिया अथवा मोया।

करता करे काम को काटे कीड़ी से हस्ती करे टूटा ले गांडे अंडज जेरज सेतज कुछ पूजा प्रभ की एक किरत किरत कमावन सर्व फल रवि हर मृत हमसे कछु ना होना शरण प्रभ साध मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काड बिलावल मेला पंजवा खोजत खोजत मैं सिरा खोजो बन खान अचल अचेद अपेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागन के सुपना पला बसिए प्रभ संग रहाओ बरन आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप न देख न पंच तत् ठाकुर अविनाश।

अवर उपाव सब त्याग गया, दारू नाम लया, ताप पाप सब मिटे, रोग शीतल मन पया, गुरपुरा आराध्या सगला दुख गया, राखन हारे राख्या अपनी करमया रहा, बां पकड़ प्रभ का दया कीना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया। बिलावल महला पंजवा। कर कर मस्तक थापया नाम दीनो दान, सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान, आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चित में साध जन सो लेता मान। रहाओ शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण, सहज सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप, राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज राम दासपुर कीने गुरुदेव। रहाओ सदा सदा हर त्याय है किछ बिघन न लागे, नानक नाम सलाही है पर दुश्मन पागे। बिलावल महला पंजवा। मन तन प्रभ आराधी है मिल साथ समागे, उचरत गुण गोपाल जस दूर तेजम भागे।

श्री कल भैरा के प्रभ आप नाम प्रभ शरणागति जाका वड प्रताप बिलावल महला पंजवा तर्क सुहावी सफल थान पूरन पैकाम और नाथा प्रभ नित गया रविया नित राम साध जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम साई करी सुलखनी सिमरत हर नाम रहाओ प्रगत भय संसार में फिरते तय नाम नानक के शरणागति कट कट सब जान बिलावल महला तनिमा रोग मिटाया आप प्रभु उपजिया सुख शांत वद प्रताप अचरज रूप

सुन स्वामी अरदास जानी तुम अंतर जामी खान खनन कर लग रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा। ताकी बाव न लग गई पार ब्रह्म शरण आई चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई सतगुरु पूरा भेतोया जिन बंत बनाई राम नाम औखद दियाए।

पूर्णताय जीवालयन जा कावड़ प्रताप दोत हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बांच फल दित्यन नानक बलिहारी।

फाकत गीत नाद तुन गावत, बोलत बोल अजाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवो, सदा करो किरताए। अभय दान पावो पुरख दाते, मिल संगत हर गुण गाए। रसना अभय अभय गुण राती, नैन दर्श रंग लाए। हो कृपाल दीन दुख कंजन, मोहि चरण हृदय बसाए। सब तले तले सब ऊपर, तेरे दृष्ट दृष्ट आए। अभिमान खोए खोए खोए खोई, हो मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अतुल अतुल अतुल नहत लिया,

नमस्कार दंडोत वंदना अनेक बार जाऊं बार है रहाओ उठत बैठत सोवत जागत ए मन सुजय चितार है सुख दुख इस मन की व्यथा तुझी आगे सार है तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही तुम्हें मेरे परवार है जो तुम करो सोई कल हमरे तेख नानक सुख चरनार है बिलावल महला धन्यवाद सुनियत प्रभ तो सगल उदाहरण मोह मगन पतित संग प्राण।

हर हर नाम अपार अमोली, प्राण प्यारो मने अधारो, चीत चितवो जैसे पान संबोली। रहाओ सहज समायो गुरे बतायो, रंग रंगी मेरे तन की चोली, प्रेम मुख लागो जो वड़कागो, सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना तूप ना गंध ना दीपा, पोत पोत अंग अंग संग।

गोविंद गोविंद मई, जब ते पेटे साथ दया रहा, तब ते दुर्मत दूर पही रहा, पूरन पूर रहे हो संपूरन, शीतल सांत दयाल दई, काम क्रोध तृष्णा अंकारा, तंते हुए सगल खई, सत संतोष दया कर्म सुख संतन ते ए मंत लई, कहो नानक जिन मनो पछानिया, तिनको सगली सोज पई, बिलावल महला पंजवा, क्या हम जी जंत बेचारे, वर्ण ना साके एक रोमाई, ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा बेअंत ठाकुर तेरी दत नहीं पाई, क्या कथिय किस कथन न जाई, जह जह देखा तहरिया समाई रहाओ, जह महाप्रयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभु तुहे सहाई, शरण परयो हर चरण गहे प्रभु, गुरु नानक को बूझ बुझाई, बिलावल महला पंजवा, अगम रूप अविनाशी करता, पतित पवित्र एक निमक जताई है, अचरज सुनियो प्रापक केतले, संत चरण चरण मन लाई है, कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित जुगती त्याई है, रहाओ, जो मानुख मानुख की सेवा, को किसकी लई लई फुन जाई है, नानक शरण शरण सुख सागर, मुहे टेक तेरो इकनाई है, बिलावल महला पंजवा, संत शरण संत टहल करी, तंग बंद हर सगल जंजारो, अवकाज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज हर कनो आनंदा, गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बरन ना सातू, गुर पूरे मेरी उल्ट तरी, देखियो मोहन सब कै संगे, पूर न काहू सगल परी, पूरन पूर रहो कृपा निद, कहो नानक मेरी पूरी परी, बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता, हूँ क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे।

ज्यो कालर पीत गिरी है रहाओ। जो देखे छिदर तो निंदक कुमा है, पलो देख दुख परी है। आठ पैर चितवे नहीं पहुँचे, बुरा चितवक चितवित मरी है। निंदक प्रभु तुलाया, काल नेरे आया, हर जन से बाद उठरी है। नानका राखा आप प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा। ऐसे काहे पूल परे, करे करावे मुकर पावे, देख सुनते सदा संग हरे रहो। काच बिहाजन कंचन छादन, बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होवन तोरा अनहोवन मीठा, बिख्या में लपटाए जरे। अंधकूप में परयो प्राणी, परम गुबार मोह बंद परे। कहो नानक प्रभु हो दयारा, गुर पेटे काडे बहा फरे। बिलावल महला पंजवा। मन तन रसना हर चीना, पै आनंदा मिटे अंदेसे। सर्व सुख मोको गुर दीना रहाओ। त्यानप ते सब पई स्यानप, प्रभु मेरा दाना बीना। हाथ दे राखे अपने को, काहू ना करते कछीना। बल जाओ दर्शन साधु के,

जे प्रसाद हर नाम लीना, कहू नानक ठाकुर पारोसे, कहू न मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरे मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैल गई रहाओ। निवरे दूत दुष्ट बैराई, गुरपुरे का जपया जाप, कहां करे कोई बेचारा, प्रभु मेरे का बड़ प्रताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाया।

महला पंजवा सदा सदा जपी है प्रभु नाम जरा मरा कछ दुख ना व्याप है आके दर्द है पूरन काम रहा आप त्याग परिय हित करनी गुरते पालिया हो निधान जन्म मरण की कटिया फांसी साची दर्गे का निशान जो तुम करो

सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना अनद सेती बिखिया बन गाही। चरण प्रभु के बोहित पाए पव सागर पार पराही। संत सेवक भगत हर काके नानक मन लागे है ताही। बिलावल महला पंजवा तीरो देख तुम्हारे रंगा। तू ही स्वामी अंतर जामी तू ही बसे साध कै संगा। रहाओ खिल में थाप निवाजे ठाकुर नीच कीर्त ते तहरा जंगा। कभू न बिसरहिए मोरे ते नानक दास एही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा अचुत पूजा जोग गोपाल मन तन अर्थ रखो हर आगे। सर्व जिला का है प्रतपाल। रहाओ शरण समर्थ अकथ सुखदाता कृपा सिंध बड़ो दयाल। कंठ लाए राखे अपने को किसनो लगे न ताची बाल। दामोदर दयाल स्वामी सर्व सो संत जना तन माल। नानक जाचित दर्श प्रभ मांगे संत जना की मिले रवाल। बिलावल महला पंजवा सिमरत नाम कोट जतन भय साध संग मिल हर गुण गाए। जम दूतन को त्रास कहे। रहाओ जेते पुनः चरण से कीने मंथन प्रभ के चरण गहे। आवन जान परम पौ नाथा जन्म जन्म के किल विख दहे। निरपो होए पजो जगदीश है तुह पदार्थ बड काज नहे। कर कृपा पूरन प्रभ दाते निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा सुलही ते नारायण रात सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे। सुलही होए मुआ ना पास। रहाओ काट कुठार खसम सिर काटया छिन में होए गया है खाक। मंदा चितवत चित

आपे आप वर्ते स्वामी कार्य रास किया गुरुदेव रहाओ। आद मद प्रभ अंत स्वामी अपना खाद बनायो आप, अपने सेवक की आपे राखे प्रभ मेरे को वड प्रताप। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु

पाप पाप से राखे आप, शीतल पर गुरु चरनी लागे, राम नाम हृदय में जाप रहो, कर कृपा हस्त प्रभु जी ने, जगत उधार नवखंड प्रताप,